मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित

0: भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप एक के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं समूह स्वर में मातृ वंदना से। रचना गया प्रसाद सुल्लेरे की है।

ये भक्ति गीत कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना।

0: यूनुस मलिक के गाए इसी भजन के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती साधना अग्रवाल का है।
1: जब कभी कोई विद्यार्थी छोटी सी भी गलती करते हो और यदि उस पर

0: किसी शिक्षक की नज़र पड़ती है तो तुरंत उनकी टोका टाकी शुरू हो जाती है। टोकने रोकने समझाने पर भी जब विद्यार्थी नहीं समझते हों तब डांटना और कड़ाई बरतना भी उनके साथ शुरू किया जाता है। प्रार्थना स्थल या कक्षा या शाला परिसर में कई बार ये स्थितियां किसी विद्यार्थी के सामने आती हैं। शिक्षक उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही विद्यार्थी को बहुत बुरा लगता होगा, गुस्सा भी आता होगा, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि किशोरावस्था की उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि जिसमें इच्छा के विपरीत कोई बात हो तो वो बर्दाश्त नहीं होती। परिणाम के सही गलत को जाने बिना बातें बुरी लग जाती हैं। यही कारण है कि इस उम्र में माँ बाप भाई बहनों की छोटी सी हितकारी झिड़की भी बहुत दुखी कर देती है। माँ बाप भाई बहन परिवार के सदस्य अथवा शाला के शिक्षक परिवार के सदस्य शाला की मर्यादा और संस्कृति को बनाए रखने और विद्यार्थी को नुकसान से बचाने के लिए ही ऐसा करते हैं। शिक्षक सदैव अपने विद्यार्थी को ऊंचाई पर उठते देखना चाहते हैं। कोई भी विद्यार्थी कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, इससे अधिक मायने इस बात की है कि उनमें इंसानियत का स्वर कितना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बनकर संभवतः ये आगे अच्छा पद पा जाएं, लेकिन ऊंचे पदाधिकारी के साथ साथ यदि वे इंसान भी अच्छे बनेंगे तो उनका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण में इस तरह उनका योगदान भी जुड़ जाएगा। कोई बहुत बड़े काम से ही इंसान ऊंचा बने ऐसा नहीं है। छोटी छोटी आदतें और छोटी छोटी बातें ही इंसान की ऊंचाई बता देती है। निराशावादी सोच हमें काम के प्रारंभ करने के पहले ही कमजोर बना देती है, इसलिए सोच हमेशा आशावादी और सकारात्मक हो तो हर इंसान के लिए हितकारी होगा। परिश्रम करने से हमारा अनुभव बढ़ता है, हम क्रियाशील रहते हैं, इसलिए सदैव परिश्रमी होना होगा। दूसरों की जिन बातों से हमें कष्ट हुआ उसकी पुनरावृत्ति दूसरों के साथ ही करना चाहिए। सुख देने वाले विचारों को ध्यान में रखना और सदैव प्रसन्न रहने में ही सभी की भलाई निहित होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, पर हमारी कमजोरी होती है कि हमें अपने भीतर सब कुछ अच्छा और दूसरों में सब कुछ बुरा ही नजर आता है। दूसरों की बुराई को दूर करने की ताकत अगर इंसान में न हो तो कोई बात नहीं, पर उसके भीतर की छोटी सी भी अच्छाई की खुलकर प्रशंसा करो। किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने में यह तुम्हारा अप्रत्यक्ष सहयोग होगा। सदैव ईमानदारी का रास्ता अपनाना, कोई नहीं देख रहा है चल जाएगा सोचकर गलत कार्य की ओर बढ़ना, स्वयं की दृष्टि को महत्व देना सर्वथा अनुचित और नुकसानदेह होता है। जो भी इष्ट हो उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और छोटा सा भी सुख मिले तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, दुख मिले तो उसके निवारण के लिए ताकत मांगनी चाहिए, पर सावधान, सब कुछ ईश्वर करेगा ये सोचकर अकर्मण्य बनना ये आस्था नहीं अंधापन है जो गलत है। खुद रूखा सूखा खाकर दिन बहुरने की प्रतीक्षा से ज्यादा अपनी संतान की उन्नति और खुशहाल जीवन के लिए माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को खूब लगन के साथ अध्ययन करना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होगी। जब कभी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके सामने बाधाएं भी आएंगी। बाधाओं का बहाना बनाकर काम छोड़ देना उचित नहीं है, उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढते हुए कार्य करने से हमारा अनुभव भी बढ़ता है और फिर विपत्तियां हमारे आसपास को समझने परखने का हमें अवसर भी देती हैं। इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए, सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्रीमती साधना अग्रवाल का था। ये आकाशवाणी रायपुर है, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: थे। आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए भाटा जमीन की सुधार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के साहू।
1: नमस्कार किसान भाई बहनी मन, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू कुछ चर्चा आप मन से करना चाहता हूँ कि पड़त भूमि के विकास कैसे किए जाए, एकर का महत्व है, का फायदा है और एकर आज का आवश्यकता है। देखो ऐसे है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 20% भूभाग है भाटा बंजर या पड़त भूमि के रूप में पाए जाते और एमा जो मुख्य एकर कारण है कि ये भूइया के किसान मन काफ़ी उपेक्षा करीन, उमा जौन फसल लगाना चाहिए ओकर ध्यान नहीं दीन, उमा जो वृक्षारोपण करना चाहिए उमा ध्यान नहीं दीन और कहीं मान लो जो वनस्पति रही से चाहे वो वृक्ष के रूप में हो घास क्षेत्र के चारागाह के रूप में ओकर भी अंधाधुंध दोहन करीन ओकर कटाई करीन तो ओकर से आज वह एक नग्न अवस्था में कहें या फिर वो बिल्कुल पड़त रूप में वो पड़े रहिए और एकर अनदेखी के कारण ये जमीन के जो मिट्टी है वो धीरे धीरे वर्षा के जल के साथ घुल के उमक्षरण प्रक्रिया से वो आउ धीरे धीरे ओकर गहराई भी कम होत गईस और पोषक तत्व भी ओकर कम होत गईस। तो ये भाटा जमीन या पड़त भूमि के सही उपयोग नहीं करे से एक गंभीर चिंता का विषय बनीस और एमा वैज्ञानिक मन शोध अनुसंधान करके पाइन कि यदि हम ये मिट्टी के सही प्रबंधन करबो उमा सही प्रकार के उपयुक्त फसल लेबो चाहे वो वृक्ष हो अनाज हो दलहन तिलहन हो औषधि पौधे हो या चारा वर्गी फसल हो तो वो मिट्टी भी हर बहुत उपजाऊ हो सकत है और अच्छा लाभकारी हो सकत है। एकर लिए वर्षा जल प्रबंधन के विभिन्न तरीका ला अपनाना जरूरी है और खासकर जो विभिन्न यांत्रिक तकनीकी से मिट्टी और जल के संरक्षण भी करना जरूरी है जैसे कि कंटूर ट्रेंचिंग है, स्टेगर ट्रेंचिंग है, थाला पद्धति है, कंटूर बंडिंग है, ये सब काम ला किए जा सकते हैं। और भाटा जमीन में जो खासकर वर्षा जल प्रबंधन के साथ सिंचाई प्रबंधन के उन्नत तकनीक हम यदि अपनाबो उमा ड्रिप इरीगेशन के उपयोग करबो तो बूंद बूंद पानी के हम उपयोग से असिंचित परिस्थिति में भी हम फसल ले सकत और ऐसे जो भाटा जमीन है तेन मुख्य रूप से जतका प्रकार के औषधि पौधा है, चारा है, दलहन तिलहन है या फिर वृक्ष है जैसे आंवला है, शीशम है, खम्हार है, ये सब के लिए उपयुक्त पाए गए है और एकर वृक्षारोपण करे से हम काम कर सकत हन और सिंचाई के यदि हमर करा संसाधन है तो निश्चित तौर पे हम एमा उचित जल प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन करके जो भाटा जमीन जो अनुपयोगी है वो जमीन ल भी अच्छा लाभकारी खेती के लिए हम बदल सकत हन। तो एमा विशेष रूप से ध्यान अतके देना है कि जैसे मान लो अब जो भी फसल के चयन करत हन ओकर सही चयन होना चाहिए, जैसे चारा लगात हन तो दलहन वर्गी चारा लगाएं जैसे आपका स्टाइलो हमाटा है तो वो काफ़ी फैलाव भी रथे और उमा दलहनी चारा होए के कारण नत्रजन के स्थिरीकरण भी वायुमंडल के नत्रजन हमार मिट्टी में इकट्ठा होते और हमार जो बंजर जमीन पड़े है भाटा जमीन उमा पूरा यदि हम कवर करबो खेत ल फसल से आच्छादित कर देबो वनस्पति से आच्छादित कर देबो तो उमा कार्बनिक पदार्थ के भी ज़्यादा मात्रा हमार मिट्टी मिलत जथे और ओकर से ओकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होते और खासकर साग सब्जी भी हम एमा ले सकत हन। देखिए जमीन जो है भाटा जमीन ओकर 2-3 कमजोरी है या उमा जो ओकर सीमित उपयोग करे के जो विशेष गुण है कि जैसे ओकर गहराई कम होते मिट्टी के जल धारण क्षमता कम रथे उमा पोषक तत्वों के कमी रथे तो ये जो कमी है एकरे प्रबंधन हम करें और सही ढंग से जैविक और

0: रासायनिक खाद को उपयोग करें, ड्रिप के सिंचाई के उपयोग करें, उपयुक्त फसल के चुनाव करें, तो हम भाटा जमीन लभी लाभकारी और उपयोगी बना सकत हन।
1: भाटा जमीन के सुधार, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर के साहू। कार्यक्रम था कृषि चर्चा, आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से हम बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां में आज के आकर्षण होंगे गोठबात, जिसमें आप सुनेंगे पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। इस विषय पर श्री संजीव पांडेले महेंद्र साहू के गोठबात, संपादक और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र साहू। प्रसारण समय सुबह 8:30 पर। अजी सुनिए ये पारिवारिक झलकी सुनिएगा सुबह 9:00। आलेख श्री राजकुमार शर्मा और प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनीराम साहू और साथी। उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:00। दोपहर 12:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा शाम 5:00 और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। समूहगान शिक्षा के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा का गीत सुनिएगा सुबह 11:05 पर। रचनाकार होंगे BR गीता।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:30 पर। इसमें आज के गोठ का विषय होगा आवो बरखा के स्वागत करण। क्रम डॉक्टर के सुझाव में सुनिएगा प्राकृतिक चिकित्सा हमर स्वास्थ्य वरदान। इस विषय पर डॉक्टर योगिता टिकरियाले संगीता वर्मा के गोठबात। साथ ही होगा क्रम बहिनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में अपन गोठ का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। सुनिएगा प्रश्नोत्तरी क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा सतत आय बर पपीता की खेती और भू अधिकार पत्रों का डिजिटलीकरण। शाम 7:30 पर किसान वाणी में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विषय होगा त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन। विशेषज्ञ होंगी श्रीमती अनुभूति देवांगन, सहायक मत्स्य अधिकारी रायपुर, संचालन लक्ष्मीकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक सुधा कार्यक्रम में रात 9:30 पर सुनिएगा सूनाराम और साथियों के स्वर में कमार गीत और इंद्रमणि दास और साथियों के स्वर में सरगुजिया गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शंभू प्रसाद पवार का गाया राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुनिएगा रात 10:30 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा रात 10:00। सुबह 11:10 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे और चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं पहले संस्कृत और फिर हिंदी में।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने

फिर चलने लगी हैं हवाएं चारों दिशाओं से, फिर आकाश में बिजली आंख मिचौली खेल रही है, फिर आए हैं कारे बादल दूर देश से, फिर बरखा बूंदें धरती पर गिर रही हैं। गरजते चमकते बादलों संग धरती को तृप्त करने बरखा की रुत आसी गई लगती है। साथियों, ये वक्त है तन मन से चुस्त होकर खेत खलिहानों तक जाने, मिट्टी की गुड़ाई जुताई करने, धान के बीजों का रोपण करने और छोटे छोटे पौधों को जगाकर उन्हें यथा स्थान रोपित करने का। धरती, वर्षा, आकाश, पवन और अग्नि के संगम से बनी इस सृष्टि में हम इंसानों का कर्तव्य भी निश्चित है। तो मन को तैयार कर आइए चलें घर से बाहर, देखें बरसात के बरसते बादलों को, हवा की नरमी महसूस करें और देखें बूंदों को धरती में समाते हुए। कहीं दूर किसी पेड़ के सूखे बीज भी होंगे जो बारिश की बूंदों संग जस्प हो जाएंगे जमीन की कोख में और फूट पड़ेंगे वहीं से कोपलें, फिर एक नया जीवन लेकर। यही तो सृष्टि चक्र है जो चलता आ रहा है सदियों से अनवरत।

श्रोताओं, कहा जाता है कि जीवन में जब भी हम किसी दोराहे पर खड़े हों, जब कभी ऐसा समय आए कि हमें अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने में दुविधा हो रही हो, तो किसी महापुरुष, किसी विचारक के दिखाए रास्तों या उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें रास्ता जरूर मिलेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम स्वामी विवेकानंद की जीवन कथा पढ़ते हैं, उनके विचारों का मनन करते हैं, तो सचमुच ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था, स्वयं में विश्वास रखें, दुनिया आपके कदमों में होगी। क्योंकि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। तो श्रोताओं, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़िए, मंजिल आपके कदमों में होगी।

श्रोताओं, जीवन इन्हीं घटनाओं का साक्षी होता है। ये घटनाएं कभी सुखद होती हैं तो कभी तकलीफ दे, लेकिन स्मृतियों में अंकित हो जाती हैं। आज यानी 23 जून के इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सीख देती हैं। 23 जून सन 1994 को संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। 23 जून सन 2008 को प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की और 23 जून सन 2014 को गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। श्रोताओं, गुजरात

गुजरात का रानी की वाव एक बावड़ी है जो सैकड़ों वर्ष पहले निर्मित की गई रानी उदयामती के द्वारा अपने पति राजा भीमदेव की याद में। रानी की वाव एक भूमिगत संरचना है जिसमें सीढ़ियों की एक श्रृंखला, चौड़े चबूतरे, मंडप और दीवारों पर मूर्तियां बनी हैं और इसी स्थान को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया सन 2014 में आज ही के दिन। इतिहास के सुनहरे पन्नों को याद करते रहें तो हमें भी जीने के मकसद मिलते रहेंगे श्रोताओं। तो चलिए इसी बात के साथ सुना जाए ये बेहतरीन नगमा।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: एक बहुप्रचलित ऑनलाइन फ्रॉड है जिसको हम सेक्सटॉर्शन के नाम से जानते हैं। इसको ऑनलाइन डेटिंग स्कैम भी कहा जाता है। इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड में अननोन व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर अश्लील या रोमांटिक चैट की जाती है। चैटिंग के बाद आपको थोड़े समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद वीडियो कॉल भी आना शुरू हो जाता है, जिसमें स्कैमर्स न्यूड या सेमी न्यूड होकर आपसे बातचीत करते हैं। और बातचीत के दौरान स्कैमर्स के द्वारा आपके साथ की गई बातचीत को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो भेजकर आपके साथ पैसे की उगाही की जाती है। इसमें व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के भय से आकर ठगों के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराता। आपसे रिक्वेस्ट है कि अननोन कॉलर से अचानक बातचीत ना करें। किसी भी प्रकार यदि आपके साथ कोई स्कैम कर रहा है या आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो आप इसका रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, साथ ही आप साइबर सेल की भी मदद ले सकते हैं।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, और मैं हूं आपके साथ प्रवीणा। श्रोताओ, हर वर्ष जून की 23 तारीख को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन विकास की प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को पटल पर लाने और समाज में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर सन 2002 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 23 जून को इसे मनाने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचान कर उनका सम्मान किया जाता है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र जनसेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की इस वर्ष की थीम है सार्वजनिक संस्थानों का रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता और समावेशन को बढ़ावा देना। तो आइए हम भी सामाजिक रूप से जागरूक होकर विकास यात्रा में सहभागी बने, और इस वक्त आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, समाज की व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों को मानना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वही व्यवस्थाएं रूढ़िवादिता और विकास में बाधक हो जाएं, तो उन्हें बदलने का प्रयास भी समाज को विकसित करने में लाभदायी हो सकता है। सदियों पहले हमारे ही देश के राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा पुनरुद्धार के लिए प्रयास किए, जिन्हें समयानुसार कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज में उनकी उपेक्षा, अवमानना और समस्याओं का निराकरण करना भी इस दिवस की मूल भावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून 2011 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के पुनर्वास, मानवाधिकारों की रक्षा और समाज की कुरीतियों को निर्मूल करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा शामिल है। श्रोताओं, हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं। नियमों और कानूनों को मानते हुए हम भी अपने समाज के उत्थान के लिए प्रयास करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा इसीलिए आवश्यक है ताकि समाज का हर प्राणी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन को एक व्यवस्थित गति दे सके। तो जीना है न सिर्फ अपने लिए, बल्कि सभी के लिए, सभी को साथ लेकर।

और अब एक रोजगार सूचना सुनिए श्रोताओं। प्रदेश में गृह विभाग के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कुल 15 पदों की भर्ती की जानी है। अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अनुभव का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जून से 21 जुलाई तक भरे जा सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 20 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट cg.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। और इस सूचना के बाद आइए सुना जाए ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे।

0: और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज

0: होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से

0: सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक मा आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू होती ले। श्रोता साथी हो, 31 मई के पूरा देश विदेश में मन की बात कार्यक्रम हमन सुनें, और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी हमार छत्तीसगढ़ के एक पुरातात्विक स्थल मल्हार की चर्चा करें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: जब मल्हार की चर्चा होइस, ताम्र पट्टिका की चर्चा होइस, तो मल्हार के रहोइया जम्मू रहवासी मन के चेहरा में एक अलग उत्साह देखे बर मिलिस कि हमार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमार कस्बा के, हमार मल्हार के नाम के उल्लेख करिन। आज हमारे साथ श्री संजीव पांडे जी उपस्थित हैं।

0: आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आपा ताम्रपट्टी कला विशेष रूप से संरक्षित करके आप रखे हाओ। एकर बारे में हमन चर्चा करबो, लेकिन जैसे कि हमन कहें कि मल्हार एक पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक महत्व है वो जगह के। सबसे पहले तो आपका स्वागत करत हन आज के कार्यक्रम में, और आपसे हम जानना चाहत हन कि हमर श्रोता साथी मल्ला मल्हार के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देवा।
1: आकाशवाणी के जम्मो श्रोता साथी मल्ला जय जोहार करत हो, जय छत्तीसगढ़, जय मल्हारगढ़। मल्हार हमर छत्तीसगढ़ के प्राचीन संस्कृति के जुन्ना जतका भी विरासत है, ऐतिहासिक स्थल है, ओकर गौरवशाली अतीत के एक ठन झलक है। मल्हार कहते साथ मल्हार के नामकरण के भी नाम आते। मल्हार के तलाव म, डेहरी म, हर घर म, हर तुलसी चौरा म शिव जी के उहला प्रतिमा है, ओकर नाम से हमर मल्हार के नाम पड़िस। ऐसे हमन मानथन ओला मल्हारी शिव, शिव जिलम मल्हारी करके संबोधित करथन। तो मल्हार के बारे में दो तीन प्रकार के बात है। राग भी में मल्हार आते, और हमन चूंकि बहुतायत में वहाँ एक मुखी शिवजी से लेके 1000 शिवलिंग तक के मल्हार में हावे। वहाँ तालाब में है, घर मन में है, देवालय में है, तेकर नाम से मल्हार पड़िस। मल्हार ऐसे जगह है जिहाँ इतिहास के पढ़ैया मन पर बहुत सामग्री है, चाहे वह पंचतंत्र के कहानी हो, चाहे जातक कथा हो। लेकिन मन के जब भी शैक्षणिक भ्रमण माथे तो मैं ये सब पिल्हर मल्ला उमल बड़ा गर्व से दिखाता हूँ, घुमाता हूँ। उसी प्रकार से मल्हार के एक किसान है कुआं खोदे में गड्ढा करत रिसे, और वह जानत नहीं रिसे, और वहाँ जिन गड्ढा खोदत रिसे वहाँ बने बुनाए वाला कुआं मिल गए। हमर मल्हार ऐसने ऐतिहासिक मल्हार है जी हाँ, पुराना संपदा भरे पड़े है। यदि मल्हार के उत्खनन किए जाए तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व में शामिल करे के लायक, विश्व विरासत में शामिल करे के लायक जगह बन जही, ऐसे मोर मानना है। मल्हार के उत्खनन में एकर पहली भी बहुत सारा सामग्री मिले है। सागर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े इतिहासकार डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी जी वहाँ के प्रमुख ऋण है मध्य प्रदेश के समय में, वह उत्खनन करा रही से तो मल्हार में प्राचीन बस्ती दबे मिले रही से। मल्हार में एक शिव मंदिर है, वह भारत में अद्वितीय शिव जी के मंदिर माने जाते। मंदिर के आधार पीठिका 108 कोण वाला है, और वहाँ वास्तुशास्त्र के 250 विशेषता ला तो मैं ही बता सकता हूँ, मानो और बहुत सारा विशेषता हुई। प्रवेश द्वार में गंगा यमुना काल भैरव बैठे है, वहाँ कल्पवृक्ष पायदान में बैठे है, भगवान नवग्रह ऊपर में पैनल के रूप में है, गणेश जी के दो पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों दिशा में बैठे है। तो इसना मल्हार के महिमा महान है। मल्हार के कण कण में देवता धामी है। यहाँ 126 तालाब है, जिला हमन छत्तीसगढ़ी में छह अगर छह कोरी कथन, छह अगर छह कोरी तालाब, उहू जम्मो भगवान के नामकरण में है। कोनो के नाम ऋषि मुनि के नाम से है, मार्कंडेय कुंड, कोनो के नाम राम सागर, लक्ष्मण सागर, परमेश्वरा सागर, ऐसे टाइप के सब प्राचीन समय में जुन्ना टाइम में हमर सियान मन पुरखा मन एक नामकरण भी लो उसने है टाइप के रखे है। मल्हार हमर दक्षिण कौशल के राजधानी रही से, एकर प्रमाण मैं आप लोग जरूर बता सकता हूँ। महू अपन 25-30 साल 40 साल ले पिताजी के दादाजी के सानिध्य में रहे, यहाँ के उत्खनन वगैरह लम मैं देखे। यहाँ एक बंदरगाह भी है लीलागर नदी में।
0: अच्छा।
1: वो बंदरगाह है लीलागर नदी से शिवनाथ नदी जाते, और शिवनाथ नदी है जोड़ते वाला उड़ीसा के बॉर्डर में। अल हमन कौसाम्बी के मार्ग कथन इतिहास के भाषा में, या राष्ट्रीय सेमिनार में जाथन तो सुनथन, ये वही मार्ग है। इमल वो समय व्यापार होते रही जल मार्ग से, ओकर स्पष्ट प्रमाण मल्हार में हवा। ये तरह से शोधार्थी भर, पढ़िया लिखैया भर, इतिहास के सिक्का ताम्रपत्र मल्हार से प्राप्त शिलालेख एवं प्रचुर मात्रा में अध्ययन करे भर बहुत सामग्री है। मल्हार एक बहुत विशेषता लिए हुए नगर है, प्राचीन गौरव वाला जगह है, और ओकरे हम बड़ा गर्व से कथन कि करे जन वृद्धि शोभा के ओला श्रृंगार कथे, करे हर मन लजन मोहित बोला मल्हार कथे, इसके के एक्शन हमन कहावत भी कथन।
0: जी जी, आप जैसा जानकारी देता हमन ला तो ऐसा लगत है कि हमन कथा सुनत हन, है
1: जी,
0: ना
1: जी हाँ साहू जी।
0: कथा के रूप में और भी हमन बाद में चर्चा करबो
1: जी।
0: अभी जो पुरातात्विक स्थल मल्हार के बारे में आप चर्चा करत हो, तो यहाँ जो मूर्ति मिलते
1: जी,
0: वो कौन कौन से देवी देवता के मूर्ति मिलते और कितना पुराना रथ है?

0: मल्हार में चारों संप्रदाय के, जैन बौद्ध वैष्णव शैव, चारों संप्रदाय के प्रतिमा मल्हार में भी संग्रहालय में संजो के संस्कृति विभाग रखे हुए है। चारों संप्रदाय के प्रतिमा मिलते, मोला तो ऐसे लगते बहुत बड़े बड़े विद्वान मनाते उनका सानिध्य भी मोला मिलते। तो मल्हार है एक समन्वय स्थल भी रही से, मल्हार में सब्बो संप्रदाय के प्रतिमा विद्यमान है, एकर से एक कला केंद्र के रूप में विकसित रही सो ही ऐसे लगते, और समन्वय स्थल भी रही से।
1: काफी प्रसिद्ध जगह है ये मल्हार हर, तब मोला लगते ना कि कहीं ना कहीं से मल्हार की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में करें, और विशेष रूप से ताम्र पट्टिका के बारे में। और ये जो ताम्र पट्टिका है ये आपके घर में सुरक्षित है, संरक्षित करे के प्रयास आप करे हो, तो ये बात आपके घर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, फिर प्रधानमंत्री जी अला मन की बात कार्यक्रम में शामिल करें, ये यात्रा के बारे में बतावा, कैसे पता चलिस कि आपके घर में ये अमूल्य संपत्ति है आज की तारीख में।
0: जी, मोर दादाजी पंडित छेदीलाल पांडे है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से।
1: हाँ।
0: और वो हर पुरातत्व के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति रहे हैं। मैं मिडिल स्कूल के छात्र रहे हूँ और मोर पिताजी है रघुनंदन प्रसाद पांडे, राष्ट्रपति सम्मानित रहे हैं, जिन मल्हार के इतिहास में 4 ही पुस्तक लिखे है आज से 82-83 में। और इमन पुरातत्व के प्रति अतका समर्पित व्यक्ति है कि मल्हार के हर पथरा लिमन देवता मानत रही है। अतका समर्पित व्यक्ति है इमन, मैं बचपना में देखत रहें इकर सानिध्य मिलत रही से, और ऐसे करके इकर संग्रह मैं देखूँ और समय बच्चा रहे मैं है, तो सिक्का मिला है मोर पिताजी लाख वाला बहुत सुरक्षित अमूल्य धरोहर के रूप में रखा है। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर की के मोला बतावा है, यही है हमार मल्हार असली मल्हार की के। ऐसने टाइप के एक निजी संग्रह बना के मोर पिताजी रखिन, वो संग्रहालय में आज मौर्य शासक मन के टेराकोटा आर्ट के पार्ट्रीज मन है, वो समय के राजा मन के टेराकोटा में जिन सील बने हैं, सील के उपयोग करें वो सील हम संग्रह में है। मोर पिताजी के ये संग्रह में एक किसान खोदत रिन्हे मल्हार में, जुताई करते हैं कृषि काम के, जुनवानी खार कथन मल्हार के हो सबले प्राचीन जगह है, प्राचीन क्षेत्र है। एक ठन तो सोनवर्षा खार भी है, मल्हार में बहुत सारा सिक्का मिले हैं और आज भी मिलत थे
1: सोना के।
0: जी हाँ। अच्छा। तांबा के, जस्ता के, चांदी के, सोना के। मल्हार राजधानी रिसे, तो राजधानी माने समृद्धता के एक पहचान भी है, और ये सब मिलते ओकर से प्रमाणित भी हो जाते। सबले पहली मैं उल्लेख करत बतावत रहे कि तालाब ओ समय राजधानी में इनकम ऑफ सोर्स राजा मन के तालाब से होत रही से, तो इसने ये सिक्का वगैरह जारी हुआ है उन्हें तो सिक्का मिली। मल्हार से सिक्का जारी करके पत्थर के ढलवा भी है, वहाँ ढलाई करत इन्हें राजा के समय सिक्का जारी कराए, वो सब ढलाई के पत्थरा मोकर खाँचा साँचा सब यहाँ विद्वान है, तो यहाँ से सिक्का भी बहुत मिलत रहते। आज भी पानी के कटाव में हम लेकर रहें तो खोजे जाते रहें, हम पिताजी का अनुसरण करते हुए उनकर देखन नकल कर करके सिक्का पाबो, सामान पाबो, ऐसे कीके। तो ऐसे करके संग्रह मोर पिताजी है समृद्ध बनाइन, स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे 4 पुस्तक भी लिखिन, और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिले सुनला उनकर विद्यालय में। तो ये संग्रह ल बढ़ाएन और ताम्रपत्र उन्हीं ल प्राप्त होइस, पूरा क्षेत्र में हल्ला हो गई से कि मल्हार के इतिहास पुरातत्व ल संजो के रखने वाला परिवार है वह स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे, छेदीलाल पांडे, पांडे परिवार है की के। तो ये ताम्रपत्र ल खेत के जोताई में एक किसान ल मिलिस, वह हमार पिताजी से बहुत प्रभावित व्यक्ति रही से, उनकर विद्वता से, उनकर हर चीज से, वह आके बताइस फिर कि महाराज ये ताम्रपत्र हल पाए हो कि वो किसान लगले हमर पिताजी के पास आइस, मोर पिताजी है अपन हाथ में रखिन, और वो समय में पुरातत्व विभाग के पूरा अधिकारी लग खबर करिन। मोले याद है बिलासपुर में संग्रहाध्यक्ष जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आनंद कुमार रिजबुट साहब रिन है, ओला दिन वो मल्हार आइस, मल्हार आइस तह ओला ओकर अवगत कराइन, ओकर प्रिंट वगैरह लेगिन, ओकर बारे में पूरा डिटेल लग बाहर भेजिन, ओला पता करिन। तो वो है राजा महाशिव गुप्त बारार्जुन के ताम्रपत्र के उल्लेख ल दो पन्ना में फिर साहब एक हफ्ता के अंदर अवगत कराइन हमर पिताजी ल, ऐसे करके ताम्रपत्र वगैरह सब मल्हार के प्राचीन धरोहर संरक्षित करे बर संजोए बर हमर पिताजी मन प्रयास करिन, ओगला महू आगे बढ़ाएं। आज मोर पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, वो संग्रह मैं रखे हुए हूँ, यह उकरे असली में।

0: नाते मैं तो उमा आगे जरूर बढ़ा था, लेकिन ये उकरे तपस्या मानता हूँ मैं, उकरे संग्रह है मल्हार लजन हर पत्थर देवता के समान माने ऐसे समर्पित व्यक्ति रिन है। और ताम पत्र आइस और मोर संग्रह में पिताजी के संग्रहालय में लगभग सिक्का भी है, वह बहुत सारा सिक्का है जिन कई प्रकार के कई काल पीरियड के कई राजा मन के है, खरोष्टी भाषा के है, रोमन भाषा के है, ब्राह्मी लिपि पाली भाषा के जनरली मिलवेज करते मलार जितका भी लेख वगैरह मिले है, एक शिलालेख भी मोर घर में है।
1: मैं ये आपने जानना चाहते रहे संजय जी कि ये जो ताम्र पट्टी का मिले है ओकर खासियत का है, उसमें का अंकित है, कौन सा भाषा में का लिखे है, कुछ एकर बारे में बतावा।
0: ये ताम्रपत्र राजा महासिगुप्त बालार्जुन के समय के ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र के वजन है 3.5 किलोग्राम के लगभग है। यह तीन पट्टी का महावय साहब तीन फलक महावय और एक बढ़िया गोलवा रिंग में गुथाए हुए है। ऐल हमन कंप्लीट कथन ऐसने है, एक सिंगल फलक भी है ओकर आउ कहीं भाग रिस हो ही। एक ताम्रपत्र राजा भरत बल के मोरिया आउ रखा है संग्रह में, तो वह इनकम्प्लीट है अधूरा है, लेकिन यह पूरा रिंग से बढ़िया गुथाए हुए है और तीन ठीक पट्टिका है। और वहाँ सुंदर ढंग से हमर प्राकृत भाषा पुराना भाषा ब्राह्मी लिपि में पाली भाषा में वहाँ लेख खुदे हुए है उत्कीर्ण है। और एकर लंबाई मोटाई है लगभग आधा आधा फीट के है तीनों फलक के। और यह रिंग में गुथे जन रिंग में उमा एक पद मुद्रा लगे हुए है, वो पद मुद्रा है गोल साइज के है। वो गोलवा साइज में देखथन तो बहुत सुंदर भगवान शिव जी है नंदी में सामने बैठे हुए है। उमा शुभ के रूप में एक कमल फूल दर्शाया गया है, उमा त्रिशूल दर्शाया गया है। वह में छोटा सा एक ठो लेख भी है वो ताम्रपत्र के हल्का सा डिटेल के बारे में, वो कब के कायत है। यह राजा महासिगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र है जिन मल्हार के जुनवानी खार में मिलिस मल्हार से प्राप्त होइस तीन फलक में है, शुद्ध तांबा के है साहब हर
1: जी। जी बहुत बढ़िया, आप सरल भाषा में हमार श्रोता वाला जानकारी दे आप मन। आपसे अब जानना चाहत हन, बार बार हमन चर्चा करत हन कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शहर के आपके ताम्रपट्टिका के उल्लेख करें है ना
0: जी।
1: एक जो ज्ञान भारत टीम जो है आपके घर पहुंची
0: जी,
1: वो मतलब कैसे पता चले कि आपके घर में अमूल्य धरोहर है और का प्रक्रिया अपनाइन कि ये जो घटना है राजधानी तक पहुंची सवेल मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपन विचार ला साझा करें
0: जी। ज्ञान भारत बिलासपुर के टीम है साहब, जिला पंचायत अधिकारी से मोर व्यक्तिगत परिचय से संदीप अग्रवाल साहब से, तो मल्हार आते तेल मतलब घुमाथन हमन तो व्यक्तिगत रूप से हमारे जाना रहते, तो मल्हार वाला महाराज लंग जा तो बहुत जुन्ना जुन्ना संग्रह है, क्योंकि पूरा टीम लग ज्ञान भारत के भेजिस जिला पंचायत सी ओ संदीप अग्रवाल साहब हर। तो वो टीम हम मल्हार आइन मतलब मल्हार में बढ़िया भेंट होइस बैठन मोर संग्रह ल देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करिन। वो संग्रह में ये ताम्रपत्र ल मैं उमल दिखाएँ, ताम्रपत्र में उमन बहुत खुशी होके वीडियो रिकॉर्डिंग करिन ओकर पूरा डिटेल नोट करिन ओकर सब प्रकार के जिन माननीय प्रधानमंत्री जी है हमार पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान जिन चला थे केंद्र सरकार के द्वारा, उमा पांडुलिपि सर्वेक्षण में बहुत सुंदर चीज हमन पागन की के एकदम खुश हो गए गदगद हो गए हमार पांडे जी के संग्रहालय। और मल्हार में आयन तो बहुत बढ़िया हमार आना सार्थक हो गए, ताम्रपत्र देख के बहुत खुशी व्यक्त करिन ओकर पूरा फिर डिटेल नोट करिन फोटो खींचिन ओला सब अवगत कराए में कब मिलिस का हुईस सब प्रकार के ला हम बहुत प्रफुल्लित होन कि कतका बढ़िया हमार माननीय प्रधानमंत्री जी है अतका बढ़िया पुराना सामग्री मन के महत्व ला बढ़ाए बर ओला सामने लाए बर भावी पीढ़ी में अवगत कराए बर अध्ययन करे बर संजोए बर अतका बढ़िया प्रयास करत है कि और मन ले के गईन है तहाँ 8-15 दिन में मतलब फिर सूचना आ गए। हमन बहुत खुशी होन मल्हार के मन लम्बा बताएं बहुत प्रसन्नता होइस मोर परिवार में एकदम खुशी के माहौल छा गए कि हमार पिताजी दादाजी मन पुरखा मन अतका बढ़िया जिन चीज ला संग्रहित करके रखे है आज ओकर महत्व कतका बड़े है ओला हमन समझेन पहले भी समझत रहन लेकिन आज हमारे एक ठन थोड़ा सा प्रोत्साहन बरोबर मिल गए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात के एपिसोड में हमर ताम्रपत्र के उल्लेख आही और तुम्हार चयन कर लिए गए है कि मोला बिलासपुर कलेक्टर द्वारा सूचना।

0: दिए गए इस
1: अच्छा
0: माननीय संजय अग्रवाल के द्वारा एसडीएम साहब फोन करके बताइन कि महाराज मल्हार के तुहर समान है संग्रह में ताम पत्र के ताम पट्टिका के ओकर उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी है अपन एपिसोड में 31 मई के करही आप लोग संभवतः संयोग में भाग्यशाली हो बात भी हो सकत है आप कहूँ झंझा के तो हमन बहुत प्रसन्न हो भाई बहुत प्रसन्नता हो समल कतका बढ़िया हमन लगिस मल्हार के हमारे इतिहास राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनत है और ये तामपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी है माननीय मोदी जी है अपन आखर से बोलिन मन के बात में ओहूल हमन बहुत ध्यान से पूरा चौपाल बना के गाँव में गुड़ी में रेडियो में सुनत रहन बहुत खुश होन फटाका फोड़ेन मिठाई बाँटेन बहुत खुश होन एक दूसरे बधाई देन कि हमर मल्हार छत्तीसगढ़ के प्राचीन दक्षिण कौशल के राजधानी कथे तेन मल्हार लाज हमर माननीय प्रधानमंत्री जी मन के बात में उल्लेख करते यहाँ के ताम्रपत्र के कतका बढ़िया उल्लेख आ गए राष्ट्रीय पहचान मिल के हमन पूरा गांव क्षेत्र में एकदम गदगद हो गए साहब
1: जी। पांडे जी आप मन चौपाल लगा के पूरा गांव वाला मन आप मन सुना
0: जी
1: मन की बात कार्यक्रम ला
0: जी।
1: हर एपिसोड में कोई ना कोई बात होते जो हर आदमी ला प्रोत्साहित करते
0: जी हाँ साहब
1: ऐसे ऐसा बात बताते हैं जिला हमन कल्पना भी नहीं कर रहे लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं से सूचना मिलते और वो बात मतलब वो शामिल करते हैं। ऐसे ही ये घटना आपके मल्हार में भी घटी
0: जी
1: आप मन खुशी भी व्यक्त करा और जब आप मन खुशी व्यक्त करा और चर्चा हुई आप मन के मल्हार के एकर बाद तो एक पूरा उत्सव जैसा माहौल हो गए
0: जी सर।
1: और जनप्रतिनिधि मन अधिकारी कर्मचारी मन आप मन से फिर तो संपर्क करीन हुई अलग अलग तरह से लोग अपन खुशी जाहिर करीन हुई तो कैसे कैसे आप मन के भेंट मुलाकात हुई इस लोग मन से जनप्रतिनिधि मन से विधायक मन से मंत्री मन से हर कोई आप मन से मल्हारवासी मन से वो खास करके आप मन से मिले के प्रयास करीन हुई
0: मन की बात के जहाँ उद्घोषणा हुई कार्यक्रम में देखिन तो सबले पहली मोला कर्नाटक के बुलगरगा यूनिवर्सिटी के एक झन प्रोफेसर मोर संगी जेन हा मल्हार के भ्रमण कर रही से
1: अच्छा
0: और बिहार के जिला पुरातत्व के डॉक्टर विशु उपाध्याय जेन डिप्टी डायरेक्टर है बिहार सरकार में उमन आए रही है ऐ मन मोला फोन करके बताइन कि महाराज तू तो टीवी में दिखा था बधाई हुआ मन के बात कार्यक्रम में मल्हार के जेन तामपत्र हम देख के आए रहन ओला आज प्रधानमंत्री जी हर संबोधन करत है कि तो मैं फिर महू टीवी में चालू करके देखें और देखें उनके बधाई सबले पहली मूल्य मिलीस तहाँ बिलासपुर के अधिकारी रायपुर के मोर जतका परिचित अधिकारी रिन है विश्वविद्यालय के रायपुर के डॉक्टर नीतीश मिश्रा जी रिन है इतिहास विभाग के जिन प्रमुख है रविशंकर यूनिवर्सिटी के ऊ फोन बधाई दिन जब मोर लगल है बहुत जन के मोला लगातार बधाई मिले लगीस तो मोरो छाती फूलिस कि मैं मल्हार में पैदा हुए मल्हार एक ऐसे बहुत सुंदर नगर है प्राकृतिक नगर है पुरातात्विक संपदा के धनी नगर है मैं बिल्कुल अपन खुश हो गए मैं भगवान मोला बहुत अच्छा जगह पैदा करीन कही के अब बहुत सारा मोला लगातार बधाई एक हफ्ता ले चलत रही साहब
1: जी ये बीच में हम मन प्रयास करें आपसे भेंट करे के फोन के माध्यम से आपसे बातचीत हुई व्यस्तता आपके रही से अब थोड़ी व्यस्तता कम है तो आप लोग आकाशवाणी रायपुर की स्टूडियो बुला के यहाँ आपसे हम लंबी बातचीत कर रहे थे है ना
0: साहब।
1: पांडे जी
0: जी सर
1: ये सारा चीज इतना बड़ा घटना घटिस
0: जी
1: है ना खुशी मनाया खूब आप मन है ना
0: जी।
1: आपके तीन पीढ़ी लगातार मल्हार और आसपास के क्षेत्र में जितना भी पुरातात्विक जिनिस जो मिलते ये मल्ला आप मन संरक्षित करे के प्रयास करा था आप मन के पूरा टीम है जेमन एकर संवर्धन बर लगे हुए हैं और समय बेसमय जो कुछ घटनाएं भी घट जाते कि कोई मूर्ति उठा के ले जाते कुछ ये करते वो करते ओकर से बहुत सारा नुकसान भी होते कि जो शोधार्थी हैं वो मल्ला ओमन वंचित हो जाते हैं ओकर से तो आपके मल्हार के जितना भी पुरातात्विक चीज है महत्व के चीज है ये मल्ला सुरक्षित रखे खातिर संरक्षित करे खातिर आप गाँव वाला मन के का प्रयास होते कि ये सब सुरक्षित रहे और नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एकर से जुड़ सकें।
0: हाँ साहब यही हमार

0: राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के पहचान है, प्राचीन संस्कृति ही है। तो हमारे पुराना संस्कृति के बारे में ज्ञान दही हमर पूर्वज मन जब रजिस्ट्रार नहीं रही होत रही से, वो समय पुलिस के व्यवस्था नहीं रही से, तो प्रशासक मन का करत रही है, राजा के द्वारा में कैसे शासन चलत रही से, यही है हमारे इतिहास पुराना चीज अवगत करा थे। वो सभ्य समान हमर मल्हार में है, वो समय दंड के प्रक्रिया के कतक बढ़िया मल्हार के पत्थर में अंकित है, चोर मन ला दंड दिया जाए तेन हर। और अभी जन तामपत्र उल्लेख करत रहन, यह वही है राजकीय आदेश या जमीन के राजा मन एक दूसर लंग आदान प्रदान कराए, खरीदी बिक्री कराए, लेन देन कराए, तो दान पत्र तामपत्र के माध्यम से कराए। ऐ है हमल नया पीढ़ी ला बताते कि हमर प्राचीन संस्कृति का रही से, और वो समय कतका हमन समृद्ध रहन और आगे रहन, हमर नया पीढ़ी पर शोध पर ये सब बहुत आवश्यक है। हमला पुरातत्व संपदा ला अक्षुण्ण बनाए रखे पर मेहनत करना चाहिए। ये हमर भावी पीढ़ी है, एकर से ज्ञान प्राप्त करी और निश्चित ही एकर से हमन आगे बढ़बो, हमला बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मौका मिली।
1: ऐसा एक प्रयास है आप मन के, के बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ और जैसे आप दो लाइन के मल्हार के बारे में आप सुनाए, ऐसे कुछ और बात है जो आप सुनाना चाहते हो?
0: जी हाँ, हमन मल्हार के प्राचीन मंदिर मूर्ति ल देखथन तो उपेक्षा भी वह थोड़ा सा तरस आते। एक अच्छा आकर्षक हमर छत्तीसगढ़ राज्य के संग्रहालय है मल्हार में बन जतीस, तो हमर पुरातात्विक संपदा जिन धूप पानी में नष्ट हुआ थे ओकर संरक्षित हो जातीस कहके, तो एक बारे में अक्सर हमर पिताजी है कहे अपन रचना में, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, तेरी स्मृति में आँखों से बह जाता है पानी। एक टन छोटा सा व्यथा भी है मल्हार के है, किंवदंती है, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, राजा बेनियु के सिरजे मल्हार। यह हमर पुराना लोकोक्ति मुहावरा में सियान मन कहे।
1: जी बहुत बढ़िया, आप चार लाइन में आप बताया। चलते चलते आप से एक और छोटी सी बात करना है कि ताम्र पट्टिका आपके घर में मिली
0: जी,
1: और ये ताम्र पट्टिका आपके बाबूजी मतलब आपके पिताजी बहुत तेल सुरक्षित रखें अध्ययन करें आप लभी बताएं, ओकर से पहले आपके दादाजी जल हम छत्तीसगढ़ी में बाबा कथन,
0: बाबा जी हाँ।
1: है ना, बाबा के हाथ में इस, बाबा के बाद दादा के हाथ में इस, दादा के बाद आपके हाथ में इस, आपके बाद अगली पीढ़ी में भी आई। तो आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जेकर आज पूरा राष्ट्र में चर्चा होते, कैसा महसूस करता आप और का करना है आप लागे?
0: यह एक ठन मुला बहुत बड़े जिम्मेदारी के एहसास हो गए साहब, मुला बहुत ही प्रफुल्लित हुए मन के बात माया के बाद। एकर पहली मैं लगन से काम भी करत रहे हूँ और अतका बढ़िया मुला उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री तक मल्हार के बात है हमन के परिवार के माध्यम से, मोर पिता जीवन के प्रयास के माध्यम से पहुँचिस, उमा बहुत खुशी हुईस। और मैं एमा मोला काम करे के क्षमता आउ बढ़ गए, मोला जिम्मेदारी के आउ ज़्यादा एहसास होए लगिस। मोला बहुत सारा यहाँ के पुरातत्व संपदा, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व संपदा के बारे में रक्षा करे बा मोला एक ठन बड़े समिति बना के काम करे की इच्छा होते। अब मल्हार के लिए तो हमन तो लगे छुए हैं समर्पित भावना से, यहाँ एक निजी संग्रह ही है हमर तीन पीढ़ी के पहचान है, जिला हमन सरकार के सब राष्ट्रीय धरोहर संजो के रखे हुए हैं। तो मोला बहुत प्रोत्साहन लगी से, मोल बहुत अच्छा लगी से, और मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गए ऐसे मैं मानता हूँ, और मोला बहुत काम करे हुए अपन जिंदगी भर।
1: जी आप लगातार पुरातत्व के क्षेत्र में आप काम कराओ और जो नई पीढ़ी है इला भी आप समझाए के कोशिश करा, जोड़े के प्रयास करा। अभी हमन श्री संजीव पांडे जी से बातचीत करत रहें और ये बातचीत के विषय रहिस पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय जोहार, धन्यवाद साहब।
1: और एक संग मोर भुइया के आज के व्यंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए हास्य झलकी। अजी सुनिए, आलेख श्री राजकुमार शर्मा का है और प्रस्तुतकर्ता हैं समीर शुक्ला।

0: अरे बाप रे, 7 बज गए। ओहो, सूरज सिर पर आ गया और मैं ना जाने कैसे इतनी देर तक सोती रह गई। अब क्या करूं, सारे घर का काम पड़ा है। अब एक ही तरीका है, कुछ काम इन श्रीमान रंजन से करवाया जाए। लेकिन लेकिन वो भी इतना आसान कहाँ है। रंजन से कोई काम करवाना मतलब आसमान से तारे तोड़ना। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। रंजन, ओ रंजन, कहाँ गए? रंजन कहाँ हो? वाह, क्या बात है, ये श्रीमान सुबह सुबह नहाने कब से लग गए? ओ रंजन, अच्छा तो ये श्रीमान नल खुला छोड़कर कहीं चले गए, और मैं समझ रही हूँ ये नहा रहे हैं। आने दो इन्हें, आने दो।
1: आने दो? अरे भाई, किसे आने दो? क्यों सुबह सुबह किसी मुसीबत को बुला रही हो?
0: मैं भला किस मुसीबत को बुला रही हूँ?
1: अभी अभी तो तुम कह रही थी ना, आने दो।
0: वो तो
1: हाँ, वो तो तुम्हारी चहेती मम्मी जी यानी मेरी सासू जी के लिए ही था ना, उन्हें आने दो।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं किसी को नहीं बुला रही थी। और वैसे भी तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मायके से रिश्ता तोड़ दूं।
1: और वो शादी के समय पंडित जी के सामने जो कह रही थी, मैं सदा पत्नी धर्म निभाऊंगी, ससुराल को ही अपना घर समझूंगी,
0: वो जरूर कहा था। और मैं अपना धर्म निभा भी रही हूँ रंजन जी, लेकिन शादी में दिए गए वचन का मतलब ये नहीं कि लड़की अपने माँ बाप से रिश्ता ही खत्म कर ले। शादी दो परिवारों को जोड़ती है।
1: अच्छा, शादी उसको कहते हैं?
0: नहीं, शादी उसको कहते हैं कि लड़की घूंघट में मुंह छुपाए किसी पालतू गाय की तरह पति के पीछे पीछे उसके घर चली आए। मैं भी कहां इनसे बहस कर रही हूँ, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया रंजन।
1: अरे अरे अरे अरे रंजना, अरे भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम तो गलत समझ रही हो।
0: देखो मिस्टर रंजन, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी समझ तुमसे ज्यादा है।
1: अब कौन घर को कुरुक्षेत्र बनाए रंजना। अरे चलो छोड़ो इन सब बातों को, और ये बताओ तुम किसे कह रही थी आने दो?
0: तुम्हें और किसे?
1: लेकिन मैं तो यही हूँ ना।
0: आहा, मैं तो यही हूँ, सुबह से सारा घर छान चुकी हूँ, तुम कहीं नहीं थे।
1: अरे वो जरा बाजार चला गया था।
0: दुनिया का 8वां आश्चर्य, जिन श्रीमान रंजन को 10 बार आवाज दो तब वो 8 बजे सो कर उठते हैं, वो आज सुबह सुबह बाजार चले गए। वाह,
1: वो कुछ काम था ना?
0: जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा काम था? क्या सब्जी की दुकान चालू कर दी है?
1: अरे नहीं भाई, अरे बस वो थोड़ा सा सामान लाना था।
0: तो इतनी जल्दी में थे कि बाथरूम का नल तक खुला छोड़ गए? कोई और चक्कर तो नहीं रंजन जी?
1: अरे अरे कैसी बातें कर रही हो रंजना। अरे हाँ, नल खुला रह गया, उसके लिए सॉरी। अब बोलो क्या बात है, क्यों खोज रही थी मुझे?
0: आज ना रंजन, मुझे सोकर उठने में बहुत देर हो गई है और सारा काम पड़ा हुआ है, तुम जरा मेरी मदद कर दो ना।
1: मैं क्यों करूँ, ये सब मेरा काम नहीं है।
0: लेकिन घर तो तुम्हारा ही है ना, थोड़ा सा काम में मदद कर दोगे तो क्या बुराई है?
1: बहुत बुराई है रंजना जी, घर के काम का जिम्मा महिलाओं का और बाहर का पुरुषों का है।
0: क्या? और वो जो शादी के समय वचन दिए थे कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो चक्कों की तरह रहेंगे?
1: हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था

0: कि एक चक्का स्कूटर का है और एक ट्रैक्टर का।
1: रंजन बहुत हो गया, अब मुझे मुझे मजबूर मत करो तुम।
0: चलो चलो ठीक है, बताओ क्या करूं, बर्तन साफ करने हैं या झाड़ू पोछा करना है?
1: रंजन इन सब के लिए बाई लगी हुई है।
0: तो फिर क्या करूं?
1: क्या करूं? अरे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ उन्हें भी मदद कर दो।
0: मतलब ये कि उनके पाठ मैं याद करूं और परीक्षा देने जाऊं?
1: तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
0: अरे कहां से ठीक रहेगा, सुबह से बाजार गया, खरीदारी की और अब तक चाय तक नहीं मिली, ऊपर से तुम्हारी जिक जिक।
1: रंजन तुम किस मिट्टी के बने हो, देख रहे हो ना घर के सारे काम पड़े हैं, त्योहार का दिन है, ऊपर से तुम्हारी छुट्टी है, एक दो काम में हाथ बटाओगे तो तुम्हारा क्या जाएगा?
0: चलो मान लिया कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मिल भी क्या जाएगा?
1: अरे कोई अपने घर का काम कुछ मिलने के लिए करता है क्या? वो तो अपना धर्म होता है।
0: तो उस धर्म को आप ही निभाइए, मुझे नास्तिक ही बने रहने दीजिए।
1: तुम्हें मेरी कहाँ परवाह होगी, सारा दिन घर का काम कर करके मेरी क्या हालत हो गई है देखो तो। वरना शादी के पहले मैं भी ब्यूटी क्वीन थी।
0: अरे अच्छा जोक है, फिर भी एक बार जरा आईना देख लेना।
1: कई बार देख चुकी हूँ, तुमसे तो बहुत अच्छी शक्ल है मेरी।
0: किसने कह दिया?
1: सभी कहते हैं, और तो और अभी कल ही एक भिखारी आया था, कहने लगा मैं अंधा हूँ सुंदरी, कुछ भिक्षा दे दो। मैंने ना तुरंत उसे 2 रुपए दिए।
0: बेचारा सचमुच अंधा था जो तुम्हें सुंदरी कह रहा था।
1: क्यों जल गए ना? अब सब छोड़ो, जाओ बगीचे में पानी डाल दो।
0: हाँ बस यही काम है ना?
1: ये कर दो फिर दूसरा बताती हूँ।
0: हे भगवान इन औरतों से बचाओ।
1: एक मिनट रंजन, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम सुबह सुबह बाजार क्यों गए थे।
0: अरे भाई आज होली का दिन है, थोड़ी देर बाद माहौल रंग गुलाल के मारे ऐसा हो जाएगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ 2 चीजों से डरता हूँ, एक रंग और दूसरी तुम।
1: माने ना अपनी हार।
0: बस इसीलिए सुबह से बाजार जाकर जरूरी सामान जैसे सब्जी मिठाई शैम्पू वगैरह सब ले आया।
1: शैम्पू? लेकिन शैम्पू तो घर में रखा हुआ है ना?
0: अरे ये दूसरा शैम्पू है, कल किसी ने बताया कि रंजन एक नया शैम्पू आया है जिसको पूरे बदन पर उपयोग कर सकते हैं, शरीर चमकेगा भी और किसी भी तरह के रंग के दाग यूं निकल जाएंगे।
1: लेकिन तुम तो रंग खेलते ही नहीं, फिर ये शैम्पू?
0: अरे बच्चों के और तुम्हारे काम तो आएगा।
1: ठीक है तो अब श्रीमान जी कुछ काम आप संभालिए और कुछ मैं करती हूँ।
0: जो आज्ञा देवी।
1: तुम्हारा कल्याण हो।

0: अरे भाई रंजना, अरे ये घर है या स्टेडियम? अरे सारा सामान व्यवस्थित रखते, साफ करते और पौधों में पानी देते देते तो मैं थक गया भाई।
1: अब समझ में आया कि हम औरतें घर का काम किस तरह करती हैं।
0: तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक।
1: अरे ये कौन आ गया?
0: अरे एक ही तो है जो काल बेल नहीं बजाता, सिर्फ दरवाजा पीटता है, तुम्हारा चहेता देवर रमेश।
1: अरे रमेश भैया आए हैं। भैया नमस्ते।
2: नमस्ते भाभी जी।
1: भैया सुबह सुबह इधर कैसे?
0: अरे मुफ्त का चाय नाश्ता, वो भी सुबह सुबह और गर्मा गर्म कहीं मिलता है?
2: देखा भाभी, ये है दोस्त, कितनी इज्जत करते हैं।
1: रंजन ये क्या तरीका है बात करने का?
2: भाभी आप तो जानते हैं इस कंजूस का स्वभाव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अच्छी सी चाय पिला दीजिए।
0: यार रमेश, तुम जब तनख्वाह लेते हो ना तो उसमें से कुछ पैसा मुझे दे दिया करो।
2: क्यों, कुछ तंगी चल रही है क्या?
0: नहीं, ये जो तुम रोज यहाँ चाय नाश्ता करते हो ना उसका बिल एडजस्ट हो जाएगा।
2: रंजन तुम ऐसा करना, रिटायरमेंट के बाद एक होटल खोल लेना।
0: अगर होटल

0: बोला तो तुम वहां नहीं आओगे। और रंजना जी, आप अब तक क्यों खड़ी हो, जाओ कुछ ले आओ, ये ऐसे तो टलेंगे नहीं।
1: रंजन, क्या बात है, आज तुम सुबह से तैयार नजर आ रहे हो।
0: वो आज होली का दिन है ना यार, इसीलिए सुबह से कुछ घरेलू सामान लाने चला गया था।
1: क्या क्या ले आए?
0: अरे कुछ नहीं यार, बस सब्जी, भाजी, मिठाई, और कल तुम्हें फोन पर एक शैम्पू के बारे में बताया था ना, वो भी खरीद लिया। ये देखो
1: रंजन, यही शैम्पू तो मैं भी खरीद कर ला रहा हूँ, ये देखो।
2: अरे ये क्या, एक जैसे दो शैम्पू?
0: हाँ भाई, एक मैं लाया हूँ और दूसरा रमेश लाया है।
1: लेकिन रंजन, जितना सुना है शैम्पू उतना अच्छा है या नहीं मुझे पता नहीं।
0: अब हाँ सो तो है, तू ऐसा कर, चाय पी, तब तक मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, शैम्पू कैसा है पता चल जाएगा, अगर ठीक नहीं निकला तो दोनों चलकर दुकानदार की खबर लेंगे।
1: बिल्कुल।

0: अरे भाई, नहाने से बहुत अच्छा लगा, गर्मी भी बढ़ गई है। कितना मजा आया। अरे तुम लोगों को ये क्या हो गया? अरे इतना हंस क्यों रहे हो?
1: अरे अपना शरीर तो देखो रंजन जी, पूरी तरह रंगा हुआ है।
0: अरे हैं? अरे लेकिन ये रंग कहाँ से आ गया?
2: शैम्पू की बोतल से।
0: अरे शैम्पू की बोतल में रंग कैसे आएगा?
2: वो ही हो कि मैं जो शैम्पू की बोतल लाया था उसमें रंग भरा हुआ था। तुमसे बातचीत में मैंने बोतल बदल दिया और तुम बड़े प्रेम से रंग में नहाकर आ गए।
0: अरे रमेश के बच्चे ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ।
2: भाभी मुझे बचाओ वरना ये रंग बिरंगा आदमी ना जाने क्या करेगा।
0: अरे ठहर, कहाँ जा रहा है?
3: अभी आप सुन रहे थे हास्य झलकी, अजी सुनिए। आलेख श्री राजकुमार शर्मा का था और प्रस्तुतकर्ता थे समीर शुक्ला। प्रतिभागी कलाकार थे संजय पांडे, श्याम वर्मा और अर्पिता बेडेकर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, अभी सुबह 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में सुबह 11:05 पर सुनिएगा कन्नड़ भाषा का पाठ, रचनाकार बीआर गीता। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में दोपहर 1:30 पर सुनिएगा अपन गोठ में आवाओ बरखा के स्वागतकरण। और होगा क्रम डॉक्टर के सुझाव में प्राकृतिक चिकित्सा हमार स्वास्थ्य पर वरदान। इस विषय पर डॉक्टर योगिता टिकरिया ले संगीता वर्मा की गोठ बात आप सुन सकते हैं। साथ ही सुनिएगा बहनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत सचिन देवबर्मन का है और फिल्म का नाम है अनुराग।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोन इन फॉर वॉइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से

0: महेंद्र शाह रेडियो स्थान बोल रहा हूँ सर।
1: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वर में अब आपको सुनवा रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत सचिन देवबर्मन का है और फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: रविंद्र जैन के गीत और संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दो जासूस का गीत। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथी। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 9:40 होने को हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीराम साहू और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। पहले सुनिए मनीराम साहू और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।
1: आओ घट दानी महादेवला।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मनीराम साहू और साथी। आइए अब सुनते हैं अखिलेश साहू और मनीराम साहू के स्वर में ये लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मणिराम साहू और साथियों को। इन्हें आप इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर पुनः सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में 510 करोड़ रुपए की लागत के 300 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने और धान के साथ अन्य फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2036 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान किताब, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की स्थिति पर भी चर्चा के साथ ही VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर भी चर्चा होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंबिकापुर में हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाकर साप्ताहिक से द्विसाप्ताहिक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के रायपुर कार्यालय में नए क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार कल पदभार ग्रहण करेंगे। दुर्ग में कुरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुरियर संचालकों की बैठक की और अधिकारियों ने सभी पार्सलों की सख्त जांच और बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही, साथ ही ये है बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ भी। प्रकृति यहाँ लहलहाती है, बलखाती है और है मुस्कुराती। यहीं का एक बेहद खूबसूरत इलाका है बस्तर। कभी बस्तर दुर्गम घाटियों और घने जंगलों की आदिम बस्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर जाना जाता है चहुमुखी विकास के लिए। बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों में अब विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। यहाँ के दूर दराज के इलाके भी अब पहुंच मार्गों से जुड़ चुके हैं। गांवों, टोलों और मजरों तक शिक्षा की अलख जग चुकी है। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। बेरोजगारों के लिए स्वावलंबन के नए नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर खेलों में भी सबसे आगे है। खेलो इंडिया के राष्ट्रीय खेल आयोजन में यहाँ के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दमखम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यही तो है बस्तर के विकास की एक साफ तस्वीर
1: कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर क्षेत्र का जो पहला प्रवास है और वो भी सुकमा की धरती से शुरू किए हैं, और इसके पहले भी हम कई बार सुकमा आए हैं, लेकिन आज जो इतनी गर्मी के बाद इतनी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रमाण है कि सबको विकास पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है। और आज हम पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो पाया है। और ये क्षेत्र जो 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक विकास से वंचित रहा, नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुँचाए हैं, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, विकास यहाँ पर पहुँचाएंगे, वो काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर 308 करोड़ के विकास कामों का सौगात सुकमा जिले को मिला है, उसके लिए भी सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना।

0: पहले बस्तर की वादियों में एक डरी सहमी सी आहट गूंजा करती थी, लेकिन अब उसकी जगह साहस और भरोसे के गीत गाए जा रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते अपने ही गांव में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव के ही पढ़े लिखे युवक युवतियां उनके अच्छे शिक्षा दूत जो बन गए हैं। दशकों तक उग्रवाद की गिरफ्त में रहे बस्तर के युवा अब गुमराह नहीं होते, क्योंकि वे समझ चुके हैं लोकतंत्र की शक्ति को। नियत मिलनार योजना ने यही काम तो किया है। इस बारे में नारायणपुर की जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा खलखो ने बताया।
1: बस्तर संभाग के प्रभावित क्षेत्र में स्थापित जो नए कैंप स्थापित हो रहे हैं, उनके 10 किलोमीटर के परिधि पे हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसको नियत मिलनार योजना मूल रूप से इसको कहा गया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% लाभ हम लोगों तक पहुंचा सके। इस योजना में इनिशियली जो 1.0 जो जिसको कह सकते हैं, वो 5 जिले शामिल थे, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। 2.0 जो नियत मिलनार 2.0 नियत मिलनार 1.0 का विस्तार करते हुए शासन लाना चाह रही है। ये इसको 10 जिलों में टोटल शासन लेकर के आ रही है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, गरियाबंद, मोला मानपुर और खेरागढ़ छुईखदान। इसके अंतर्गत भी जितने गांव हमारे पूरे जिले में हैं, उन सभी को हमको टारगेट करना है और वहां तक हमको शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर उनको सैचुरेट करना है। इसमें जो है सभी विभाग इसमें शामिल हैं। पंचायत ग्रामीण विकास हो गया, पीएचई हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हो गया, क्रीड़ा, विद्युत, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। जितने भी लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि से गांव का संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी नियत मिलनार योजना में नक्सल पीड़ित रहे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं और जन जागरूकता से हम शासन की विकासकारी योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं। नियत मिलनार योजना जो 1.0 थी, उसके अंतर्गत काफी काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, विद्युत लाइन बहुत सारे गांव में पहली बार गई है। पीडीएस हम अब ट्रैक्टर के माध्यम से अंदर अंदरूनी गांव में हम पहुंचा पा रहे हैं। हैंडपंप खनन काफी नए नए गांव में हुआ है। हितग्राही मूलक शासन की विभिन्न योजनाओं को भी हम सीधे अब जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। शुरू में जो है 1.0 में सिर्फ 5 जिले थे, अब 10 जिले हो गए। रोड कनेक्टिविटी इसमें प्राइमरी जो पहला फोकस रहता है वो रोड कनेक्टिविटी का रहता है, क्योंकि अगर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रोड से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो वो गांव हमेशा कट ऑफ रहेगा। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उन गांव को मेन स्ट्रीम से या मेन जो कम्युनिकेशन चैनल है उनसे जोड़ पाए। रोड कनेक्टिविटी, टावर हो गया, विद्युत लाइन भी हमारे नारायणपुर में काफी गांव में पहली बार विद्युतीकरण हुआ है। पहले बार जैसे मसपुर हो गया, गारपा हो गया, पहली बार यहाँ पे विद्युत लाइन गई है। अंदर अंदर के ओरछा ब्लॉक के अंदर के गांव जो थे, पहले राशन लेने के लिए ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में आते थे, अब हम वहां पे ट्रैक्टर के माध्यम से गांव तक पीडीएस का उनकी राशन है वो हम पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जो हम पहले कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नक्सल के प्रभाव के होने से नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम लोग रीच आउट कर पा रहे हैं। आंगनवाड़ी, जिसमें अंदर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पॉपुलेशन का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे एक आंगनवाड़ी 300 का पॉपुलेशन हो तो बनती है, तो उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। नए बच्चे जो आंगनवाड़ी सभी नहीं जुड़ पाए, उनको हम आंगनवाड़ी में जोड़ रहे हैं। नारायणपुर ब्लॉक में अभी तक 22 ऐसे नए स्कूल हम लोग खोले हैं जो पहले नक्सल प्रभाव के कारण बंद था, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हम लोग पहली बार शासन जाने के वजह से प्रशासन के जाने के वजह से खुली है, तो 22 नए स्कूल खुले हैं। आंगनवाड़ियों में हम लोग ने बच्चों को नए इनरोल किया है, स्कूल्स में हमने बच्चों को नए इनरोल किया है। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच पा रहे हैं लोगों तक।

0: बस्तर वनोपज और वनौषधियों के लिए भी विख्यात है। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, चार, शहद और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं। इन्हीं वनों में मौजूद हैं तरह तरह की जड़ी बूटियां और ढेरों वनस्पतियों के अनमोल खजाने। बस्तर की जनजातियां इन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यही वजह है कि वे जल, जंगल और जमीन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: मैं श्रीमती मेनका चंद्राकर, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर हूँ। अफेक्टेड है, नक्सली अफेक्टेड है, नक्सल प्रभावित हैं और बुनियादी सुविधाओं से, शासन की योजनाओं से जो की पहुंच से जो दूर हैं ऐसे गांवों को, और शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन गांवों को बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी सुविधाओं से मतलब इनको लाभान्वित करना, और शासन की जितनी भी व्यक्तिमूलक योजना है उन सभी का सीधा लाभ इनको पहुंचाना, जैसे कि प्रत्येक का आधार कार्ड हो, प्रत्येक को उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस कनेक्शन मिला हो, इस तरीके से व्यक्तिमूलक एवं समुदाय मूलक सभी योजनाओं से इनको सैचुरेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रथम फेज में इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। फरवरी 2024 के बाद जो बस्तर संभाग के ऐसे नक्सल प्रभावित जिले जहां पर की सुरक्षा जो शिविर है ना, कैंप जो लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा कैंप, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में ताकि एक सुरक्षित वातावरण में शिविर लगाया जाकर इनको सामुदायिक और व्यक्तिमूलक योजनाओं से, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, यहाँ पे जो रहवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्यतः जो है वो वन अधिकार पट्टा से संबंधित सैचुरेशन किया जाएगा, जो भी वहाँ पे ऐसे हितग्राही हैं जो कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका कब्जा है उस क्षेत्र, मतलब आवास का कब्जा हो उनके पास या फिर कृषि भूमि का कब्जा हो, तो उनको नियमित तरीके से वनाधिकार पट्टा उनको शासन के द्वारा जारी किया जा सकेगा। और इसके साथ ही इसमें छात्रावास एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ के बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अगर छात्रावास की सुविधा नहीं है तो उनको छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, इसमें स्कॉलरशिप को भी जोड़ा गया है कि उन सभी बच्चों को FRA, मतलब बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाए। अभी तक काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं अपने ही अगर विभाग का बताऊं तो अभी तक जो 5 जिले थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, उसमें व्यक्तिगत वनाधिकार के कुल जो है 4988 जो वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया है, सामुदायिक वन अधिकार का 214 पट्टा वितरित किया गया है और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 78 पट्टे जो हैं वो वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावास भी, जहाँ पे छात्रावास की सुविधा तो थी मगर बच्चों की सीट संख्या जो स्वीकृत सीट छात्रावासों में कम थी, तो इसको शासन ने बहुत ही उसमें अपने प्रायोरिटी में लेते हुए वहाँ पे 650 सीटों की वृद्धि की है, मतलब सीटों का छात्रावास में स्वीकृत सीटों में वृद्धि करके जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे उनको भी प्रवेश दिलाने का कार्य किया है हमारे विभाग के द्वारा।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: बस्तर में सार्वजनिक और निजी निवेश के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ सड़कों, पुलों और शिक्षा का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, उसी द्रुत गति से अस्पताल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी विकसित हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एमएसएमई और अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य विद्यालय और आईटीआई स्थापित किए गए हैं।

0: बस्तर में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 12,200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे आवागमन और सुरक्षा दोनों ही बेहतर हुए हैं। स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं आरंभ की गई हैं। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और आजीविका मिशन के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो बस्तर के विकास को गति दे रही हैं। इस बारे में बता रहे हैं CEO दंतेवाड़ा श्री जयंत नाहटा।
1: जिसमें व्यक्तिगत जो योजनाएं हैं, इसमें जैसे जॉब कार्ड, पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, लोगों के घर में घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिनको टॉयलेट नहीं मिले उनको टॉयलेट मुहैया कराना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, और ऐसे ही जो सामुदायिक आधारित जो हमारी संरचनाएं हैं, जैसे सभी उन गांवों में सैचुरेशन मोड पर सभी आंगनवाड़ियों को बनवाना, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उनका निर्माण करवाना, राशन कार्ड, प्राइमरी स्कूल, प्लेग्राउंड, सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सबको पहुंचाने और सैचुरेशन करने का नियम देना जो 2.0 है, ये पूरी इसमें योजना है। इसके अंदर दंतेवाड़ा जिले के पहले हमारे दो कैंप्स थे, तो जो भी सिक्योरिटी कैंप्स हमारे नए 2023 अंत और 24 के बाद बने हैं, तो दंतेवाड़ा जिले के अंदर मुलेर में जो कैंप है और जो बासनपुर कैंप है, तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव हैं, तो हमारे 13 गांव जो हैं वो उसमें शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले के अंदर जो, जैसा मैंने बताया, जितने भी व्यक्तिगत मूलक योजनाएं हैं उसमें बहुत अच्छा पिछले 1.5 साल में सैचुरेशन में काम हुआ है, जिसमें सभी नियत के गाँव में 95% से ऊपर आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इसमें आधार कार्ड भी 95-96% के ऊपर दिए जा चुके हैं। इसमें प्लेग्राउंड भी बने हैं। मुलेर में माननीय CM साहब का विजिट भी पिछले साल ही हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे भी विकास में बहुत तेजी आई है। वहाँ पे रोड बनना बन चुकी है। वहाँ पे और भी PMGSY और MSME मिशन के अंदर हरगढ़ जल भी मुलेर गांव बन चुका है। ऐसे ही बासनपुर के अंदर भी अलग अलग विकास कार्य हुए हैं। सभी तरीके की योजनाओं और सभी तरीके के फंड्स जो हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। जैसे DMF को यूज किया गया है, सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, उसको उसका कन्वर्जेंस किया गया है, और SCA जो फंड होता है उसको भी यूज करते हुए जितनी भी लोगों की डिमांड, तो हमने इसमें जो DMF है उससे जैसे मुलेर का 2 करोड़ से ऊपर का हमने सैंक्शन दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो काफी इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पे, बिजली पहुंच गई है, लाइट।

0: बस्तर में पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण की भी अपार संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों का विकास और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हर साल किए जाते हैं। बस्तर के किसान, महिला समूह, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इसे संवार रहे हैं, इसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं। बस्तर में बुनियादी जरूरतों के विस्तार के लिए कई काम किए जा रहे हैं।
1: मैं कृपेन तिवारी, सहायक आयुक्त के पद पर जिला कोंडागांव में कार्यरत हूँ। जो बस्तर के वनांचल क्षेत्र है, जो नक्सल से प्रभावित थे, बस्तर में 5 जिले थे जिसमें से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया था, और उनको उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को वहां पहुंचाना था और अंतिम छोर तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुगम सुनिश्चित करना था। सरकार ने इस पर अच्छा कार्य किया, पूर्णता और सघनता से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने की ओर सरकार कार्य कर रही है। शासन में भी कोई विशेष विभाग, एक विशेष विभाग नहीं, शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। जैसे राशन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके पोषण को ध्यान देने और बुनियादी स्तर पर उनका विकास करने के लिए बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए, शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता होती है। जनजाति कार्य विभाग की आवश्यकता होती है। वैसे ही विभिन्न विभागों का सभी का साझा सहयोग से ही जनता तक अंतिम रूप से पहुंचा जा सकता है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। तो अब ये शासन कहे कि उस क्षेत्र को हमने टारगेट लिया हुआ था, फोकस में रखा हुआ था, केंद्र बिंदु में रखा हुआ था, तो उस क्षेत्र की विकास करने के लिए ही ये 2.0 नियत निर्णय का प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही इसके सैचुरेशंस को ही इस वर्ष इसमें लक्ष्य रखा जाएगा और आगामी जैसे ही शासन की निर्णय आएगी वैसे ही इसमें प्रशासन करेगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल है, PDS भी शामिल है और रोड एक्टिविटीज भी इसमें शामिल है। ये जो भी आधारभूत और संरचनाओं से लेकर जो अपने सर्विसेज सेक्टर्स की जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें शामिल है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के विकास को लेकर कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अब कृषि, कौशल विकास, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बस्तर की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का संकल्प नवा अंजोर विजन के माध्यम से पूरी तीव्रता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज से इस बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत किए हैं। अब आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक एक घर में जाके एक एक लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और

उनकी बीमारी का इलाज होगा और आने वाले समय में नियत निलाना 2.0 वो भी शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर होगा और शिविर में सारे अधिकारी रहेंगे सभी विभाग के, और जो भी योजनाओं से संबंधित राशन कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, वन भूमि का पट्टा की बात है, सब सारा समस्याओं को निपटाते जाएंगे। भी हम लोग अभियान बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाले हैं।

बस्तर संभावनाओं की धरती है। यही कारण है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें एक मजबूत स्तंभ न खड़ा किया जा सके। यहाँ की मिट्टी की सौंधी-सौंधी गंध में बेहद ही अपनापन है। बस्तर सदियों से सबको लुभाता है और बड़ी ही आत्मीयता के साथ यहाँ आने को आमंत्रित भी करता है। छत्तीसगढ़ के विशाल कैनवास पर अब बस्तर की खुशहाली के कई रंग खिल उठे हैं। यहाँ के मांदर की थाप और बांसुरी की तान से विकास के सुर निकल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे जोशो खरोश के साथ बस्तर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहले गीत के लिए आवाजें पापोन और रोंकनी गुप्ता की हैं। वरुण ग्रोवर के बोल, अनु मलिक का संगीत और फिल्म का नाम है सुई धागा।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत, संगीत विशाल भारद्वाज का था और फिल्म का नाम था पटाखा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम तुम्हारी सुलु। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत रोकनी गुप्ता के स्वर में। गीत और संगीत शांतनु घटक का है।

ओमकारा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज के स्वर में। गुलजार और नचिकेता चक्रवर्ती के लिखे बोल थे, संगीत विशाल भारद्वाज का था। लीजिए अब सुनिए अक्टूबर फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का है।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं असीस कौर के स्वर में शकील आजमी का लिखा गीत। राशिद खान का संगीत है और फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया,

0: खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों

0: हाल ही नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। समूहगान शिक्षा के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कन्नड़ भाषा का पाठ। रचनाकार हैं बी आर गीथा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाडु
0: तिहवु हारु तिहवु
1: हाडु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी
1: तो मुगिला उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं?

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा का पाठ। रचनाकार थे बी आर गीता। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में, रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अमर प्रेम।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया।

0: बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ। रवि का संगीत है, आवाज महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है गुमराह।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पारसमणि फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में। असद भोपाली के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

0: नाइट इन लंदन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान मिले हीरे, मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2026 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में चूही पाली गांव के पास लोगों को लेकर जा रहा मालवाहक वाहन पलट गया। हादसे में 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। वहीं आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। इसी के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से लेकर तेज वर्षा और वज्रपात भी हुआ है। वज्रपात की स्थिति प्रदेश में आगामी 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुद्धि ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले, मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले

श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजन

मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओ, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की।
आठ आठ शून्य शून्य चार चार

0: 5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

सन 1980 अप्रैल का एक दिन,

0: अरे बस्सी, तो बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल खचल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
1: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बसंती बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो चलो
3: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मन ला आज के कार्यक्रम ले अनुभा अग्रवाल के मयाले भरे राम राम जय जोहार।

त आओ संगी हो आज के कार्यक्रम ला शुरू करथन आउ देखथन कि हमर कोन संगवारी मन हमला फरमाइश पठोइन है ए पहली गीत बर। ए हमर संगवारी है रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा दतरिंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु रीता यदु देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री खट्टी महासमुंद ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा ओभिषम दास मानिकपुरी सिर्री गातापार ले हैं धनेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका ओ पूनम साहू चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ सिंह राम सहोदर कोई ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम धुर्वे जामुनबाई फिरतराम मालती धुर्वे ग्राम भड़गा कोदवा गोड़ान ले हैं श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल मरावी मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश और राहुल साहू कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव।

0: सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव ले हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। भिलाई ले विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। गंडई पंडरिया ले दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। बेमित्रा ले राज और सारिका वैष्णव। सिमगा ले हैं लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष और प्रकाश सेन। रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार, चित्रेखा, शुभम, सेजल साहू। पलारी ले प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद, चंद्रकांत, शारदा, उजीत वर्मा। आमा खोड़रा रेंगाखार ले देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम। औ लोहारडी ले हैं अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। आप सब सुनना चाहत हो कृष्ण कुमार सेन और साथी मन के गाए ये गीत।
1: छत्तीसगढ़ी हाँ गा

रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, गांव परसटोला ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेन तुषारणी मसिया, दतरेंगी ले विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीणा यदु, ग्राम बंबूडी बावनकेरा ले डिगेश महिलांक, रमाकांत चंद्रकांत महिलांग, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्रीले चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम शिखा उशेफाली, भाटापाराले बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडीले सुब्रत चौधरी, भुरसुदाले हैं संतोषी सेन, ज्योति नेहा, मीनाक्षी पलक और शारदा सेन, भाटापाराले नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु और आरती यदु, रामनगर रायपुरले राजेश अंबादे, शशिकला और पूजा अंबादे, बठेना ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, ग्राम चटौत सारागांव ले सुजान वर्मा, सुहद्रा आयुषी औ कृत वर्मा, कोटा रायपुर ले अरुण अनिल ईश्वर वर्मा औ दिनेश सेन, भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, चंडीगढ़ ले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद, रंभारानी निखिल कुमार, नैतिक कुमार निषाद, धरसीवा ले छेदुलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा यादव, भानबेड़ा पुंगवाल ले भारत राम पटोटी, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पटोटी, बुटगहन ले रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति, औबन बघेरा ले योगेश सारवा, आशा नीरज नीलेश औ अंजलि सारवा।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले ये समय आप मन सुनत हो कार्यक्रम आप मन के गीत कार्यक्रम के अगला गीत ला पसंद करें हैं कोरदा लवन ले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार शिव कुमारी हेमलता बेद किरण वर्मा कतियापारा जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि रेयांश कान्य आदित्य देवांगन शीतलानगर दुर्गले हैं शिव और भगवान चंद्राकर पटेल नगर मलोटले रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया रामचंद्र जी देवांगन युवराज सुनैना पिंकी गीता यश जोगू आपमन हो सरंगपाल ले कुल्हारी कोट पांडुका ले नरोत्तम कश्यप नीतू कश्यप मोहनीश और अनुराग कश्यप हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस दास वैष्णव रीचा गायत्री वैष्णव भीष्मदास मानिकपुरी सिमगा ले सविता जैन मोनिका जैन ग्राम दरचूरा रे फिरंता साहू दुलौरिन साहू कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू कोरबा ले हैं नैन दास शीला दीवान ओम प्रकाश रुक्मणि प्रीति दीवान सिद्धांत शौर्य और सानवी दीवान गुजरात गांधीग्राम ले प्रवीण सोनी कलावती सोनी भिलाई नगर ले अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा श्याम कुंवर डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा तामुरिया मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ज्योति रेयांश ठाकुर उमरखेड़ महाराष्ट्र ले अभिजीत गौहाणकर सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश गौहाणकर ग्राम बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू हेमलता योगेश्वर साहू ग्राम जैसा कर्रा चारामा ले असाड़ू राम निषाद खिलावन ऋषभ निषाद आप सब सुनना चाहत हो मनहरण वैष्णव और रूपवंती बघेल के स्वर मा ये गीतला

ग्राम रोहांसी ले हैं डगेसराम साहू, घनश्याम साहू, नूतन गौरव साहू, बेमेतरा ले पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या, सुषमा सारथी, भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम आऊ मोहम्मद साजिद, पटपर डोंगरगढ़ ले रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता आऊ जयंती ध्रुव, शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फैज खान, बिल्हा ले हैं शेख नासिर आऊ महजबीन बानो, ठेठवार लांझिया ले हंसाराम मंडावी, गीता मंडावी, जेवरा सिरसा अहिवारा दुर्ग ले मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी, बेना देवी और जवाहर साहू, ग्राम भानपुरी मुसरा ले हैं आत्माराम यादव और विदेशी यादव, मयारू डेरा नेवारी ले योगेंद्र दास बघेल, उर्वशी मानिकपुरी, मानेगांव मलाजखंड ले शिव कुमार शिवजे, श्यामा शिवजे, भुरसुदा ले भगवानी सेन, संतोषी सेन, गजेंद्र सेन, कांकेर संबलपुर ले ओजस्वी तेजल यादव, यहीं ले हैं फागुराम और ज्योति यादव। आप सबके पसंद मा आवो सुनो कार्यक्रम का आखिर में माया खापरडे और प्रकाश देवांगन के गाए ये गीत।

यही गीत संग अब होवत है हमर जाए के बेरा। आज के कार्यक्रम में गीत लजोरे रहिन बीर भान साहू। तो अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला बिदा। जय जोहार।

0: ये था छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन का एक बजा है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: They all constitute an important threats for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है।

0: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट हॉबिट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म है अभिला

0: अधिकार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत रमेश पंत का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: चरित्रहीन फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

दिले नादा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। शब्द रचना नक्शलालपुरी की थी और संगीत था खयाम का। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स केंद्र 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा आवाओ बरखा के स्वागत करण। डॉक्टर के सुझाव क्रम में प्राकृतिक चिकित्सा हमर स्वास्थ्य बर वरदान, इस विषय पर होगी डॉक्टर योगिता टिकरिया ले संगीता वर्मा के गोट बात, और होगा क्रम बहिनी मन के चिट्ठी और गीत संगीत।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और आज शाम 6:30 पर सुनिएगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:10 पर अपन गोठ का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत।

किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात केंद्रित होगी, सतत आय पर पपीता की खेती और भू अधिकार पत्रों का डिजिटलीकरण। किसानवाणी में शाम 7:30 पर होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। इसमें आज विषय रहेगा त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन। जानकारी देंगी श्रीमती अनुभूति देवांगन। लोक संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनीराम साहू और साथी, और रात 9:30 पर आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में कमार गीत सुनिएगा सूनाराम और साथियों के स्वर में, और सरगुजिया गीत के कलाकार होंगे इंद्रमणि दास और साथी।

आपकी पसंद, श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा आज रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा शंभू प्रसाद पवार का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में आज शाम 5:10 पर अपन गोठ का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात केंद्रित होगी सतत आय पर पपीता की खेती और भू अधिकार पत्रों का डिजिटलीकरण इस विषय पर। शाम 7:30 पर किसान वाणी में होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, जिसका विषय रहेगा त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन। इस विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती अनुभूति देवांगन, सहायक मत्स्य अधिकारी रायपुर। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे लक्ष्मीकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

धरती पे धरती दाई के कोरा अगास के बादर ले भींजत हे, सुखाए डार पात मा फेर नव जीवन सींचत हे, रिमझिम फुहार के संगे संग सबो खुशहाली मनावत हे, जुर्मिल संगी जमरिया सब बरखा रानी के स्वागत करत हे। यही भाव संग घर अंग सुनैया जम बहनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। बहनी हो, छानी के बरेंडी में चढ़े अघवा का कला खपरा लौटावत देख के, किसनहा भाई मल्ला खातू माटी पालत देख के, और गाय गरु बर पैरा भूसा धरत देख के, किसनहीन बहनी मल्ला चौमासा बर छेना लकड़ी सकेलत देख के, ये तो समझ आवत है कि असाड़ अवैया है, और सब ओकरे तैयारी माँ स्वागत में लगे है। और अभी के मौसम ल देखन ना, तक कोनो डहर पानी तक कोनो डहर बदरहा घाम दिखत है। और ये सिरतोन बताए बहनी हो, लकलकावत घाम माँ अंगरा कस्ती पे धरती दाई के कोरा माँ जब पानी के बूंद पड़ीस, तब धरती दाई मुस्किया ले धरलीस, लहसत पेड़ पौधा मन अगास के पानी पाके हरियाए ले धरलीस। ओ बहनी हो, गर्मी माँ चिड़ई चिरगुन के च्यू च्यू नहीं सुनावत रहीस, अब देखो रंग रंग के चिड़ई के च्यू च्यू चारों मुड़ा गुंजा थे। देखन न बहनी हो, वर्षा के स्वागत हम मनखे संग सबो जीव जनावर तको करते, काबर वर्षा के आयले प्रकृति के कन कन मन नव जीवन के संचार होते, किसान के चेहरा माँ खुशी झलके ले धर लेते, और बिजाही बोय के तैयारी शुरू हो जाते। बहनी हो, ये वर्षा हमार जिंदगी के आधार आए, ये हमला प्रकृति संग जोड़ के रखते, बिन पानी के पेड़ पौधा जिया नहीं, और इसने मन के बिन प्रकृति के नहीं रह सके, तेकर स्थिति हमला पानी ला बचाना है, ताकि कोनो भी मौसम में पानी की समस्या झन हो, और ऐसने पेड़ लगाना है, और पर्यावरण की रक्षा करे माँ अपन जिम्मेदारी निभाना है। बहनी हो, वर्षा के रिमझिम फुहार माँ धरती धाई भर नहीं हरियावे, बल्कि हम सबो के मन हरिया जाते, ता आओ बहनी हो, ये जीवन दयनी वर्षा के हम सब मिलके स्वागत करन, प्रकृति के आभार मानन।

जोन गीत आपण सुनत रहो त्यांना आपण स्वर्म सजा के लाने रहीन बुद्धिसागर शर्मा, देवेंद्र शर्मा और रजनी रजक। बहनी हो कहते ना प्रकृति स्वयं में सबले बड़े चिकित्सक है, और जब हम प्रकृति के नियम संग जीवन जीथन त जिंदगी स्वस्थ और संयमित हो जाते। त आओ बहनी हो क्रम डॉक्टर के सुझाव में प्राकृतिक चिकित्सा हमर जीवन पर वरदान विषय में विस्तार ले जानबो प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर योगिता टिकरिया ले और उनखर संग गोड बात हमी करे हन यानी संगीता वर्मा। त आओ सुनथन ये भेंटवार्ता। पहला सुख निरोग निरोग निरोग निरोगी काया। बहनी हो कहते ना शरीर ह बने संग देथे त हमर मन तको सबो काम में लगे रहते, और शरीर गड़बड़ेस त काही जिनिस नहीं भावाय, हमर सबो काम प्रभावित हो जाते। तेकर से ती सबले पहले अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखना है, और जब स्वास्थ्य के बात करत हन त चिकित्सा के क्षेत्र बहुत विस्तारित है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक होम्योपैथी या फिर प्राकृतिक चिकित्सा। और हमर भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही कारगर है। हमर पुरखा मन घलो कहा है प्रकृति के संग चलबो त जीवन में संतुलन और सुख शांति बने रही थे, और ये प्राकृतिक चिकित्सा हमला स्वस्थ राखे में कतका सहायता प्रदान करते, यही सब बात ल जाने पर आज हम स्टूडियो में आमंत्रित करे हन प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर योगिता टिकरियाला। डॉक्टर योगिता जी आपके हमर

0: अउ हमर घर आंगन परिवार डहाले बहुत बहुत स्वागत हे। राम राम।
1: राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर योगिता जी। आपसे हम सबले पहले ये जानना चाहबो कि प्राकृतिक चिकित्सा का होथे।
1: देखिए, प्रकृति के नियम और प्राकृतिक उपाय से शरीर ल खुद में ठीक करे के जो क्षमता होते ओला बढ़ाना ही प्राकृतिक चिकित्सा होते। हमर शरीर में खुद ल ठीक करे के क्षमता अपने आप रहते, उही ल हमन भोजन पानी सही विश्राम से व्यायाम से ठीक करथन, उही ल प्राकृतिक चिकित्सा कहते।
0: डॉक्टर योगिता जी, जिसे हमन प्राकृतिक चिकित्सा कहथन और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी प्राकृतिक से जुड़े रहते, तक का ये दोनों अलग अलग है कि एक है?
1: नहीं, दोनों अलग है, लेकिन दोनों के जो दृष्टिकोण है और दोनों के लक्ष्य है स्वास्थ्य सुधारना होते। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं कि आयुर्वेदा की थे वात पित्त कफ ला बैलेंस करे से आप मन रोग से दूर होते, तो वही प्राकृतिक चिकित्सा हा पंच तत्वों में ज्यादा ध्यान देते।
0: अच्छा।
1: एक उदाहरण दे के मैं समझाऊं कि अगर पौधा के पत्ता पीला पड़ जाये तो आयुर्वेदा ओमे उचित औषधि दे के है ना उकर पंच कर्म करके ओला ठीक करते। वही प्राकृतिक चिकित्सा में हमन पौधा ला सही पानी देथन, धूप दिखाथन, सही वातावरण देथन ओला, तब पौधा अपने अपन ठीक हो जाते, उही प्राकृतिक चिकित्सा के थे।
0: अच्छा, वाह, ये तो बढ़िया उदाहरण बताया आप। और एक ठन और बात है, जिसे कई ठन जटिल बीमारी हो जाते है ना, जिमा ऑपरेशन की जरूरत पड़ते, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा उकर पर कतिक कारगर है?
1: वैसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिला प्रकृति ठीक नहीं कर सके, प्रकृति से ही बीमारी आते
0: उत्पन्न
1: और प्रकृति ही ओला ठीक करते। अगर बात ऑपरेशन के है तो केवल नेचुरोपैथी पे निर्भर रहना थोड़ा से मुश्किल होते, ओमे आयुर्वेदिक ला अपनाए लगते। जैसे कि अगर बहुत बड़े कोई हर्निया हो गए तो नेचुरोपैथी में ठीक होए में ओला टाइम लगी, और यदि ककरो घुटना में घिसाव है तो घुटना ला बदले की दिस डॉक्टर है, तो नेचुरोपैथी है नया कार्टिलेज तो नहीं बना सके, लेकिन वजन कम करके दर्द ला कम करके मांसपेशी ला मजबूत कर सकत है, और कुछ में सर्जरी जो है टल सकत है, लेकिन सब में सर्जरी नहीं टल सके। तो अगर ऑपरेशन के बात है तो आयुर्वेद ला भी अपनाए लगी नेचुरोपैथी के साथ, होलिस्टिक वे से पूरा एक साथ इलाज करे लगी।
0: अच्छा, दोनों संग्रह मिलके काम करिए।
1: संग्रह मिलके काम करबो तभी ऑपरेशन ला टाल सकबो, केवल नेचुरोपैथी में ही डिपेंडेंट नहीं रह सकन।
0: और कई जन महिला मन ला संशय रहते है ना कि योग प्राणायाम ला तको प्राकृतिक चिकित्सा कहते, तो एमा कतेक अंतर है? एहू आथे का प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत?
1: प्राकृतिक चिकित्सा योग और प्राकृतिक दोनों अलग है। योगा के सार तत्व है अपन शरीर ला मन ला और आत्मा ला संयम करना, दोनों ला एक संतुलन स्थापित करना, और नेचुरोपैथी के काम है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा के शरीर ला ठीक करे के क्षमता बढ़ाना। तो योग में जैसे आठ अष्टांग योग में आते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और वही प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व शामिल रहते, आकाश तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व जल तत्व पृथ्वी तत्व। तो प्राकृतिक चिकित्सा में योग आते, योग में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं आवे, दोनों एक दूसरे के पूरक हरे। जैसे अगर कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर के पास जावे तो तोला योगा आसन प्रिस्क्राइब करी, तोला मेडिटेशन ध्यान प्रिस्क्राइब करी हुआ, वही प्राकृतिक चिकित्सा है, अलग अलग आयाम से खुद ला ठीक करे मदद करना।
0: अच्छा, और प्राणायाम के?
1: प्राणायाम के मतलब है अपन प्राण ला बढ़ाना, आयाम मतलब बढ़ाना,
0: प्राण वायु
1: सांस के माध्यम से, काबर की सांस से बढ़ के कुछ भी नहीं, अगर ते सांस ला साध डरेस ते हर चीज ला साध दर्द। तो योगा में प्राणायाम तो महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक चिकित्सा में योग प्राणायाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और डॉक्टर योगिता जी, और जब हमन महिला मन के स्वास्थ्य को थीला देखान तो मतलब कई ठन परेशानी रही थे, हार्मोनल परेशानी रही थे, महिला संबंधी कई ठन परेशानी रही थे, तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा कतिक महत्व रखते, कतिक फायदा के है?
1: अगर बात करें महिला स्वास्थ्य के ना, तो महिला स्वास्थ्य में सबसे मेन तो जो हार्मोन आप बैलेंस की बात कर रहे थे, सही दिनचर्या नहीं रहा है महिला मन के, काबर की परिवार को ती ध्यान है, लड़का को ती ध्यान है, खुद तरफ ध्यान नहीं रहा है, खान पान में ध्यान नहीं रहा है ना, तनाव बहुत ज्यादा लेते, हर छोटे छोटे चीज के पूरा घर भर के चिंता ला महिला मन उठा करी थे। अगर चिंता उठाए है सो खान पान में नहीं ध्यान रखबे, दिनचर्या तीन चीज के गड़बड़ी हुई तब महिला मन के दिक्कत बढ़ जाते। तो ये तीन चीज बैलेंस करना और सही डाइट बहुत जरूरी है। अभी तक के मैं जितना महिला मन के देखे हूँ गांव घर में जा जाके, सबसे ज्यादा मोल दिखी पोषक तत्व की कमी।
0: सही कहा था,
1: जैसे

0: डाइट थेरेपी में हमन डाइट थेरेपी देथन ओमें कुछ कुछ न्यूट्रिशन रहते मैग्नीशियम सिलीनियम जिंक B12 वाइटामिन डी अतना धूप में काम करे के बावजूद शरीर में वाइटामिन डी के कमी रहते काबर की वाइटामिन डी भी जो शरीर में अवशोषित होते ओकर भी नियम है केवल धूप में बैठे से वाइटामिन डी नहीं मिले है ना तो तनाव भी कम करे लगी तो पूरा धूप दिखाए लगी शरीर में और उपवास तको करे लगी और सबसे मेन जरूरी है पोषक तत्व के कमी ला सुधारना तब बढ़िया खान पान होना बहुत जरूरी केवल भात और बासी खाए से काम हन नहीं बने तो चावल और सब्जी के साथ साथ तो दाल तको रोज खाए लगी जेकर छत्तीसगढ़ में मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ दाल कोनो नहीं खावे मोर घर में भी बहुत जन ऐसे देखे हो कि दाल बहुत जन ला पसंद नहीं रहा है तो दाल जरूर अपन खाना में शामिल करूँ सब्जी शामिल करूँ सलाद शामिल करूँ
1: संतुलित भोजन
0: लेना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कुछ कुछ सप्लीमेंट भी लेना जरूरी थे महिला मल्ला एक उम्र के बाद हड्डी में कैल्शियम की कमी होते है ना कैल्शियम की कमी होते शरीर के पीएच लेवल एसिडिटी बढ़ जाते तो वो सब ला मैनेज करना बहुत जरूरी है
1: और कुछ भी परेशानी है इस तो पोषक तत्व मन भी शरीर में अच्छा से प्रभाव नहीं करे
0: बिल्कुल नहीं करे
1: प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज के प्रमुख तकनीक का है कैसे ढंग ले इलाज करता हो आप मन
0: प्राकृतिक चिकित्सा के मेन पांच आधार है पंच तत्व जला की थन सबसे पहली बात करूं आकाश तत्व प्रकृति बने आकाश से आकाश मतलब खाली जगह स्पेस एलिमेंट बोलथन ओला खाली जगह में केवल वायु भरा है तो वैसी शरीर में है सबसे ज्यादा खाली जगह है तो खाली जगह में अच्छा मात्रा में वायु भरना और बहुत सही शुद्ध वायु भरना बहुत जरूरी है तो आकाश तत्व के लिए हमन है उपवास चिकित्सा देथन प्राकृतिक चिकित्सा में तो हमन मन के जो मेडिकल वाला रिथे थेरेपिटिक फास्टिंग थेरेपी बोलथन ओला कि हमन है चिकित्सीय तरीका से ओला उपवास कराथन कोनोला नींबू के कोनोला मेथी के कोनोला जूस फास्टिंग करवाथन कोनोला सलाद पे कोनोला फल में अलग अलग तरह के बहुत ही कई प्रकार के उपवास करवाथन हमन है उपवास के अलावा ओकर वायु में ध्यान देना है और उपवास आकाश तत्व में है पृथ्वी तत्व भी शामिल रिथे
1: अच्छा
0: तब मिट्टी चिकित्सा ओला देथन और ही खाली जैसे आप मन देखे हो नवरात्रि में उपवास करथन नौ दिन के उपवास करते तो नौ दिन के उपवास में लोगन मन हा नंगे पैर चलते जमीन में सुतथे ओकर भी एक वैज्ञानिक कारण है अगर शरीर पूरा खाली है और अगर तेहा पृथ्वी में मतलब अर्थिंग लेवत हस तो वो पूरा शरीर ला अवशोषित करी शरीर में तो ओकर एब्जॉर्प्शन लेवल हा बढ़ जाते तो आकाश तत्व है एक और दूसरा है पृथ्वी तत्व जिकर बारे में बताऊं कि पृथ्वी से जुड़ना आजकल 24 घंटा देखता हूँ मैं यहाँ चप्पल पहने रही थे सब जन घरों तक वो आजकल चप्पल के जमाना है
1: डाइनिंग में बैठ के खाना खाना है
0: हर जगह मैं देखता हूँ चप्पल के बिना कोई घर में तको नहीं चला एक कदम आधा घंटा कम से कम पृथ्वी से जोड़ो मिट्टी में चलो और मिट्टी में चले तो घुटना भी अच्छा हो ही काबर की पहली जमाना में चप्पल नहीं रहा है लेकिन पक्की सड़क भी नहीं रही से और कह रहा है गद्देदार रहा है जमीन है तो उकर से तोर जो कार्टिलेज है तोर मांसपेशी घुटना के बढ़िया रहा है तो अभी के जमाना में चप्पल हु बहुत हार्ड रही थे तो पृथ्वी तत्व भी शामिल करना है चप्पल ना पहन के आधे घंटे मत पहनो और जल तत्व अच्छा मात्रा में पानी पीना और हमर हाइड्रोथेरेपी होते प्राकृतिक चिकित्सा के बात करत हो तो अलग अलग तापमान में हमन हा पानी चिकित्सा देथन कि एक ही पानी ला हमन सब में यूज नहीं करन जैसे कोई अलग बीमारी है तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमन ओला चिकित्सा देथन और वो फिर इलाज करथन होकर और एक है फिर अग्नि तत्व मतलब शरीर में ऊर्जा के केंद्र अग्नि से ही ऊर्जा थे शरीर में तो हमन है धूप चिकित्सा देथन अच्छा। और धूप चिकित्सा में भी अलग अलग प्रकार है केवल धूप में बैठाना नहीं है
1: अच्छा।
0: अलग अलग तरीका से धूप चिकित्सा दे जाते हैं प्राकृतिक जैसे कि GHT बोलते है ना ओमे क्या करते अलग अलग कलर में हमन बैठाथन धूप में अलग अलग कलर के भी रोल रहते हमारे शरीर में है ना पीला कलर पेट पर बढ़िया अलग अलग पूरा सात कलर के अलग अलग रोल रही थे और ठंडा पट्टी रख के धूप में बैठाना धूप में मिट्टी लगा के बैठाना
1: अच्छा।
0: तो अलग अलग रोल रही थे
1: ये तो
0: और एक और चीज है मैं डाइट चिकित्सा हमन डाइट थेरेपी भी देथन
1: अच्छा
0: हाँ ध्यान चिकित्सा करवाथन योगा करवाथन अलग अलग थेरेपी देथन एक्यूपंक्चर देथन निडिल चिकित्सा देथन प्राकृतिक में
1: निडिल चिकित्सा का होता है
0: निडिल बहुत ही पतला निडिल देथन एक्यूपंक्चर बोलते टाइनी निडिल्स होते
1: अच्छा।
0: ओला शरीर में जब हम लगाथन तो अलग अलग पॉइंट होते है ना वो अच्छा। पॉइंट है ट्रिगर करते तो बीमारी ला और ओला दूर करते
1: कैसन ढंग ले पहचान थो कि ये का बीमारी है
0: सबसे पहले चक्र चेक करथन अच्छा। जो शरीर में चक्र होते 7 चक्र होते अच्छा। ओला चेक करते

0: कौन सा चक्र में तो डिफॉल्ट है करके,
1: अच्छा
0: तब
1: अच्छा
0: पहली ओला हमन बैलेंस करथन, चक्र बैलेंसिंग के बाद हमन शरीर ला सफाई करथन। सबसे मेन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी को होथे शरीर ला सफाई करना। एक
1: कैसा
0: उदाहरण
1: ढंग
0: देता हूँ मैं यहाँ कि अगर रूम में एक कमरा है, ओमे कचरा के डिब्बा भरा है और ऊपर से हमन है एयर फ्रेशनर ला डाले हैं या अगरबत्ती जला हन, कितना देर तक ओकर खुशबू रही नहीं रहा है, जब तक कि वो कचरलते हैं रूम से बाहर नहीं निकालबे। तो सेम चीज हमन शरीर में करथन, पहली
1: अच्छा
0: शरीर के पूरा कचरल बाहर करथन, तब जाके वो में हमन फिर आयुर्वेद में जो औषधि चिकित्सा देथन।
1: वैसे प्राकृतिक चिकित्सा कौन कौन बीमारी पर सबले ज्यादा असर करते हैं?
0: प्राकृतिक चिकित्सा वैसे तो हमन हर बीमारी ला ही करथन, हमन बीमारी के रोकथाम ला ज्यादा ध्यान देथन। अगर प्राकृतिक चिकित्सा ला जीवन में उतार ली जाए तो बीमारी होबे नहीं करे। तो अगर मैं मेन मुख्य बीमारी के बात करूं, अभी जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते वाला जीवन शैली के जो रोग रही थे, मेटाबॉलिज्म के जो रोग रही थे, जैसे कि डायबिटीज हो गए, मधुमेह, शुगर के बीमारी जो बोलते, बीपी के हो गए, ओला वैसे बीमारी हमन बोलबे नहीं करन, वो डिसऑर्डर हरे। और हार्ट के जो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा देखेल मिला थे, मोटापा बहुत ज़्यादा देखेल मिला थे, महिला मन में स्तन से संबंधित है ना, जो प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो पार्ट के बीमारी रही थे ओला देखेल
1: मासिक
0: मिलते हैं। हाँ, मासिक धर्म से जो वो बहुत ज़्यादा देखेल मिला थे, और तनाव बहुत ज़्यादा। तो ये सब ला प्राकृतिक चिकित्सा हम बहुत बेहतर ढंग से ठीक कर सकते।
1: तो एक बार हमारा हॉस्पिटल ही जाना जरूरी है कि घर में रह के भी हम कर सकते हैं?
0: अगर प्राकृतिक चिकित्सा के बात करो तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो और घर में फॉलो करो। काबर कि जैसे अब मैं क्या हूँ कि पानी के चिकित्सा तोला देना है, तो कौन सा टेम्परेचर में तोला पानी में बैठना है वो डॉक्टर है बताही कि ते हाँ एक इतना गर्म पानी में बैठ बे तो ठीक हो। जैसे बीपी के पेशेंट है, बीपी के मरीज है, वो गर्म पानी में बैठ जाए तो अगर बीपी बढ़ जाए, तो बीपी के मरीज ला हमन कहो कि नहीं ठंडा पानी में बैठ तो बीपी शांत हो जाए। ऐसा एक जैसे गर्म पैर स्नान है, हॉट फुट बात की थनोला, गुनगुना पानी में पैर ला डुबा और सर में ठंडा पट्टी रख, तो ओकर बीपी है तुरंत 15 मिनट में कम हो जाए। तो अलग अलग बीमारी में टेम्परेचर के रोल रही थे। और खान पान भी ऐसे है कि एक बार डॉक्टर से मिले लगी कि तोर बीमारी में कौन सा तोला डाइट के जरूरत है, तो डॉक्टर से एक बार मिल तहां से घर में ओला फॉलो कर ले।
1: अच्छा, और डॉक्टर योगिता जी, आप कई जगह काम करे हो है ना प्राकृतिक चिकित्सा में, तो आपला जे अनुभव हुई अपन का ही अनुभव बताना चाहूँ हमें श्रोता बहनी मल्ला।
0: अभी जितना मैं यहाँ काम कर रही हूँ, देखे हो जितना जन मोर पास जो मरीज बन आते, मैं सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ देखे हूँ, तनाव वाला रोग और जीवन शैली के जितना भी बीमारी है। तो मैं यही नोटिस करे हूँ कि इंसान है बाहरी दुनिया से परेशान नहीं है, वो खुद से परेशान है। अपन आपला ठीक करना ही अभी सबसे बड़े टास्क हरे। मैं वही बात अभी भी बोलूँ, खान पान, दिनचर्या, तनाव, ये तीन चीज़ ही मेन है जेकर वजह से लोगन मन आजकल परेशान है। और मैं ये भी देखे हूँ कि भगवान के पास बहुत कम समय बिताना, भगवान के पास मतलब अपन पास कम समय बिताना, लोगन मन है ना अपन आप से नहीं मिले कभू। अब मैं महिला मन के भी बात करूँ, महिला मन है पूरा परिवार मन के संग रही, बच्चा मन खाली टाइम में भी मोर बच्चा मन के बारे में सोची कि का करना है ये वो, अपन आपसे नहीं मिला है। तो अपन आपसे मिलना बहुत जरूरी है, कम से कम 1 घंटा अपन आपसे मिलो, अपन संग रहो, अपन सांस ला सुनो, अपन शरीर ला महसूस करो कि तोर शरीर का बोलत है। तो ये मैं अभी तक देखे हूँ कि कोई भी इंसान अपन आपसे नहीं मिला है तभी वो बीमार हो।
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी दे आप। और जावत जावत हमारे श्रोता बहनी मल्ला, आप का संदेश देना चाहते हो?
0: संदेश यही दूँ कि अपन आपसे प्यार करो, खान पान में बिल्कुल ध्यान रखो, अगर नज़दीकी डॉक्टर है एक बार सलाह ले कि का का पोषक तत्व के मोला सप्लीमेंट लेना है, आप वो दवाई जरूर खाओ, ध्यान करो, कम से कम आधा घंटा रोज बैठो अपन साथ, कोई बीमारी नहीं आए, प्रेम बने रही, पूरा दुनिया भर में प्रेम के स्थापन हो जाए। और उच्चारण जो भगवान के नाम के उच्चारण है, चाहे कोई भी जेकर वो मानते ओकर उच्चारण जरूर करो।
1: डॉक्टर योगिता जी, आप अपन कीमती समय ला निकाल के हमार स्टूडियो में आए और हमारे श्रोता बहनी मल्ला अतेक बढ़िया जानकारी देव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो भेंट वार्ता, प्राकृतिक चिकित्सा हमार जीवन पर वरदान। ये विषय में डॉक्टर योगिता टिकरिया ले हमार यानी संगीता वर्मा के गोट बात होइस। बहनी हो, प्रकृति में ही हमार स्वस्थ रहे के राज लुका है, बस हमला होकर नियम के पालन करना है और स्वस्थ रहना है। आप मल्ला जरूर ये जानकारी पसंद आई।

0: भी आपके विचार और सुझाव के हमला अगोरा रही। और जब प्रकृति की बात करत हन त हमर मन तको रिमझिम वर्षा कोती करिया करिया बादर कोती उड़े बर धर लेते।
1: मन पंछी बन उड़।

अभी सुनत रहें ये गीत चेला स्वर दे रहें छाया चंद्राकर। और बहनी हो, अब बेरा है आप मन की मनपसंद कार्यक्रम बहनी मन के चिट्ठी के। और चिट्ठी तो भाई बहुत अकना है, तो देरी नहीं करन। ये चिट्ठी आहे ग्राम तेंदुभाठा मगर रोड चीला धमतरी ले महेश्वरी निषाद देविका नूतन लक्ष्मी निषाद के। ये बहनी मन लिखे है 6 जून शनिवार के कार्यक्रम ला लेके आए रहीस आशा दीदी हा, जिन अपन गुरतुर बोली ले कार्यक्रम के शुरुआत करीन। अन्न के एक एक दाना के समुचित उपयोग करे के सलाह दीन, काबर ये हमार अन्न उत्पादन करे या किसान के सम्मान आए। सो सरितमा हमार पसंद के गीत सुने बर मिलिस और हमार पाती ला घलो शामिल करीन। सुन के मन गदगद हो गए। ये दिन के बड़ सुघर कार्यक्रम पर आशा दीदी संग घर आंगन प्रभाग ला बहुत बहुत बधाई है। और वैसने ढंग ले यही दिन के कार्यक्रम यू बहनी मल्ला निक लागे है करी भदर ले शारदा निर्मलकर लक्ष्मी सोनवानी गीतिका नूनी। बहनी हो, आप मन के अतका सुघर सुघर विस्तार ले पाती ला दे के हमरो मन हरिया गे। और कहानता आप मन की पाती ही हमार प्रेरणा आए और कार्यक्रम के सफलता के आधार आए। आप मन ला ये दिन के कार्यक्रम पसंद है इस तेखर बर सबो बहनी ला बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बधाई संदेश ला हम रेडियो के माध्यम ले आशा बहनी तक अमृत हन। ये पातिया है ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी ले। ये बहनी मन लिखे है 9 जून के कार्यक्रम ला अपन गुरतुर बोली मा लेके आए रही संध्या दीदी हा, जेन अपन गोठ मा गर्मी ले बाँचे के उपाय बतेन, पानी ज्यादा पिए के सलाह दीन। और इही दिन श्रीमती महेश्वरी वर्मा ले वार्ता सुनेन, काम काज के जगह मा सुरक्षा के बारे में बड़ विस्तार ले जानकारी दीन। और इही दिन बहनी मन के चिट्ठी में उखर विचार और सुझाव जाने पर मिलिस। कार्यक्रम के सुघर प्रस्तुति पर संध्या दीदी ला बहुत बहुत बधाई है। और इही दिन के कार्यक्रम यू बहनी मल्ला निक लागे है अमरपुर पेंड्रे रेखा देवी श्वेता सुरभि दिशा आरोही और लवी श्रीवास्तव। तब बहनी हो, हमार कार्यक्रम के सुग्रही आप मन की पाती और ईमेल की पठोर प्रतिक्रिया आए। आप मन ऐसने हमार कार्यक्रम सुनत रहो और अपन विचार सुझाव पठोवत रहो। पाती पठोए तेकर पर अंतसले आभार। आपके बधाई संदेश ला हम संध्या बहनी तक अमृत हन। और ये पातिया है रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले चित्ररेखा साहू उर्वशी राधाबाई चंदा वीणा कुमारी सेजल साहू के। और ही दिन के कार्यक्रम ला यू बहनी मन पसंद करे है गंडई टिकरी पारा ले कचरीबाई देवांगन जयश्री कुमारी हिमांशी देवांगन नेवई उतैले उर्वशी कृतिका दीपशिखा देवांगन। ये बहनी मन लिखे है 13 जून के घर आंगन के बगियाला सजा के लाने रहीन करुणा बहनी हा, जिन आज के गोठ मा रक्त

મહાદાન કે બારેમાં બતાઈન ઔ એ દિન ભેટવાર્તામાં રક્તદાતા શ્રીમતી રેવતી ચંદ્રાલે સંગીતા વર્મા કે ઘોટ બાત સુને બર મિલીસ. રેવતી બહેની બતાઈન કે રક્તદાન હમ સબલા કરના ચાહી જેખરલે કકરો જિંદગીલા બચાય જા સકત હે. રક્તદાન કરે કે કા ફાયદા હે તેનલા બડ સુઘર ઢંગલે બતાઈન કાબર વો ખુદ 26 ઘોં રક્તદાન કર ચુકે હે જેન હમર બર પ્રેરણા કી વાત આય. બડ સુઘર પ્રેરણાદાયક ઉપયોગી ઘોટ બાત બર સંગીતા વર્મા और रेवती चंद्राला बहुत बहुत बधाई और सुघर प्रस्तुति पर करुणा वर्माला गाड़ा गाड़ा बधाई दे है. सिरतोन बताए बहनी हो रक्तदान महादाना है और रक्तदान जैसन महान काम करैया मन हमार प्रेरणा स्रोत है. आपके अतका सुघर पातीला देख के हमरो मन गदगद हो गए. ये दिन के कार्यक्रम आप मनला उपयोगी और प्रेरणादायी लागी देकर भर आप सबो बहनीला अंतसले धन्यवाद. इसने आप मन अपन विचार भेजत रहो आपकी बताईला तो हम झोंक डरेन. रेवती और करुणा बहनी तक आपके संदेश जरूर पहुँच गए हो ही रेडियो के माध्यम ले. और ये पातिया है ग्राम बंगला मटिया बालोदले अंजलि अंगारे त्र्यंबिका पिहू लीना अंशुमाला अंगारे. ये बहनी मन लिखे है 16 जून के घर आंगन कार्यक्रम बड़ निक लागीस. ये दिन के सुघर प्रस्तुति गीत संगीत पर आशा बहनीला बहुत बधाई पठो है. और ही दिन कवित्री श्रीमती इंद्रानी साहूले कविता पाठ सुनेन बड़ सुघर कविता पाठ लागीस देकर बर उनला बधाई दे है. बहनियों हमर तो हमेशा ले यही कोशिश रही थे कि हमन ऐसा विषय में कार्यक्रम लावन जिन आप मल्ला पसंद आवाए. ये दिन के कार्यक्रम आप मल्ला पसंद है इस देकर बर अंतसले आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है. बहनियों अब ये कार्यक्रम ले जाए के बेरा हुआ थे. जात जात मोर यही शुभ भाव है आप मन के जिंदगी माँ सुख के बरसा हो है. हाँ सत कुदत जिंदगी के फुलवारी माँ कहे. एक संग अपन सखी संगीताला दो बिता और लेवा मोर मयाले भरे राम राम.

ये था महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत उत्तम जगदीश का था और फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में जलीश राशि का लिखा गीत, संगीत अलू अरविंद का है और फिल्म है क्या यही प्यार है।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आइए सुने इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर का, संगीत जतिन ललित का है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा दोपहर 2:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद

0: 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूड जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में

0: अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।

0: ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहले सुनिए उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत संदेश शांडिल्य का है और फिल्म है जब वी मेट।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

प्यार के साइड इफेक्ट्स। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में। गीत मयूरपुरी का था और संगीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ। संगीत सलीम सुलेमान का है, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की और फिल्म का नाम है आजा नचले।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कृष्णा की आवाज में कुमार की रचना। संगीत राजू सिंह का है और फिल्म का नाम है राज।

अक्सर फिल्म का ये गीत था केके और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत समीर का था और संगीत था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं हमसिका और अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमित शाह ने कहा है।

0: छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
0: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के

आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है, जो देश के खिलाड़ियों को सशक्त बना रही है और प्रत्येक नागरिक को खेलों को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों का जश्न मना रहा है, जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने सुबह फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 3:30 हुए हैं और इस वक्त आपके प्यारे मधुर दिल को छूने वाले, दिल में उतर जाने वाले, मन को भाने वाले गीतों के साथ पूरा होगा मनभावन का ये हसीन सफर। मनभावन के इस सफर पर आप भी हमारे साथी रहेंगे। भेजिए अपनी पसंद, अपनी फरमाइश हमें जल्दी से इस नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868868753, 9868868753 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 अंजलि है आपके साथ और ये जो पहला गीत आप तक पहुंच रहा है, आप सबके नाम जो गीत है वो हमें, उसकी फरमाइश हमें, हम तक पहुंची है प्रकाश चंद्र गोगिया साहब की, जागृति इंक्लेव कड़कड़ डूमा से। प्रकाश चंद्र जी बहुत हमारे पुराने श्रोता हैं, सुनने वाले हमारे साथी हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका, इतने लंबे समय से आप साथ हैं आकाशवाणी के। ऐसे ही आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना सुझाव, अपनी राय, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए और अपना ये प्यारा सा साथ आकाशवाणी के साथ बनाए रखिए। तो ये लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। शराबी फिल्म से है, 1964 की ये फिल्म है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, मुझे ले चलो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मन भावन का ये हसीन सा सफर यहाँ पर हम तय कर रहे हैं आपके गीतों के साथ। और ये जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, ये इसकी हमें फरमाइश पहुंचाई है मनोहर लाल गांधी ने विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और इसके साथ ही और भी हमारे साथी हैं, भगवती सिंह पहलादपुर नई दिल्ली से, साथ में दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू हैं रघुवीर नगर दिल्ली से, इनका हमें संदेश मिला है। साथ ही विजय सुरलकर और रतनमाला है महाराष्ट्र से। उत्तराखंड से हमें एक संदेश मिला है, किसी भी गाने के साथ अपनी फरमाइश, अपने गीत शामिल करने के लिए इन्होंने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। निसार सलमानी है, नौशाद सलमानी है, बेबी आलिया है, आयान आबू है उत्तराखंड धनौरी दिल्लीवाला से। तो चलिए, आवारगी फिल्म का ये गीत गुलाम अली खां साहब की आवाज़ में, चमकते चांद को।

अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची है वो है इम्तिहान फिल्म से। किशोर कुमार साहब की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे और हमारे जो दोस्त हैं सत्य प्रकाश गोयल, रेणु गोयल, रोहिणी से आपका मैसेज हमें मिला है। किशन वंजानी है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से आपका मैसेज हम तक पहुंचा है। इसी तरह हमारे और भी साथी हैं जिनके संदेश हम तक पहुंचे हैं। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी भाटिया, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और हरिद्वार से हमें संदेश बहुत ही पवित्र पावन नगरी से ये संदेश आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहा का। इसी तरह से सनावत से शेख मूसा मोहसिन है और मोहाली पंजाब से बबन माल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा ने हमें यह संदेश पहुंचाया है।

मन भावन का यह हसीन सफर आपके गीतों के साथ पूरा हो रहा है। अगले जो गीत की हम तक फरमाइश पहुंचाई है, पहले फिल्म का नाम बता देते हैं, लव स्टोरी फिल्म से ये गीत है और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब, इनका हमें मैसेज आया है। और हमारे कौन से साथी हैं चलिए देखते हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमें फरमाइश की है कि भाई किसी भी गीत के साथ आप हमारा नाम ज़रूर शामिल करें। तो ये हीरा मणि वर्मा है, पारस मणि वर्मा है, पुष्पेंद्र मणि वर्मा है, नौखेलाल वर्मा है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं, तो एक संदेश हमें आपका भी मिला है साथ में, ये है नाहर कोरा ज़िला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू हैं, जामुन देवी साहू हैं, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू हैं, इन्होंने हमें संदेश पहुंचाया। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं रहा, गीत सुन लेते हैं। इनकी पसंद का लव स्टोरी फिल्म का ये गीत है, आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और ये जो कार्यक्रम का अंतिम गीत है वक्त फिल्म से है, जिसके लिए हम तक फरमाइश पहुंचाई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के बहुत सारे सदस्य। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं ना, जो कई साथी हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हमने तो मतलब अपना नाम पहुंचाया है लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ना वक्त की कितनी हमें थोड़ी पाबंदी रहती है। अभिजीत गोहाणकर रही हैं, श्रीमती सरिता गोहाणकर हैं, प्रतिमा सिद्धांत गोहाणकर हैं, लाडला टुकटुक गोहाणकर हैं, एकांत सुमित गोहाणकर हैं और कुमारी ध्वनि गोहाणकर परी इनका नाम है। उमरखेड़ महाराष्ट्र से आपका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं उनका नाम भी ले लेते हैं वरना शिकायत रह जाएगी, वक्त हमें ज्यादा तो इजाजत नहीं दे रहा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, इनका हमें संदेश मिला है। चलिए गीत सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोप के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेत्सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदुनियाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न संबंधित टीमों के साथ चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये कार्रवाई अमरीका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते की समय सीमा के अनुरूप है। बैंकिंग, बीमा और समुद्री परिवहन सहित अन्य संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंधों से राहत दी गई है। अमेरिका में बिक्री और वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर ईरान से तेल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार CUET के अधिक कारिक पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. The President will confer 65 Padma Awards today. More from our correspondent.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए, कुछ पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सरवाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश सी घर के कोने में बंद हो गई थी। और जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
3: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था और मेरा गला बाकी बचपन से बहुत अच्छा था। तो बड़े बड़े संगीतक भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश, कभी कुछ सिखा जाते थे। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने की और स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बता,

0: लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहां अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया, तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान आप?
0: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंडर में, तो लोग मुझे कभी उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते और वो लोग मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते हैं, उनका फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत ये चाहे ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डाली और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
1: पद्मश्री सम्मान, क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, पैर ऐसा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और 6ठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे, लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे, कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: of this advertisement in the employment news. For details, refer to www.negrims.gov.in. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India is inviting applications for vacant posts in budget press or deputation or absorption basis. The openings include Technical Officer, Pre-Process in Level 7 and Data Entry Operator Grade B in Level 5 as per the 7 CPC pay matrix. Eligibility criteria, required qualifications and experience for each position are detailed in the official notification. Interested officers should submit applications in the prescribed format along with attested copies of CR dossiers, vigilance and integrity certificates, cadre clearance and a statement of penalties, if any, within 60 days from the date of publication in the employment news. Applications and queries can also be sent via email to budgetpress.dea@gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
2: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है। अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल छिंगपिंग, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित तथा CBSE नई दिल्ली से संबद्ध पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल पात्र उम्मीदवारों से TGT सामाजिक विज्ञान, सामान्य कर्मचारी नियमित, काउंसलर संविदा तथा PTI कम मैट्रन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप और वेतनमान, पात्रता मानदंड और अन्य संबंधित जानकारियां स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट का पता है sschingchip.mizoram.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। बाल मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी आयुष 3 रिक्तियां हैं, जिनमें से एक आयुर्वेद के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर को पदों की संख्या या वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का अधिकार है। आवेदन पत्र, सभी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अन्य सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नोट कीजिए एक बार फिर वेबसाइट का पता www.aimsgorakhpur.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर 20 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पद, सहायक प्रोफेसर सीधी भर्ती 27 पद, सहायक प्रोफेसर संविदात्मक 26 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या है 75। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के प्रोफार्मा के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर की वेबसाइट www.aimsbilaspur.edu.in।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है।

0: कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में हो गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों पर रहेगी हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या मना रहे हैं जिनका हम आज जन्मदिन या जयंती। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। So the good news is that monsoon is inching forward towards the western coast after stalling last week, but Delhi right now is having a beautiful weather after rains. And as we have been always saying, come what may, rains or hot sunny day or whatever, we will always be there in time with a fresh new episode of our afternoon magazine, Parikrama, every day for you. And now before we proceed with other stories, first the headlines at this hour.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह सेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ड्रीम रियलाइज्ड विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
2: Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case.
1: Lionel Messi FIFA विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची।
2: And Munish, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Kanishka Bombing Remembrance Day and International Olympic Day. So let's begin with the first topic, Kanishka Bombing Remembrance Day. Today we remember a tragedy that shocked nations, transformed aviation security, and remains one of the deadliest acts of terrorism in the aviation history, the bombing of Air India Flight 182, commonly known as the Kanishka bombing. Imagine boarding a long-haul international flight, excited to reunite with family, begin a vacation or return home. For the 329 passengers and crew aboard Air India Flight 182 on 23rd of June 1985, that journey would tragically never reach its destination.
1: One of the saddest days indeed in the history of aviation. Ye viman Boeing 747, jiska naam prachin Kushan samrat Kanishk ke naam par rakha gaya tha, Canada se Bharat aa raha tha, aur jab ye viman Atlantic mahasagar ke upar aur Ireland ke tat ke paas ud raha tha, tabhi ek badi durghatna ho gayi. विमान के आगे वाले कार्गो होल्ड में रखे एक सूटकेस के अंदर छिपा एक शक्तिशाली बम फट गया और कुछ ही पलों में विमान हवा में टूटकर बिखर गया और समुद्र में जा गिरा। इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ये नुकसान बहुत दुखद और बहुत बड़ा नुकसान था। इस विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और मारे गए लोगों में से ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, जिससे घटना कनाडा के इतिहास की भी सबसे भयानक सामूहिक हत्याओं में से एक और विमान को नष्ट करने की अब तक की सबसे बड़ी घातक घटनाओं में से एक बन गई।
2: Yes, but the tragedy did not end there. On the very same day, another bomb exploded thousands of kilometers away at Narita International Airport near Tokyo. The explosion killed two Japanese baggage handlers. Investigators later concluded that this device was intended for another Air India flight but detonated prematurely while baggage was being transferred. The two attacks were linked, forming part of a coordinated terrorist plot. Authorities eventually traced responsibility to extremists. The investigation that followed became one of the most complex and extensive criminal investigations in Canadian history, spanning

0: multiple countries and lasting for years.
1: तो कनिष्क बम धमाका आज भी अहम क्यों बना हुआ है? दरअसल इस भयानक मानवीय त्रासदी के अलावा इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा की कमियों को उजागर किया। उस समय सामान की जांच की प्रक्रियाएं आज की तुलना में बहुत ही कम सख्त थीं, लेकिन इस हमले ने बगैर जांचे परखे सामान से जुड़े खतरों को सामने लाकर रखा और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा में काफी बड़े सुधार किए गए। सुरक्षा के वो कई उपाय जिन्हें यात्री आज सामान्य मानते हैं, जैसे बेहतर सामान की जांच, यात्रियों और उनके सामान के मिलान की सख्त प्रक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी का बेहतर आदान प्रदान, इस त्रासदी के बाद के वर्षों में और मजबूत किए गए। ये बम हमला इस बात की भी याद दिलाता है कि आतंकवाद अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं आगे तक फैल जाता है और आम परिवारों को प्रभावित करता है, जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है।
0: And more than four decades later, memorials in Canada, India, Ireland and elsewhere continue to honor the victims. Families and communities gather each year to remember their loved ones which they were lost on that summer day in 1985. The story of Kanishka is not only a story of destruction, it is also a story of remembrance, resilience and the ongoing effort to make air travel safer for millions of people around the world. We remember the 329 passengers and crew members who never completed their journey. Their memory remains an enduring reminder of the importance of vigilance, security and also international cooperation. And moving on to the next topic of the day, it is International Olympic Day. We are also celebrating International Olympic Day, observed every year on 23rd of June across the globe. And today is more than just a date on the calendar. It's a celebration of fitness, friendship, excellence and the power of sport to unite humanity. On this day in 1894, the International Olympic Committee or IOC was founded at the historic Sorbonne in Paris. This landmark event led by Pierre de Coubertin revived the modern Olympic Games and laid the foundation for one of the world's greatest sporting traditions. More than half a century later, in 1948, Olympic Day was officially established to encourage people everywhere to participate in sports and physical activity. The idea was first proposed in 1947 by Czech IOC member Dr. Gross. The first Olympic Day celebrations took place on 23rd of June 1948 with national Olympic committees from nine countries taking part. And today, that celebration has grown into a global movement involving millions of people.
1: ओलंपिक डे को खास बनाने वाली चीजें इसके तीन मुख्य मूल्य हैं। उत्कृष्टता खेल के मैदान में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करना, लोगों, संस्कृतियों और देशों के बीच आपसी संबंध और मेलजोल बढ़ाना, और खुद का, दूसरों का और खेल में निष्पक्षता बनाए रखने वाले नियमों का सम्मान करना। ये मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ मेडल जीत लेना ही नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र, टीम वर्क और दृढ़ता का होना भी है।
0: Yes, Munish, in today's fast-paced digital world, many people struggle to find time for physical activity. To address this challenge, the IOC promotes the global Let's Move campaign. This initiative encourages people of all ages and abilities to dedicate time each day to movement, whether it's walking, cycling, dancing, stretching, playing a sport, or simply taking the stairs instead of the elevator. Supported by organizations such as the World Health Organization, the campaign highlights a simple message. Every movement counts and every step towards a healthier lifestyle matters.
1: यहाँ भारत में ओलंपिक डे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है दोस्तों। स्कूल, स्पोर्ट्स एकेडमी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिटनेस इवेंट, जागरूकता अभियान और खेलकूद की गतिविधियां कई संस्थाएं यहाँ आयोजित करती हैं। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की खास पहल युवाओं को खेलों से जोड़ने और एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये प्रोग्राम अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने, एक्टिव रहने और ओलंपिक की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सुनने वालों, आप आज ओलंपिक डे कैसे मना रहे हैं? क्या आप आज सवेरे की सैर पर गए? दोस्तों के साथ कोई खेल आप खेलेंगे?

0: किसी फिटनेस एक्टिविटी में शामिल होंगे या बस कुछ मिनट एक्टिव रहकर बिताएंगे। याद रखिए, ओलंपिक मूल्यों को अपनाने के लिए आपको ओलंपियन होने की जरूरत नहीं है। खुद को बेहतर बनाने, दूसरों का साथ देने और एक्टिव रहने की हर कोशिश जश्न मनाने लायक जीत है।
1: And on this International Olympic Day now, let's embrace the spirit of excellence, friendship and respect. Let's move, stay healthy and inspire those around us to do the same. Move more, dream bigger and keep the Olympic spirit alive. Happy International Olympic Day to all of you.
0: और दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास आज खास।
1: एंड लेट्स बिगिन विद टेकिंग यू ऑल टू तिरुवनंतपुरम। International Olympic Day was celebrated with great enthusiasm in Thiruvananthapuram today as hundreds participated in the Cycling by the Sea rally. The event brought together people from diverse backgrounds in a shared message of fitness and healthy living. We have more on this from our correspondent from Thiruvananthapuram.
2: The Olympic spirit found an unique expression on the shores of Thiruvananthapuram this morning as hundreds of people took part in the Cycling by the Sea rally organized by the Sports Authority of India to mark International Olympic Day. The coastal ride brought together members of women empowerment groups, government employees, cycling club members and fitness enthusiasts from different walks of life. United by the message of fitness and healthy living, participants pedal along the scenic route with great enthusiasm. Adding to the excitement was the presence of Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia. The minister joined the cyclists on the ride, drawing cheers from participants and giving a major boost to the event. Let's hear some of the participants.
3: This is Satyabhama and I have come to participate in the Cycling by the Sea, the cycling event organized by Fit India as well as Sports Authority of India. And cycling gives a lot of health benefits, physical as well as mental health benefit. It induces happy hormones in the body. So I'm happy and I'm participating in this event as a member of Cyclotrivians Cycling Club.
4: I am Ullas. I'm only a recreational cyclist. Today we are gathered here for Cycling by the Sea with our Minister for Sports, Government of India. It's really happy to join here with this event.
2: Cycling by the Sea turned out to be not just a ride, but a celebration of health, unity and sporting spirit of Kerala's coastline. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस द्वीप समूह में पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अपने दौरे के दौरान प्रगति पदयात्रा के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, गांधी पार्क तथा अन्य प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और अंडमान आइडिया समिट 2026 में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था भारत की प्रगति की प्रमुख चालक है तथा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मंत्री ने ग्रेट निकोबार परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि यह परियोजना द्वीप समूह के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किए बिना क्षेत्र के आर्थिक और रणनीतिक विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना समुद्री संपर्क, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। कुल मिलाकर यह दौरा अंडमान निकोबार में विकास, संपर्क और जन कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: And the Goa government has strengthened its commitment to the housing welfare for scheduled tribe communities by enhancing benefits under the Atal Asra Yojana.

0: Yojana. The scheme, which provides financial assistance for house construction, reconstruction and repairs, is expected to help more families secure safe and dignified housing. We have more on this from our correspondent.
1: In a major boost to housing welfare, the Goa government has increased financial assistance under the Atal Asra Yojana for eligible scheduled tribe families. Under the revised provisions, assistance for house repair has been doubled from 1.5 lakh to 3 lakh. Financial support for house reconstruction has also been increased from 3 lakh to 5 lakh, providing greater relief to families in need of safe and secure housing. The enhanced assistance is expected to benefit families living in aging, damaged or inadequate homes, enabling them to undertake repairs or rebuild their houses with reduced financial burden. The government has also expanded the scheme's reach by increasing the annual income eligibility limit, allowing more scheduled tribe families to qualify for assistance. Officials say the initiative is aimed at improving housing conditions, promoting social welfare and ensuring dignified living standards for tribal communities across Goa. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन के संस्कृति विभाग द्वारा कल आयोजित फ्यूजन फेस्ट 2026 के तहत विश्व संगीत दिवस 2026 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में संगीत, नृत्य और दृश्य कला के माध्यम से दिव्यांग कलाकारों और बच्चों की असाधारण प्रतिभा, उनकी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया गया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और क्या हुआ वहां, सुनते हैं संवाददाता से।
3: कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों और कलाकारों द्वारा उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दी गईं। इसमें मुख्य आकर्षण VR1 की प्रस्तुति रही, जो भारत का पहला पेशेवर व्हीलचेयर डांस समूह है। व्हीलचेयर पर बैठे इन नौजवानों ने मां तुझे सलाम गीत प्रस्तुति पेश करके सबका

0: इस समूह ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से आत्मविश्वास, समावेशिता और संघर्षशीलता का प्रेरक संदेश दिया। वहीं वाटिका स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के विद्यार्थियों ने ऊर्जावान भंगड़ा प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी द्वारा दिव्यांग बच्चों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने युवा कलाकारों को अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री गुलाबचंद कटारिया ने दिव्यांग कलाकारों के लिए 5,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। इस प्रकार की यह पहली पहल है जिसका उद्देश्य उनकी कलात्मक उपलब्धियों तथा समाज में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: तो अनुजा, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और अपने श्रोताओं को बताते हैं वहां की हलचल। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन की टीम को 2-1 से मात दी। लियोनेल युवा मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया।
2: And if we come to the business news today, benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2%, mirroring losses across global markets. The Sensex plunged 893 points to close at 76,201, while the Nifty shed 279 points to settle at 23,824. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped over 1%, while the small-cap 100 index lost 0.5%. Concerns over weak monsoon and its potential impact on economic growth further weighed on investor sentiment. And for more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए दोस्तों, अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को।

0: और फिर बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था।
2: वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वायसराय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया।
0: दोस्तों, आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की। हिंदी सिने जगत में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे प्रतिभावान व्यक्ति हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सरोजनी नायडू के छोटे भाई, जिन्हें हिंदी फिल्मों के कई मशहूर गानों के लिए याद किया जाता है, कई गाने उन्होंने लिखे इसलिए और कुछ उन पर फिल्माए गए इसलिए। तो ऐसा ही एक गाना था फिल्म आशीर्वाद में, जिससे हम शुरुआत करते हैं, आपको याद आए। दरअसल मंच पर वो इसे कई बार गाते थे, लेकिन फिल्म में गाया था इसे अशोक कुमार ने, लेकिन लिखा था हरीन्द्रनाथ ने।
3: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुप

और दोस्तों फिल्म बावर्ची में उन्होंने एक पुराने विचारों वाले, एक दकियानूसी लगने वाले, जबकि ऐसा था नहीं, एक ऐसे पात्र की भूमिका अदा की जो सबसे वरिष्ठ हैं घर में, और उन पर ये गाना फिल्माया गया था जिसे गा रहे थे पर्दे पर असरानी। आपको याद आएगा फिल्म बावर्ची से।

0: और दोस्तों फिल्म जूली का ये गाना जो अपने समय में बहुत मशहूर रहा और आज भी गुनगुनाते हैं, और इसकी अनोखी बात यह है कि हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल हुए बहुत कम ऐसे गीतों में से जो लिखे अंग्रेजी में गए थे, और इसे लिखने वाले हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे। तो उन्हें आज हम अपने हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनका लिखा हुआ ये मशहूर गीत।
1: माय

0: What a beautiful song, which was picturized on Rehman, but it was sung on the screen by Gurudath. We also have selected a dialogue in Rehman's voice.
1: मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोग नहीं।
2: मैं दूसरी बहू जैसी नहीं हूँ जी, गरीब घर की लड़की हूँ। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी?
2: मेरा गाना पसंद आएगा तो?
1: वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? गा सकोगी मेरे सामने?
0: This was a dialogue between Rehman and Meena Kumari from the famous film Sahib Bibi aur Gulam. And we have chosen another song from you, on from the movie Choti Behen, in which Rehman has

0: And today is also the birth anniversary of an Indian professional footballer who played as a striker for the India national football team. He also captained the national team and later on became the coach of the Indian national team. He also captained the Indian national team, as I said, and he represented India in 50 official matches and scored 15 official goals for the country. He was one of the first recipients of Arjuna Award when the awards were instituted in 1961. He was awarded the prestigious Padma Shri in 1990 and was named the Indian Footballer of the 20th century. In 2004, he was awarded the FIFA Order of Merit, the highest honor awarded by FIFA.
1: और दोस्तों आज ही है जन्मदिन फिल्म अभिनेता राज बब्बर का, जिनका जन्म 23 जून 1952 को हुआ था उत्तर प्रदेश के टूंडला में, जो आगरा के नज़दीक है. और राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के आप छात्र रहे. नई दिल्ली में ट्रेनिंग के बाद मुंबई चले गए और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपनी फिल्म करियर की उन्होंने शुरुआत की. बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक किस्म के रोल से उन्हें काफ़ी चर्चा मिली और इसके बाद बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का जैसे वो एक अहम हिस्सा ही बन गए थे. और दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ फिल्म निकाह उनकी काफ़ी मशहूर हुई. स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज़ में नज़र आए और बहुत सी पंजाबी फिल्में भी की. बाद में राजनीति में भी वो गए और अभी भी सक्रिय हैं और गाए बगाए हमें फिल्मों में नज़र आते हैं, तो उन्हें हम जन्मदिन की देते हैं हार्दिक शुभकामनाएँ.
0: And today we also remember Nirmala Joshi, the sister, in fact, Sister Nirmala Joshi. It was in 1976 that Sister Nirmala Joshi started the contemplative branch of the Missionaries of Charity and remained at its head until 1997, when she was elected to succeed Mother Teresa as Superior General of the Institute. Her term as Superior General ended on 25th of March 2009, and she was succeeded by a German-born sister after that. She was an Indian religious sister who succeeded Nobel laureate Mother Teresa, and the award she was bestowed on was the Padma Vibhushan, and also for her services to the nation.
1: दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए हमें यानी मुनीश शर्मा और अनुजा को परिक्रमा यहीं समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन जरूर कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in. दीजिए आज्ञा.
2: मीडियम व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड

102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ಹಾಥಿ ಬನೆ ಗಜರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गाँव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 134 है। ये कूड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल

0: ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें अपन गोट में चर्चा का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। साथ ही सुनिएगा सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया का समय होगा 6:30 पर। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा सतत आय बर पपीता खेती और भू अधिकार पत्रों का डिजिटलीकरण विषय पर आज की बात में चर्चा। किसानवाड़ी में 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का विषय होगा त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन। विशेषज्ञ होंगे श्री राजन कुजूर, मत्स्य निरीक्षक विकास खंड आरंग जिला रायपुर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे मणिराम साहू और साथी। आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में 9:30 पर सुनिएगा कमार गीत, कलाकार होंगे सुनाराम साहू और साथी। साथी सुनिएगा सरगुजिया गीत, कलाकार होंगे इंद्रमणि दास और साथी। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा शंभू प्रसाद पवार का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा कल रात 8:30 पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। आपके पत्र, ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। गांधी चर्चा, महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ सुनिएगा कल सुबह 9:00। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे जमील अहमद। इसी कार्यक्रम में कल दिन के 12:30 पर कलाकार होंगे साबरी ब्रदर्स और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे सीताराम सिंह। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: जेकर माटी ले पसीना ह भुइयां म मोती जैसे गिरथे,
1: जेकर मेहनत के छाव म पूरा संसार सुख ले खिल उठथे,
0: अपन दुख ल भीतर म लुका के जीवन समाज ल सवारथे,
1: कोनो रद्दा ल सवारथे त कोनो सरहद म जागथे,
0: कोनो दफ्तर म कलम घिसके हमर अधिकार ल मांगथे।
1: निस्वार्थ भाव के ओ मूरत ल आज करबो हमन प्रणाम।
0: धन्य है ओमन देश के आथे काम, संझा के सुग्घर बेरा म सूरज देवता घलो ह भुइयां के अचरा म लुकात विदा लेवत है। गाय गरु बछरू मन ह अपन अपन घंटी बजावत, कोठार डर मुड़त है और घर घर म संजोती के दिया बाती के तैयारी चलत है। और रेडियो के तीर में जुड़ा जम्मू रेडियो संगवारी मल्ला, आप मन के मेहरू संगवारी त्रिलोचन
1: और वर्षा गोस्वामी के
0: राम राम, राम, राम जय जोहार। बड़ दिन बाद मिलत हन वर्षा, कैसे हस संगवारी?
1: हाँ संगवारी, मैं तो बने हो, ते बता कैसे हस?
0: महू बने हो संगवारी। अच्छा वर्षा, कब सोचे हस?
1: का बात ला?
0: जब हमन पूरा शहर नींद के आगोश में सोई रहे थे ना, जब हमर गली में तब हमर गली में एक ठन सरसराहट के आवाज काकर हाथ ले निकल थे। जब ऐसन कड़कती घाम में हमन एसी कुरिया में बैठे रहते ना, तब रद्दा के ट्रैफिक ला संभलिया जवान के माथा के पसीना काकर बरछू थे।
1: औ त्रिलोचन, आधी रात में बीमारी के रोना मस्थे, तब अपन नींद ला त्याग के देवदूत बन के ओ डॉक्टर और नर्स काखर बरा थे। उहू मन हा मनखे है संगवारी, जे मन अपन सुख चैन ला भुला के हमर जिंदगी ला आसान बना थे। और आज यही गुमनान नायक मन के दिन है संगवारी हो।
0: सिर तो उनके ईश्वर सा, आज 23 जून है, यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र हा ए बछर के थीम घलो रखे है, सार्वजनिक संस्थानों को बदलना, नवाचार, भागीदारी और समावेशन की ओर आगे बढ़ना। आज हमन हा युवाणी के सबो युवाणी ले सबो कर्मवीर मल्ला अंतस ले छुए के कोशिश करबो वर्षा।
1: हाँ त्रिलोचन, लोक सेवा सिर्फ एक नौकरी बस नो है, ये तो एक तपस्या है। तेखरे से ती संयुक्त राष्ट्र संघ साल 2002 में ये दिन के शुरुआत करेगी, ताकि जम्मो दुनिया ला पता चल सके कि समाज ला चलाए में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी के कतका बड़े हाथ होते।
0: एक बात आओ वर्षा, इखर मन के असाल हमन कभू पैसा ले चुका सकथन का?
1: नहीं, कभू नहीं।
0: फिर आज के बेरा मा का होते, जब हमन सरकारी दफ्तर जाथन तनिक देर ले हमन टिटरा जाथन।
1: हाँ।
0: हमन ये बुला जाथन कि हुमन हमर जैसन मन के है संगवारी।
1: सिरतोन संगवारी, फिर चाहे वो हा हमर गांव के कोटवार हो, पटवारी बाबू हो, डॉक्टर पुलिस जवान या फिर सफाई कर्मचारी हो, ये मन अगर दिन में काम नहीं करी ना तो हमर पूरा दुनिया रुक जाही।
0: वर्षा मुला एक बात घलो सूझत हबे।
1: काय बात है संगवारी?
0: हमर छत्तीसगढ़ घलो एक बड़ मिसाल है वर्षा। हमर राज्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 घलो लागू है, जेकर ले आम जनता मन समय में एकदम आसानी ले सरकारी सेवा मिल जाते। ए मन हा घलो लोक सेवा ला मजबूत करे के एक तरीका है वर्षा।
1: तोर बात है कभू गलत हो सकते का संगवारी? वैसे भी त्रिलोचन, हमन तो छत्तीसगढ़िया हरन, तभे तो कही थे
0: छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
1: हमारे यहाँ घलो कर्मचारी मन दिन रात मेहनत करते, तोला याद घलो हो ही त्रिलोचन, कोरोना संकट मा हमार स्वास्थ्य कर्मी पुलिस मन अपन जान के फिकर बिना ड्यूटी करत रहिन।
0: ओ दिन ला कैसे बुला सकते वर्षा, जब पूरा दिन हा पूरा दुनिया हा बंद हो गिरीस ना, चलाइया ही लोक सेवा मन तो रिस है संगवारी। ऐसो ऐसे हमारो फर्ज बनते संगवारी।
1: का फर्ज त्रिलोचन?
0: जब हमन कोनो सरकारी दफ्तर में जाथन ना, या रद्दा में कोनो सफाई कर्मचारी ला दिखथन, ता एक ठन मुस्कान देन, धन्यवाद कहन और जय जोहार करन संगवारी।
1: पोट बात कहत संगवारी, ओमन भलो इंसान हवे, ओखरे मन के इज्जत होए ऐसे मन सोचते, सम्मान पाए के ओखरो मन ले ओखर मन के उत्साह बढ़ जाते, आखिर ओमन घलो हमारे परिवार के हिस्सा है भाई।
0: हमारे लोक सेवक मन तो साक्षात सेवा धर्मो साक्षात परमो धर्म सेवा परमो धर्म के

जाता है संगवारी। वैसे भी संगवारी जिन्हा अपन दुख पीड़ा ला भुला के समाज ला हसत है, ओ कर्मवीर मन के मेहनत ले हमर दुख के दिन आते। भगवान हा ऊपर बैठे संगवारी हो, भुइया मा यही मन फर्ज निभाते।

0: संगवारी हो, अभी सुनत रहो आप मन माटी के सुघ्घर अकन गीत, जिला अपन सुरमा पिरोई रहने संगीता मानिकपुरी कोयल और बिसाऊ राम हा।
1: आओ सुने बा चेहरीन हमन ये संगवारी मन हा। मचेवा महासमुंद ले जवाहरलाल सिन्हा, दीक्षा भूमि गेमन, नारायणलाल जगौती सिन्हा मन हा। खल्लारी भीम खोज ले जीएल साहू, सरोज छोटी पिंकी साहू मन हा। दहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम रेवाराम, रानू सरस्वती प्यारी, राम साहू परमानंद साहू मन हा। बागबहरा भद्रसी ले पन्नालाल खुशबू, तारा कौशल सेन मन हा। दतरेंगी भाटापारा ले दुवारिक प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा मन हा। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्दले गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत मन हा। अमलीडीह कंवरधा ले संतोष राजपूत, हेमप्रभा पूर्वी, गौरव राजपूत मन हा। चांदनी चौक ले चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन मन हा। डबरी ले श्यामलाल साहू, मोंगरा संगीता केसरी चिंकी साहू मन हा।
0: वर्षा ये दारी कैसे पानी वानी नहीं।

0: क्या थे वे?
1: हाँ त्रिलोचन, ऐसे लगत है जैसे वर्षा अपन रद्दा ला भुला गए है।
0: संगवारी हो, वर्षा भले अपन रद्दा भुला गए, लेकिन आज ज्ञान के वर्षा हो ही संगवारी हो।
1: हाँ त्रिलोचन, काबर की आज है क्रम सवाल जवाब, जेमा होते ज्ञान के भंडार, ता आव संगवारी हो शुरू करथन क्रम
0: सवाल जवाब। संगवारी हो, आप मन ला सवाल जवाब में जो क्रम रही से 235 ओकर हमन सवाल और जवाब बता देथन संगवारी हो। किसी वर्षा बता दिन। चल मैं हाँ सवाल पढ़ा थू वो ते हाँ कर उत्तर ला बता जबे।
1: ठीक है
0: चल। पहली यह सवाल ही संगवारी हो, आराम बाग जौनहा आगरा में स्थित है, एकर निर्माण कर्ता के का नाम है बताओ।
1: और एकर जवाब हवा है मुगल सम्राट बाबर।
0: दूसरी यह सवाल ही संगवारी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब करे गे रिहेन।
1: और एकर सही जवाब हवा 1 मई 2016। संगवारी हो, ये योजना के शुरुआत ये उद्देश्य ले करे गे रहीन कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करैया परिवार के महिला मनला निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करे जाए।
0: संगवारी हो, तीसरिया सवाल रही से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलैया सबले छोटे देश कौन आए।
1: और एकर सही जवाब हवा है कुरासाओ।
0: भारत, चौथैया सवाल संगवारी हो, भारत के पहली टेक्निकलर फिल्म के का नाम है।
1: और एकर सही जवाब हवा है झांसी की रानी।
0: पचवैया सवाल संगवारी हो, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनैया पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन आए।
1: और एकर सही जवाब हवा है कुनेरू हम्पी।
0: संगवारी हो, छठवैया सवाल छत्तीसगढ़ी जनौला रही से भी जनौला ऐसा है, एक चले चीता के चाल मा, दूसर घोड़ा होए, तीसर चले हाथी के चाल मा, तब होले सामना होए।
1: और एकर सही जवाब हवा है घड़ी।
0: संगवारी हो, ये तो रही सम्मान के सवाल जवाब क्रम 235 के। अब आप मन अगोरा करत हो कि हम मन के नाम ला बताई भाई कतका कतका जवाब दियन, तो वर्षा बतान।
1: तो संगवारी हो, सबले पहले मैं बताऊँ 6 सही जवाब देने वाला संगवारी मन के नाम ला। तो 6 सही जवाब देने वाला हमारे संगवारी मन हवा है टिकरापारा रायपुर ले लता देवी चौहान, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव मनहा, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल, संतोषी दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल मनहा, पिपरिया ले दुर्गाराम साहू, अजय अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्रानी मायाराम साहू मनहा, धरसीवा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना रानी, खुशी, प्रवीण साहू, इकबाल कुरैसी मनहा, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू, कान्हा यादव मनहा, पलारी ले नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर मनहा, रिंगनी ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा मनहा, ग्राम बगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे मनहा, जवाहरनगर दुर्ग ले RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े मनहा, ग्राम पुरैना शहीद नगर छुई खदान ले धर्मेंद्र जंघेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जंघेल, साहू का लोधी मनहा, ग्राम खमारी पारा बिंद्रा नवागढ़ गरियाबन ले ओमकार नाथ मरकाम श्यामबाई किशन जगत मुकेश ध्रुव मनहा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश परमिला बंछोर मनहा, और हिंछा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, माना शांति वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव मनहा, और यहू संगवारी मन हमन हवे मनोज साहू, चित्ररेखा साहू, देवेंद्र साहू, लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू मनहा, बन बघेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा मनहा, पथरिया भरवा ले चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल मनहा।
0: संगवारी हो, यही क्रम में 6 सवाल के सही जवाब दे या संगवारी मन है, खमरिया ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, ग्राम कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुट चंद्राकर, पूर्णेंद्र चंद्राकर, साहिल चंद्राकर मनहा, परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया, खुमेंद्र मसिया, खैरागढ़ राजपुर लालपुर ले मोतीलाल भिमटे, सुशीला भिमटे, मेघा नेहा येसु भिमटे मनहा, डोंगागढ़ ले राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये मनहा, पहंदा पलारी ले नितेश कुमार, ईशान देवांगन, सावित्री बाई देवांगन।

0: अनुजाबाई देवांगन मना लुकाऊ पाली छतवन पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिय निहारिका सिय पंकज सिय सूर्यवंशी रूपाली बसना हीरा लाल जगत देवेश ब्रिजेश जगत एकता लावण्य कश्यप मना बूढ़ा देव पारा लुकाऊ पाली छतन नीतू जीतू रिया जया राहुल योरासी सूर्यवंशी मना बेला सिवारले जीवनलाल सिन्हा निर्मला बाई सिन्हा देवेंद्र कुमार सिन्हा सुधा सिन्हा अम्बा सिन्हा मना ग्राम पहारा अहिवारा पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति औ छाया बंछोर आमाखेड़ा रेंगा खाले देवी सिंह नेताम गजेंद्र सिंह नेताम दक्षिण प्रिया गीत सरगम महामाया नेताम मना बागबहारा भद्रसी ले घनाराम सेन गीतेश सेन दीपेश सेन निर्मला सेन मना बागबारा भद्रासी ले पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा सेन कौशल सेन मना हसदा नंबर दो कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि आकांक्षा पावित पार्वती टिकीस टिकेश्वरी नागेश्वरी तुलसाराम साहू सुंदर पारा रुवासी ले डगेश्वर साहू नूतन गौरव साहू घनश्याम साहू दत्रेंगी ले द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा मना गांव तेंदुभाटा मगरलोड जिला धनतरी ले उमेन कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद मना भवरपुर बसना ले चंपा देवांगन राधेशान देवांगन राजू जगदीश देवांगन मना ग्राम भनपुरी मुसरा ले रोशन कुमार वर्मा शरद कुलेश मुकेश राजू विकास वंशिका देविका रुपेश मानवी वर्मा मना नगर पंचायत पलारी ले प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी वर्मा मन यवतमान विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खड़से औ विनोद खड़से मना पीपर पारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर योगिता दिवाकर नितिन दिवाकर वंशिका दिवाकर मना
1: औ हमारे यहू संगवारी मन छह सवाल के सही जवाब दे हवे गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन कचरी बाई देवांगन दीपक कुमार जयश्री देवांगन ऋषभ रिचा देवांगन मनहा लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल मनहा बाग बहरा भद्रसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मनहा देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश राम हा ग्राम सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी मनहा ग्राम फूलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू यामनी मुस्कान हर्षिता साहू मनहा पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता ससांग सीमा साहू मनहा भाटापारा बचकामल ले मोतीलाल यादव वसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा अब्दुल मजिद कुरैसी रेहाना बेगम नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सारधा मयंक वर्मा मनहा खमार मुढ़ा से सतीश गिरी गोस्वामी श्रेयांश गिरी गोस्वामी सिवाय एकांशी गोस्वामी मनहा भीमखोज तरपोंगी रे संतोष गुप्ता हिमेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल गुप्ता मनहा आरीनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष औ नंदनी जंघेल मनहा ग्राम भड़गा ले श्याम सिंह मरावी राजकुमार रानी रजनी राहुल पूजा मरावी मनहा ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम दुर्वे जामुनबाई दुर्वे फिरतराम मालती दुर्वे मनहा बाजारवाड़ महासमुंद ले भीष्मदास मानिकपुरी नर्मदा हिरमनी दीपक लक्ष्यदास मानिकपुरी मनहा बागबहरा भद्रसी ले पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा कौशल सेन मनहा साल्हेभाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशु खेमू ध्रुव मनहा रानीगांव ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा साहू शुभम सेजल साहू मनहा कुर्मा जांजगीर चापा ले दिलदार मिरी ज्योति जानवी दीक्षांत मिरी मनहा सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा ले गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मनहा अमलीडीह कवर्धा ले संतोष राजपूत हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत मनहा अडार नांदघाट ले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा मनहा दतरंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा हिरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा मनहा गांव कुमरधा जिला राजनगांव ले ताराचंद साहू ओम साहू माही साहू धर्मेंद्र साहू मनहा
0: यही रिकिम में छह सवाल के सही जवाब पटोरी संगवारी मन में ग्राम कुठेना पांडुका गरियाबंद ले जम्मू टीकम भूषण धुरवा कुसुम वासु मोक्ष गेंदी जीतू पुष्पा भोला लेखू गोपाल मनहा बाजार वार्ड।

0: समूहले भीष्मदास मानिकपुरी नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष दास दतरेंगीले विश्राम यदु प्रतिमा यदु रीना यदु लक्ष्मणा यदु मना बड़े अलनार बस्तरले बस्तरले लम्हो नेगी वैशाली नेगी कुमारी जम्बती नेगी बादल नेगी खलारी भीम खोजले जीएल साहू सरोज साहू छोटी पिंकी सोमनी जिला राजनांदगांवले नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू रुद्रांश प्रताप साहू मन्हा चिरमरी कुर्सिया कालीले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालेंद्री लहरे मन्हा ग्राम गेंदी टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांवले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता योगिता गुप्ता गजेंद्र गुप्ता बोड़सरा नैलाले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी और विभूति साहू मन्हा कोरासी भैसा रायपुरले छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू पंकज साहू सुस्मिता साहू दीपिका साहू मन्हा ग्राम बाघामुड़ा कोमाखानले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी देवांगन प्रकाश देवांगन गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन्हा लोरमी ग्राम चचेड़ीले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी मन्हा
1: औ ए संगवाली मन्हा मर मन के पास सही जवाब दे है औ संगवाली मन के नाम है सिगारबाड़ी घुटकुले भगतराम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल मन्हा खुटगांव खुर्सीपार गरियाबंदले टिकेश्वर ध्रुव औ कान्हा दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था अनुराग अभिषेक प्राची प्रियल डुग्गू कान्हा यादव मन्हा और इंदिरा चौक तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा मन्हा और हमारे संगवारी मन्हा चार सही जवाब दे हवे और संगवारी मन्हा चरोदा बार नवापारा ले नंद कुमार ठाकुर अर्मिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर मन्हा रोहांसी पलारी ले श्याम साहू युवराज साहू मन्हा लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मन्हा श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप खंडेलवाल नीता खंडेलवाल मन्हा औ ग्रामपुरैना ले खैरागढ़ ले पूजा जंघेल बेबी धारनी रेखा मास्टर ध्रुव जंघेल मन्हा त्रिलोचन संगवारी मन के तो नाम हो गए पूरा
0: हाँ।
1: ता संगवारी मन लब बता देथन कि पेन कापिल निकाल के रखा है खबर की एक हर बाद अभी एक सुघर माटी गीत ल सुनबो फिर संगवारी मन ला सवाल जवाब के
0: सवाल जवाब ला बताबू
1: हाँ
0: तो संगवारी हो सुनथन माटी के सुघर अखन गीत

0: संगवारी हो आप मन सुनत रहो अभी माटी के सुघर अकन गीत ला जिला अपन सुरमा पिरोरी से बुद्धिसागर शर्मा रजनी रजक मन
1: आओ सुने बर चेहरीन हमारे ये संगवारी मन गेंदा टोला राजनांदगांव ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन बन बघेरा राजनांदगांव ले योगेश आशा नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सारवा मन पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीना विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे मन डूमर टोला मगचुआ जिला बालोद ले भगवानी राम कार्टे गोपिका भावेश कुमार माधुरी कार्टे मन लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत परमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन बोटसरा नैला ले प्रमोद बीमा वैभवी और विभूति साहू मन संगवारी हो एक सूचना हवा हेलो मितान के रिकॉर्डिंग हा कल बुधवार यानी 24 जून को 11 से 11:30 के बीच करे जाही संगवा आप मन ये बात ला ध्यान रखू संगवारी हो कि हेलो मितान की रिकॉर्डिंग ला 11 से 11:30 के बीच काली बुधवार 24 जून को हो ही
0: वर्षा संगवारी मन पेन कापी धरे होई और अगुरा करत होई मन के सवाल मन के
1: हाँ।
0: तो चल भाई बता देथन संगवारी मन ला
1: हाँ।
0: संगवारी हो नोट करो हमन उनके आज के सवाल ला
1: तो संगवारी हो क्रम सवाल जवाब 236 अंक के सवाल पहला सवाल हवे है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 52वां जी शिखर सम्मेलन कौन शहर में आयोजित करेगी से
0: संगवारी हूँ मैं एक बार और दोहरा देता हूँ क्वेश्चन ला प्रश्न ला कि G7 शिखर सम्मेलन कौन शहर में आयोजित करेगी री से
1: और हमारा दूसरा सवाल हवे है भारत के

0: नवा थलसेना प्रमुख कौन ला नियुक्त करे गए हे?
1: संगवारी हो, दूसरिया सवाल ए, भारत के नवा थलसेना प्रमुख कौन ला नियुक्त करे गए हे?
0: और हमार तीसरा सवाल हवा है, टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसल पीपल मा भारत के कौन खिलाड़ी ला शामिल करे गए हे?
1: संगवारी हो, तीसरिया सवाल ए, टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसल पीपल मा भारत के कौन खिलाड़ी ला शामिल करे गए हे?
0: और हमार चौथा सवाल हवा है, बछर 2026 मा कौन क्रम के विश्व योग दिवस मनाए गई से?
1: संगवारी हो, हमार चौथैया सवाल है, बछर 2026 में कौन क्रम के विश्व योग दिवस मनाए गई से?
0: और हमार पांचवा सवाल हवा है, राजीव लोचन मंदिर मा मिलैया प्रसाद ला का कही थे?
1: संगवारी हो, पचवैया सवाल है, राजीव लोचन मंदिर मा मिलैया प्रसाद ला का कही थे?
0: और हमार छठवा सवाल हवा है, रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन, हाना के का अर्थ होते?
1: संगवारी हो, आज के आखिरी छठवैया सवाल है, रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन, हाना के का अर्थ होते?
0: त्रिलोचन, एक बार सबो सवाल ला एक संगवारी मन ला फिर बता देथन, अगर कोनो संगवारी मन ले छूट गए होही तो मन हा लिख ली ही।
1: तो मैं बता देता वर्षा।
0: हाँ
1: संगवारी हो, पहलिया सवाल हमर है, 92वां G7 शिखर सम्मेलन कौन शहर में आयोजित करेगी से? संगवारी हो, दूसरिया सवाल है, भारत के नवा थल सेना प्रमुख कौन ला नियुक्त करेगी है? संगवारी हो, तीसरिया सवाल है, टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसल पीपल में भारत के कौन खिलाड़ी ला शामिल करेगी है? संगवारी हो, चौथैया सवाल है, बछर 2026 में कौन क्रम के विश्व योग दिवस मनाएगी से? संगवारी हो, पचवैया सवाल है, राजीव लोचन मंदिर मा मिलैया प्रसाद ला का कहते? संगवारी हो, आखिरी सवाल है छठवैया, रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन, हाना के का अर्थ होते?
0: त्रिलोचन, तो संगवारी मन हा अब सवाल लत लिख डले होही, तो एकर जवाब ला भेजे बर हमर पतल बताए पड़ही।
1: हाँ भाई, बताल पड़ी संगवारी मन ला।
0: तो संगवारी मन ला हमर पतल बता देथन, तो हमर पता हवा है, क्रम सवाल जवाब अंक 236, युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़। और हमर पिन कोड हवा है 492001। और ईमेल के माध्यम ले हमर जिन संगवारी मन हा हमला जवाब दी, तो हमर ईमेल पता लिख ले वो संगवारी हो,
1: airyouth9@gmail.com। संगवारी हो, सब्जेक्ट कोड डाले बर झन बुलाओ, सब्जेक्ट कोड है Y13।
0: तो संगवारी हो, आप मन के जवाब के अगोरा रही, तो आज बर क्रम सवाल जवाब के क्रम
1: यहीं तक।

0: संगवारी हो आपन सुनत रहो अभी माटी के सुघर अकन गीत ला जिला अपन सुर म पिरोय रहीन हे फिरित पटेल मन ह।
1: औ सुने बा चहरीन हमर ये संगवारी मन ह, जवाहर नगर दुरुक ले आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े मन ह, नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा मयंक वर्मा मन ह, ददरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा मन ह, बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमला, आशुतोष अंगारे मन ह, कुमरदा ले ताराचंद ओम माही धर्मेंद्र साहू मन ह, महीदही साजा ले हेमा देव विशु विभु साहू मन ह, देवरबीजा बेड़ला ले दिनेश श्रीजन रूपेश राजपूत मन ह, सलोनी ले सलोनी राजनांदगांव ले पुरानिक राम साहू, सीताबाई साहू, प्रियांशु गौरव साहू मन ह, जालबांधा ले पारकदास साहू, किरण साहू, रेशमा सोनू गुनीता साहू मन ह, कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरजभान साहू, कमलाबाई साहू मन ह, सलोनी घुमका ले देवचरण हेमा वेदांत वैभव साहू मन ह, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत परमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन ह, पोटियाकला दुर्ग ले संजय सुजाता ससांग सीमा साहू मन ह, सहमालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी मन ह, रानाटोला मोहला मानपुर ले रमेश कुमार पटेल, दुष्यंत कुमार यशोदा देवी पटेल मन ह, भाटापारा के बचकामल ले मोतीलाल यादव, प्रसन्न भृगु, विनय ठाकुर, चौवाराम वर्मा मन ह।
0: संगवारी हो, हमन के एक ठन जरूरी सूचना रही से तेल में फिर दोहरात हो कि हमारे जो कार्यक्रम है

0: हेलो मितान ओकर रिकॉर्डिंग है बुधवार 24 जून के करे जही 11 और 11:30 के बीच में आप मन के फोन के अगोरा ही संगवारी हो वर्षा का बात संगवारी ते कहूँ घूमेल के रेस का
1: हाँ संगवारी मैं हाँ अब्बड़ घूमे हूँ रतनपुर के महामाया दाई डोंगरगढ़ के बमलाई दाई दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी दाई के घलो दर्शन करे हैं वहाँ
0: का बात है वर्षा एक के जन पूर्ण कमात हस्ते तो
1: ऐसा नहीं है संगवारी मैं तो सबो संगवारी मन खुश रहे मस्त रहे करके पूजा पाठ करे हूँ
0: अंतर से गदगद कर दे संगवारी
1: ता तोर अंतर सा गदगद हो गए है ता चल तोला उ संगवारी मनला एक गीत के माध्यम ले घलो दर्शन करवाथो ता सुनथा ने सुघर अकन माटी के गीत ला

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहो माटी के सुग्घर अखन गीत ल, जिन ला अपन सुर में पिरोई रही ने गंगादास मानिकपुरिया।
1: आओ सुने बा चहरीन हमारी संगवारी मन, चरौदा पलारी ले गैन सिंह प्रेमीन राखी जायसवाल मन, टिकरापाला रायपुर ले लता देवी चौहान हा, संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता अर्पिता अनुराग बलदाव राजेश्वरी आस्था अभिषेक अभिनव यादव मन, धरसीवा ले छेदूलाल सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव इकबाल कुरैसी रानू खुशी प्रवीण कुमार साहू मन, अडा नाथघाट ले माखन चांदनी गुराहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा मन, कोरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू मन, और भंगी टोला ले ननका राम जामुनबाई फिरतराल राम मालती दुर्वे मन।
0: वर्षा
1: हाँ
0: देख भाई बेरा बताते अब जाए बेरा हो गया उनकी।
1: हाँ
0: तो जाए पहली संगवारी मला बता देता भाई काली कार्यक्रम ला।
1: हाँ
0: तो संगवारी हो काली अपन सुनू युवाणी हिंदी मा क्रम पत्र मिला और सुनू युगल गीत। तो सुनते रहो युवाणी, मस्त रहो, खुश रहो और दियो हमला विदा। आपन की जो संगवारी है ना मतलब मित्र लोचन
1: और वर्षा गोस्वामी ला देवा विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में मीडियम वेव और एफएम बैंड पर, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल

आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

तो कभी हेडफोन पर लगाकर आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 होने को हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: रायपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद के बैठक में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन में काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन ये दौरान ओमन 2 पद्म विभूषण 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म अलंकरण दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी ताती घलो शामिल है जौन मल्ला पद्मश्री ले सम्मानित करेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में केंद्र सरकार है बछर 2026 बर 5 पद्म विभूषण समेत 131 पद्म अलंकरण के घोषणा करे रही।

0: मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के पगरेतीमां आज मंत्रालय में राखे गए राज्य मंत्री परिषद के बैठका में कतकुन फैसला ले गईस। बैठका के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साव बतैने कि मंत्री परिषद हा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवार के सदस्य मल्ला हर एक वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दे जाही। एकर तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविका मूलक परिसंपत्ति के विकास और ग्रामीण क्षेत्र मन में रोजगार के मौका दे जाही। ये योजना के तहत चालू वित्तीय बछर बजट में 4,000 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। उन्हें मंत्री परिषद हा अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के घलो फैसला ले है। ये योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा बुनाई सिलाई हस्तशिल्प केंद्र के संगे संग दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाई राइस मिल डेयरी के संग सेवा केंद्र के स्थापना करे जाही। एकर तहत कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि सामान मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र घलो ग्रामीण क्षेत्र मन में स्थापित करे जाही। ये योजना के उद्देश्य स्थानीय उत्पादन प्रसंस्करण सेवा और विपणन गतिविधि ला बढ़ावा देना है। एखर ले गांव वाले मन ला अपन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नवा मौका मिलही। उन्हें एक आने फैसला में मंत्री परिषद हा छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये नीति के माध्यम ले राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट और आने जैविक संसाधन के वैज्ञानिक प्रबंधन करके ओमला कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में बदले जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ करी। ये मौका में श्री शाह किसान मन के सीधा भागीदारी मनला मजबूत करे बर खरीदी काम में बिचौलिया मन की भूमिका ला समाप्त करे के आह्वान करी। नेफेड के प्रगति के जिक्र कर श्री शाह कहने कि 12 बछर पहली गंभीर वित्तीय कठिनाई के सामना करत ये संगठन है आज 74 लाख किसान मन के सेवा करैया एक मजबूत संस्थान बन के उभरे है। ये मौका में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान घलो मौजूद रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम में पड़ैया प्रभाव और कृषि ऊपर एखर असर के समीक्षा पर एक ठीन बैठका करी। बैठका के बाद श्री चौहान है मीडिया ले गोट बात करत बताइने कि अलनीनो के सेती देश भर में कमजोर मानसून के स्थिति बने हैं, जिखर सेती करीबन 315 जिला ऐसा है जिहां वर्षा कमती होए के संभावना है। श्री चौहान है कहने कि अलनीनो के संभावित स्थिति ला देखत सरकार है किसान मन के हित की रक्षा और खेती में पड़ैया प्रतिकूल प्रभाव ला कमती करे बर प्रतिबद्ध हवे। ये बैठका में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुईन। ओमन कहीने कि सूखा के स्थिति ले निपटे बर राज्य सरकार ह कमती बेरा वाले फसल दलहन तिलहन ऊपर जोर दे के संगे संग बीज सुरक्षा और फसल बीमा ला प्राथमिकता देवत व्यापक रणनीति बनाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बांचे समाचार कोती। प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मनमा काली 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत अन्य अन्य विषय में गोट बात करी जाही। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण ले मिले सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची ला पढ़े जाही। संगे संग पात्र हितग्राही मन के प्राथमिकता सूची तैयार करे जाही और ग्रामीण मन ले मिले दावा आपत्ति के निराकरण करे जाही। ग्राम सभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में घलो गांव वाले मन ला जानकारी दे जाही। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज पुण्यतिथि हरे। ये मौका में उपराष्ट्रपति CP

0: राधाकृष्णन अउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह ओमन ल श्रद्धांजलि अर्पित करिन। प्रधानमंत्री ह सोशल मीडिया पोस्ट म कहिने कि डॉक्टर मुखर्जी ह अपन जिंदगी ल देश के विकास बर समर्पित कर दिन। एति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ह आज लोकभवन म डॉक्टर मुखर्जी के फोटो म फूलमाला चढ़ा के श्रद्धांजलि दिन। ये मौका में राज्यपाल डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दे गए योगदान ल सुरता करत कहिने कि ओमन राष्ट्रीय एकता व अखंडता ल मजबूत करे बर अपन जिंदगी ल समर्पित कर दिन। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो में फूलमाला चढ़ाइन। ओमन कहिने कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन के अमूल्य धरोहर आए। महासमुंद जिला के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरा मिले ले छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नवा संभावना बने हैं। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड डहर ले 200 टन खनिज सामान के परीक्षण के बाद 5 हीरा मिले हैं, जेखर वजन 1.22 कैरेट के हवय। एमा 2 जेम क्वालिटी के हीरा शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला प्रदेश बर महत्वपूर्ण बतावत कहिने कि एखर ले निवेश रोजगार और आर्थिक विकास के नवा मौका बाढ़ी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन बर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया 20 जून ले शुरू हो गए है। आदिवासी विकास विभाग के मुताबिक छात्रवृत्ति बर ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम ले जाही। उन्हें नवा आवेदन 1 अगस्त ले मंजूर करे जाही। विभाग स्पष्ट करे है कि छात्रवृत्ति के राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS के माध्यम ले सीधा विद्यार्थी मन के आधार ले लिंक बैंक खाता में जमा करे जाही। अब आप पेश मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून हा काली दस्तक दे के बाद आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताई ने कि 22 जून के मानसून हा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला के रद्दा ले प्रदेश में आगे है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। अवैया 2-3 दिन में मानसून के आगू बाढ़े की संभावना है। अब थोड़की समाचार सार मा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल डहर ले संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के प्रतिभावान लयिका मन ले 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए है। मत्स्य विभाग डहर ले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत 25 जून के रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। अंबिकापुर ले हजरत निजामुद्दीन के बीच चलैया एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ता में 2 दिन चलही। कर्मचारी चयन मंडल डहर ले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद में भर्ती बर 28 जून के पहली चरण के परीक्षा आयोजित करे जाही। और मुंगेली जिला में लालपुर थाना क्षेत्र के बैगा कांपा गांव के तीर हुए सड़क हादसा में 1 लड़का की मौत हो गई, उन्हें 2 झीन लड़का मन घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन इमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 वाले ज्यादा ग्राम पंचायत मन मा काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहल्यां नागरिकसम्मानसमारोहस्य द्वितीयचरणे पद्मपुरस्कारान् प्रायच्छत्। गृहमंत्री अमित शाह अकथयत यत अनुच्छेद 70+300 इत्यस्य निरसनेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य स्वप्नाः साकारीभूताः। सर्वोच्च न्यायालयेन 93+29 वर्षस्य बौ बाजार विस्फोटस्य दोषिणः रशीद खान इत्यस्य समयपूर्व मुक्ति विषये दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् होर्मुज जलसन्धेः उद्घाटनेन आसंसारम् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यतीति। लियोनेल मेस्सी इत्ययं फीफा विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं गोल इति लक्ष्यप्रापकः अभवत् येन अर्जेण्टीना

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं स्टेला सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम को सुनने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने के लिए। पिछले दिनों में काफ़ी श्रोताओं से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कई रोचक प्रश्न और सुझाव हमें दिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने विचार हम तक पहुंचाएंगे। और हमारा फोन नंबर आप नोट कीजिए,
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।

0: वो फूलों से प्यारी लगती थी, उसकी मुस्कुराहट जैसे अनमोल मोती की सी थी। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ एक प्यारी सी बच्ची, जिसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करूंगी। उसका नाम है रुचि। माँ बाप की लाडली, हंसती हुई, चहकती हुई 7 साल की रुचि बहुत ही होशियार, पढ़ाई में अव्वल आने वाली लड़की थी। ना कभी स्कूल में शिकायत मिलती थी, ना यारों दोस्तों में लड़ाई होती थी। ऐसी ही थी वो, खुद ही नहीं पर अपनी अनपढ़ माँ को भी पढ़ा देती थी। पापा की तो ऐसी लाडली थी कि पूछो ही मत। उसके पापा ज़्यादातर शहरों में जाकर अपना काम करते थे और घर में कम ही रहते थे, पर जब भी आते थे तो रुचि अपना पूरा समय अपने पापा के साथ बिताती थी। रुचि कुछ ऐसी बच्चियों में से थी जो कहीं भी जाकर अपनी अनोखी जगह बना लेती थी। वह होने से औरों का दिल जीत लेती थी। ना सिर्फ रुचि के माँ बापू और स्कूल के अध्यापक ही नहीं, परंतु पूरा मोहल्ला खुश रहता था। सब उसे पसंद करते थे। घर के पास की एक शीला चाची तो उसे रोज शाम अपने घर पर पकवान खिलाने के लिए बुलाती थी, और उस मोहल्ले की बूढ़ी दादी रुचि का हालचाल पूछने के लिए रोज रुचि को अपने पास बुलाती थी और उसको अपनी पोती की तरह मानती थी। सच में रुचि की चमक अपने आप सबको रोशन कर देती थी। एक दिन रुचि के पास वाले घर में नए पड़ोसी आए। उस नए परिवार में प्रकाश, नीतू व उनका कुत्ता था। उस कुत्ते को देखकर रुचि भागी भागी उससे मिलने जाती है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है रुचि की प्यारी मुस्कान। वाह, कितना प्यारा कुत्ता है अंकल, क्या नाम है इसका?
1: बेटा, इसका नाम शेरू है।
0: ये कितना अच्छा है, भोकता भी नहीं है।
1: हाँ बेटा, ये औरों पर भोकता है। आप तो इसकी पड़ोसी हो, आप पर नहीं भोकेगा।
0: माँ, जल्दी बाहर आओ ना माँ, नए पड़ोसी आए हैं और एक प्यारा सा कुत्ता भी है। अरे नहीं, कुत्ता नहीं, शेरू है।
2: नमस्ते नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है।
3: जी नमस्ते, हाँ थोड़ी चुलबुली है।
0: आंटी, क्या मैं शेरू के साथ खेल सकती हूँ? खेलने आ जाऊँ कभी भी?
2: हाँ बिल्कुल बेटा, कभी भी।
3: रुचि, तुम जाना पर अभी बहुत शाम हो गई है, अंदर आ जाओ। अंकल आंटी भी थके होंगे, उनको भी आराम करने दो।
0: जी माँ, मैं कल तुमसे खेलने आऊंगी शेरू, ठीक है? माँ, आज तो पापा आने वाले हैं ना?
3: हाँ बेटा।
2: बहन जी, मुझे रुचि ने बताया कि आज भाई साहब भी आने वाले हैं, तो आज आप सबका खाना हमारे यहाँ।
3: अरे क्यों परेशान हो रहे हैं आप?
2: इसमें परेशानी कैसी, नए घर का खाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
3: जी हम जरूर आएंगे।
0: माँ देखो पापा आ गए। पापा, क्या लाए हैं आप मेरे लिए?
4: अरे बहुत कुछ मेरी परी, रुक तो सही।
0: पापा ये सब बाद में, जल्दी से पहले तैयार हो जाओ, हमें शेरू के यहाँ जाना है।
4: शेरू? कौन शेरू बेटा?
3: अरे वो पास में नए पड़ोसी आए हैं, काफी मिलनसार हैं। उन्होंने आज अपने नए घर में आने की खुशी में हमें खाने पर बुलाया है। वो उनके कुत्ते का नाम है जो रुचि के साथ खूब खेलता है, और अब तो रुचि अपने दोस्तों के साथ कम और शेरू के साथ ज्यादा खेलती है।
4: फिर तो चलना पड़ेगा शेरू से मिलने।
2: आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सब आए।
3: आना तो था ही, आपने जो इतने प्यार से बुलाया था। ये रुचि के पापा हैं।
1: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भाई साहब।
4: मुझे भी।
2: आज सच में बहुत अच्छा लगा आप लोग आए।
3: सच्ची, हंसी मजाक में इतना समय निकल गया पता ही नहीं चला।
1: रुचि बेटा, तुमने मीठे में तो कुछ लिया ही नहीं।
0: अंकल आज आपने इतना खिला दिया है, मीठे की तो जगह ही नहीं बची। राकेश व नीतू और रुचि के परिवार के संबंध काफी अच्छे होने लगे थे।

0: राकेश व नीतू के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह रुचि को अपनी बेटी की तरह रखने लगे थे। कभी कभी राकेश रुचि को स्कूल भी लेने व छोड़ने जाने लगा था। रुचि बहुत खुश थी क्योंकि राकेश उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करता था।
1: भाभी जी, भैया, रुचि को स्कूल से ले आए क्या आप लोग?
2: अरे भाभी, मैं बताना ही भूल गई। वो तो कब की आ गई, पर थक रही थी तो यही खाना खिला के सुला दिया।
1: कोई नहीं भाभी, उठे तो भेज देना।
0: माँ, आज तो बहुत ही मजा आया। आते समय राकेश अंकल ने बर्फ का गोला और गुड़िया के बाल भी खिलाए। मैंने उनको कहा कि कल भी वो मुझे लेने आए।
1: बेटा, कल तो हमें कहीं जाना है, कल मैं तुम्हारी स्कूल की छुट्टी कराऊंगी।
0: पर माँ, कल तो मेरा टेस्ट है, स्कूल में छुट्टी नहीं ले पाऊंगी।
1: अरे पर मेरा भी जाना जरूरी है, कैसे क्या करें?
0: माँ आप जाओ, मैं नीतू आंटी के घर रुक जाऊंगी।
1: नीतू बहन जी, मुझे कल बहुत जरूरी काम से जाना है और रुचि का इम्तिहान है, तो उसे भी स्कूल से नहीं रोक सकती, तो कृपया आप इसे कल स्कूल से आने के बाद देख लेना थोड़ा।
2: आप बेफिक्र रहना, मैं देख लूंगी।
0: अंकल, अंकल मैं यहाँ हूँ।
3: आज क्या खाना है बेटा तुमको?
0: वही आइसक्रीम अंकल।
3: अच्छा चलो खा लो, फिर हमें जल्दी घर चलना होगा क्योंकि नीतू आंटी को भी सब्जी लेने जाना है।
0: हाँ अंकल, फिर हम घर चल के खेलेंगे क्योंकि कल की छुट्टी है।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अरे आंटी तो चली गई, हमें आने में देर हो गई।
3: चलो अब हम आंख मिचोली खेलते हैं।
0: हाँ आप मुझे पकड़ना और शेरू तुम आवाज मत करना, वरना अंकल मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे।
3: अरे तुम तो बहुत अच्छे से खेलती हो रुचि, तुम्हें तो कोई भी नहीं हरा सकता। चलो एक और नया खेल खेलते हैं।
0: वो कौन सा है अंकल?
3: तुम मेरे साथ आओ तो।
0: राकेश रुचि को बहलाकर अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसके अंगों को गलत तरह से छूता है, उसके साथ बाल शोषण करता है। ये अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ गंदा लग रहा है मुझे।
3: तुम ये सब किसी से ना कहना वरना तुम हार जाओगी।
0: थोड़े समय बाद जब रुचि अपनी माँ से मिलती है तो वो बहुत डरी हुई सी दिखाई पड़ती है। उसकी माँ को यह देखकर बहुत अजीब लगता है और वो अपनी माँ को देखकर उससे लिपट जाती है और खूब रोती है, पर कुछ कह नहीं पाती। उसकी माँ सोचती है कि रुचि को उसकी याद आ रही होगी, इसलिए रुचि उदास होगी। कुछ दिन बाद
1: जी, टीचर जी आपने मुझे बुलाया।
2: जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रुचि को कुछ हुआ है? आपने किसी बात पर उसे डांटा? वो कहीं दिनों से बहुत उदास और सुस्त दिखाई दे रही है।
1: जी नहीं, बल्कि वो घर में भी ऐसी ही है। मुझे तो लगा स्कूल में आपने उसे डांटा हो शायद इस वजह से।
2: बिल्कुल नहीं, पर हाँ जरूर कुछ बात है, मैं देखती हूँ।
1: टीचर जी कृपया आप पता करें उसे क्या हुआ है।
2: बच्चों आज हम एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे, आप सबके लिए यह नई बात है पर आपके जीवन भर के लिए यह बात बहुत काम आएगी। आपको पता है आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है?
1: मम्मी।
0: हाँ हाँ पापा भी।
2: हाँ बिल्कुल, तो जब भी कोई बात आपके साथ हो आप अपने मम्मी और पापा को जरूर बताएं। और हाँ साथ ही आपको प्यार करने, आपको डांटने और साथ ही आपको छूने का हक भी सिर्फ आपके मम्मी पापा का ही है और किसी को भी नहीं। यदि कोई आपको छूता है तो वो गलत है, उसे आप अपने मम्मी पापा को जरूर बताएं और वो ना सुने तो अपनी टीचर जी को।
0: यह कहकर टीचर जी कक्षा से चली जाती है। यह बात सुनकर रुचि को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो जाकर सब अपनी टीचर जी को बताती है। उसी वक्त टीचर जी रुचि की मम्मी को स्कूल बुलाती है और सब

बता देती है। ये सब सुन के रुचि की मम्मी खूब रोती और पछतावा करती है कि उन्होंने रुचि को क्यों किसी और के भरोसे छोड़ा। यह सब बातें होने पर रुचि के पापा भी आ जाते हैं। वह राकेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाते हैं। साथ ही टीचर जी और रुचि की माँ उसे नई हिम्मत दिलाने की पूरी कोशिश करती हैं, ताकि वे वापस से खुश और एक नई रोशनी में लौट जाएं। ये भले ही एक छोटी सी बच्ची की कहानी हो, पर एक बहुत बड़ी सीख है। आज रुचि जैसी बहुत सारी बच्चियाँ बाल शोषण का शिकार हो रही हैं। कई घरों में, मोहल्लों में, पड़ोस में, स्कूलों में और कहीं और भी उन्हें ऐसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। उनमें कुछ अपनी आवाज उठा लेती हैं और कुछ डर के कारण चुप हो जाती हैं। सबसे अधिक छोटी बच्चियां, यानी 10 साल से कम उम्र की बच्चियां बाल शोषण का सामना करती हैं, क्योंकि वो आसानी से लोगों की बातों में आ जाती हैं और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का जिक्र नहीं कर पाती। इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। यह जिम्मेदारी हमारी है कि आसानी से हम औरों पर भरोसा ना करें, साथ ही अपने बच्चों को अच्छे व बुरे तरह से छूने का मतलब बताएं। घर पर या घर से बाहर हुए हर गैर व्यक्ति से मिलने पर जो भी गुजरा हो उसका जिक्र आपस में वो जरूर करें। हर बच्चे को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो बताएं। जहां कहीं भी वो जाए, यदि कोई उनसे बुरी तरह से व्यवहार करे या बुरी तरह उनको छुए तो वह चिल्लाए, भागे। आप आसपास जो भी हो उसे सूचित करें, वह आपसे कुछ भी ना छुपाएं। बहुत जरूरी है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को डट के लड़ना सिखाना है। राकेश भी पकड़ा गया, पर क्या वो प्यारी सी मुस्कान आसानी से रुचि के पास लौट जाएगी? जरूरी है हम सतर्क रहें, अपने बच्चों को लेकर किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको सही मार्ग दिखलाएगी और किसी पर आपका विश्वास बनाना व नहीं बनाना बताएगी। रुचि जैसी बेटियों की मुस्कान होने ना दें, सतर्क रहें, आपके परिवार में भी और आपके परिवार के बाहर भी।

0: श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक सीख जरूर मिली होगी। आप कार्यक्रम से जुड़े सवाल और विचार हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र और फोन के माध्यम से। हमारा पता और फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर आप नोट कीजिए,
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल

0: शिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत जीरामजी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
6: डॉक्टर बुधरी ताती, समाज सेवा।
5: दंतेवाड़ा जिले के हीरानार ग्राम की निवासी बुधरी ताती को महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। उन्होंने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 उच्च प्राथमिकता वाले जिले शामिल हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत सीमित है। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों और SMS, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया जैसे अन्य परामर्श माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
7: विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए

0: गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60-40 का रहेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
1: वहीं मंत्रिपरिषद ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, बुनाई सिलाई, हस्तशिल्प केंद्र के साथ ही दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाइयां, राइस मिल, डेयरी तथा सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र, विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरी ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रूपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया विकासखंड स्तर पर 30 जून को, जिला स्तर पर 2 जुलाई को, राज्य स्तर पर 3 जुलाई को, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तथा आरक्षित वर्ग के लिए 4 जुलाई को और आरक्षित दिवस 6 जुलाई को होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। वहीं नए आवेदन 1 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून कल दस्तक देने के बाद

0: आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है।
1: 22 जून को मानसून ऑनसेट किया है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा तक। आज की स्थिति में देखा है तो मानसून जो है मध्य छत्तीसगढ़ तक प्रवेश किया है और आगामी 2-3 दिन में और भी आगे बढ़ने की संभावना है और वज्रपात वाला स्थिति जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों में 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 22 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सक्ती जिले के छुहीपाली गांव के पास एक मालवाहक वाहन के पलट जाने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2रे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री परिषद ने विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए लावारिश फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम है दामिनी।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम लक्ष्मीकांत।
1: राम राम पूजा दीदी। संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगी मल्ला हमार दोनों के
0: राम राम, राम। लक्ष्मीकांत।
1: हाँ दीदी।
0: देख अभी खरीफ फसल के बोए के तैयारी शुरू हो गए है ना, और भाई कोनो कोनो में तो पानी घलो बने गिरत है अब। हाँ। पानी गिरना चालू हो गए है भाई, किसान भाई मन के बूता बाढ़ गए है, व्यस्त हो गए किसान भाई मन।
1: दीदी सीतोन कहा था फिर हमार विशेषज्ञ मन खरीफ माँ धान के संग संग दिगर फसल घलोक लगाए बर बोलते है, जैसे केला है, पपीता है, जिमी कांदा है ना, हल्दी, अदरक, ऐसने कतकोन फसल बर हमला
0: विशेषज्ञ मन बोलते हैं। हाँ, काबर की भाई अभी फसल जो चक्र है तेला चलाना बहुत जरूरी है, काबर की सिर्फ धान धान बोए से हमर जो माटी की गुणवत्ता है वो थोड़ा कम हो जाता है। यही में पपीता के खेती ला हमर विशेषज्ञ मन बड़ लाभ की खेती बताए है। और ये पपीता के खेती के जो है वो प्रमुख रूप ले ये खेती है गर्म और आर्द्र जलवायु के हरे। पपीता के रोपाई के 8 से 10 महीना के बाद ही ये जो है फसल देना शुरू कर देते, माने फल देना शुरू कर देते। और एकर अगर उन्नत तरीका हमारे किसान भाई मन अपनाए तब प्रति एकड़ 4 से 5 लाख तक मुनाफा कमा सकते है।
1: सिर्फ तुम कहा था सो देख पपीता खेती के गोट करा था ना, तब 15 से 40 जोन डिग्री सेल्सियस के तापमान है ना सबले अच्छा होते, इसे हमारे विशेषज्ञ उन हमला बताते हैं। और ज्यादा पाला जब पड़ते तो फसल बर नुकसान के होते घलो बताते हैं है ना, तब माटी के गोट करा था तो अच्छा जल निकासी वाला दोमट या बलुई दोमट है ना, ऐसे माटी एकर बर सुघर होते। एकर किस्म के चुनाव हम बाजार के मांग के हिसाब ले है ना, जोन भी हमारे कति मांग के है या हमर सलाह देते हैं हमारे विशेषज्ञ उनकर हिसाब ले हम चुन सकते हैं।
0: माने स्वादिष्ट भी रहा है और बहुत जल्दी जैसे कोई कोई रिकीम होते कोई जो किस्म होते वो जल्दी पक के जल्दी खराब हो जाते सड़ जाते, तो वो ऐसा ला चुनाव नहीं करके बाजार में जो आसानी ले उपलब्ध हो जाए या बाजार के जो मांग है तो वह है पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा उच्च गुणवत्ता वाला किस्म है ये मन और इसने सूर्या वर्का प्रभा यहू हम मीठा और अच्छा मोटाई वाला और गुणवत्ता वाला फल बरी जाने जाते।
1: और देख ये जब बोआ थन है ना खेत ला गहरी जोताई करके है ना धूप में छोड़ देवन, प्रति एकड़ लगभग हमला 4-5 ट्राली सड़े हुए गोबर के खाद है जो वर्मी कंपोस्ट है ये ला हमला मिला ले के हमला सलाह मिलते। पौधा के जैसे पौधा के दूरी गोट कर थन तो 6 से 6 फीट या 8 से 8 फीट जोन भी हमारे बर सुगर होते हमारे कर जमीन के जोन भूया के जो उपलब्धता है नी ओकर हिसाब ले रख सकथन। अब सबले बढ़िया देख सिंचाई के गोट करत हन तब ड्रिप सिंचाई है एला हमार जन पपीता खेती बर है तो एला बड़ सुघर माने जाते का है ओकर जड़े जड़ में पानी दे देहन और हमार पौधा के बढ़वार बर एती ओती पानी है फैल के बर्बाद नहीं हो के हमला सीधा जड़ में मिलते।
0: भाई ड्रिप इरीगेशन में क्या होते ड्रिप सिंचाई में क्या होते कि उही में दवाई या खातू ला भी डालत बन जाते तो वो एती ओती जा करके नुकसान नहीं हुए
1: सहूलियत के है और हमार जन मजदूर के जन लागत है वो हमला बच जाते
0: लक्ष्मीकांत में 6 से 7 दिन तक की सिंचाई करत रहना चाहिए ऐसे विशेषज्ञ मन कही थे। और हर पौधा में बेरा बेरा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एकर उचित मात्रा देवत रहना चाहिए। अब भाई अगर ये फसल है फल देवत है तो इमा दीमक या कुछ रोग राय हुआ थे तो ओकर बर भी उचित फफूंदी नाशक या उचित जो दवाई पानी है तेकर भी प्रयोग करत रहना चाहिए। और विटामिन ए के एला स्रोत अच्छा स्रोत माने जाते पपीता ला तो एला हम ज्यादा ज्यादा विटामिन ए और विटामिन ई बर एला ज्यादा ज्यादा उपयोग करन और अपन स्वास्थ्य ला सही रखन। आओ अभी सुनले थन ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: किसानी के हम गोट करत रहे ना, बड़ सुघर सुघर हमला सलाह मिलत रहते हमारे विशेषज्ञ मन ले। अब देख किसान मन खेती करथन त हमर ते भुइयां है त खेती करथन, अब भुइयां के जोन रिकॉर्ड है वही ला हम दुरुस्त नहीं रख पाबो, संभाल के नहीं रख पाबो, तो कभू न कभू हमला विवाद के सामना करेल पड़ते।
1: बिल्कुल
0: है ना। त अभी का है देख 12 साल हो गए लगभग, अब सरकार हमला डिजिटलीकरण जोन हवा वाला उत्साहित कर रहे है ना। तो जन जमो जिनिस हवे जो हमारे जमीन के पेपर ऊपर हवे, हमारे जो जाति ला लेके प्रमाण पत्र हो चाहे हमारे आमदनी लेके हो, जमो काम बर थोड़ थोड़ डिजिटलीकरण ला बढ़ावा दे जाते है ना। आज तो हम भुइया गोट करबो, उपज भूमि के जो नक्शा है ना, ये रिकॉर्ड है, एरा देखे बर हम भूमि अभिलेख के जो डिजिटलीकरण हवे ये हर बड़ जरूरी होते। तो एक बार राज्य के हमारे भू अभिलेख पोर्टल है जैसे भुइया छत्तीसगढ़ है ना सी जी कथे वाला, ओमा जाके हम एला देख सकथन जी। और दूसर जैसे भूमि के विवरण है हमारे खसरा है, बीवन है, पीटू है, कौन जोत के भुइया है ना, सरकार हर ओकर हिसाब ले हमला कुछ हमार हानि होते तब मुआवजा भी देते। तो वो सब ला हम जाने बार या वाला देख के प्रिंट ले सकथन है ना, खसरा नंबर, भूमि के स्वामी कौन है, मालिक कौन है ना। कई बार का होते कि हम रजिस्ट्री करा ले नामांतरण नहीं कराए, तब वो जमीन हर हमार नामनिया है, हम अपन मान के चलते ना, भविष्य में हमार विवाद हो सकते। तो ये सब ला देखत बड़ सुघर हमला एक बार हमला उत्साहित करे जाते है ना। तो जेकर नहीं है ते करवा ले वहीं, और अभी जेन रजिस्ट्री होते ते मन मत अपने आप हुआ थे।
1: और ये डिजिटलीकरण हो ले सरकार बहुत आसान कर दे ही ये सब चीज ला खोजना या ये सब चीज ला अपन पास सकेल के रखना। कवर के अगर ये नहीं हो रही है तो भाई बहुत भटकल पड़े, बहुत एती उती जायल पड़े। तो एकर ले थोड़ा आसान बन गए, थोड़ा नहीं बहुत आसान बन गए है कि हमार भू अभिलेख या भू अधिकार पुस्तिका एक प्रतिलिपि हम डाउनलोड कर सकते हैं, निर्धारित शुल्क में पटा करके हम एक भुगतान करके हम एक माने पूरा प्रिंट आउट
0: ले सकथन। और अपन भूमि के जोन खसरा खतौनी है वो अधिकार से गोठिया था हमन ना, तो ये सब तो सुघर है। अभी आओ एक सुघर व्यवस्था हमारे लागू हो है कि नामांतरण के जोन प्रक्रिया है, रजिस्ट्री कराथन तो 12 घंटा के भीतर जिन हावे मन के खरीदे तेकर नाम अपने आप हो जाते। और कुछ दस्तावेज के कमी है तब ही नहीं हुआ है, ऐसे हमला पता चला थे तो हमें कर ध्यान रखन।
1: बिल्कुल
0: है ना। और एक समय में जो भी कमी है तेला पूरा करके करवा ही लेवन, नामांतरण खसरा खतौनी भू अधिकार पुस्तिका गोट करथन, तो ये सब बड़ आसान हो गए अब हमारे डिजिटलीकरण ले है ना। तो आगू गोट करबो, हमारे प्रायोजक के बेरा हो गए, हमारे प्रायोजक हमें कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: लक्ष्मीकांत।
1: हाँ दीदी।
0: अब आज आए मंगलवार, तो आज होते हमर क्रम फोन इनके। आज के हेलो किसान वाणी में हमर आज के विषय है त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन। और एमा विशेषज्ञ रही ने श्री राजन खुजूर, मत्स्य निरीक्षक विकासखंड आरंग और एकर मन के जिला रीस रायपुर, और संचालन करते लक्ष्मीकांत और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे जी। तो सुनथन ये हेलो किसान वाणी।

किसान संगवारी हो, किसानवाड़ी क्रम हेलो किसानवाड़ी मा बेरा बेरा मा हम आपमन खातिर सुघर विषय के समाधान लेके आथन और हमर विशेषज्ञ मन आपमन ला आपमन के जोन शंका रथे ओकर समाधान बताते। तो ए मंगलवार हमर विषय हवे त्रिस्तरीय मछली पालन खातिर किस्म के चयन और आपमन के जोन शंका समाधान है, आपमन के जोन प्रश्न के जवाब है, एला देहे खातिर हम

0: बीच विशेषज्ञ जुड़े हैं श्री राजन कुजूर जी। आप मन मत्स्य निरीक्षक हैं विकासखंड आरंग जिला रायपुर ले। तो साहब आप मन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन
1: जी। नमस्ते।
0: हेलो किसानवाड़ी।
2: हेलो किसानवाड़ी सर।
0: हाँ राम राम भैया, कौन बोला था?
2: मैं ललित साहू ग्राम बावनला जिला बेमेतरा से बोला था सर।
0: जी जी ललित साहू जी, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन।
2: सर मोर प्रश्न त्रिस्तरीय मत्स्य पालन में तालाब के तीन अलग अलग स्तर पे पालन कैसे करबो, एक बारे में जानकारी चाहिए सर।
0: जी आप मन के प्रश्न बड़ सुघर है और हमारे विशेषज्ञ हमारे तीर उपलब्ध हैं, आप मन ला बतावत हैं।
1: जी त्रिस्तरीय का मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। तो ये तीन स्तर का बोलने का तात्पर्य ये होता है कि आप जितने भी शासकीय भूमि है जो जल क्षेत्र से बटा हुआ है उसको आप 10 साल पट्टे पे लेकर के मछली पालन कर सकते हैं। जैसा इसको विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन ने मछुआ नीति, छत्तीसगढ़ मछुआ नीति 2022 के तहत 10 हेक्टर के नीचे, 0 से 10 हेक्टर के नीचे का जो तालाब है उसको छत्तीसगढ़ शासन ग्रामीण तालाब मानती है और ये केवल शासकीय भूमि पे ही लागू होता है। और जहाँ जल क्षेत्र 10 हेक्टर से ऊपर जाता है 100 हेक्टर के अंदर, ये दूसरा जो त्रिस्तरीय का स्तंभ है जनपद पंचायत इसके अधीनस्थ होता है। और जो 100 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर के बीच का जो जल क्षेत्र होता है वो होता है जिला पंचायत के अधीनस्थ। तो ये अधीनस्थ बोलने का तात्पर्य ये होता है कि इसको जो देने की शुरुआती कार्रवाई है मछली पालन को 10 वर्ष पट्टे पर देने के लिए जो शुरुआती कार्रवाई है इसको देने का अधिकार ये 10 हेक्टर से नीचे का ग्राम पंचायत करेगी, 10 हेक्टर से 100 हेक्टर तक जनपद पंचायत करेगी और जो 100 हेक्टर और 200 हेक्टर के बीच का जो भी जल क्षेत्र होगा इसको 10 वर्ष पट्टे पर देने की कार्रवाई जिला पंचायत जो संबंधित जिले से है उसके अधीनस्थ होता है। तो ये जो शब्द हम यूज़ कर रहे त्रिस्तरीय, इसी को त्रिस्तरीय थ्री टायर बोल करके छत्तीसगढ़ शासन ने संबोधित किया है।
0: हेलो किसानवाड़ी।
3: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया।
3: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
0: जी जी वर्मा भैया, आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन और हमारे बीच हमारे विशेषज्ञ हमें बताओ आज के विषय जुड़े का प्रश्न है।
3: हाँ जी सर, मैं व्यावसायिक रूप में मछली पालन करना चाहा था वहाँ, तो एक तैयारी कैसा ढंग ले करी भैया और का बात के विशेष रूप ले ध्यान रखेल पड़ी, यही जम्मो बात मैं पूछे पर फोन लगा हूँ भैया।
1: व्यावसायिक रूप से करना चाह रहे हैं तो आपका खुद का तालाब है या यानी कि आपने ग्राम पंचायत या शासकीय तालाब को लेकर के मछली पालन करना चाह रहे हैं?
3: हाँ भैया। नहीं मोर खुद के तालाब भैया।
1: अच्छा कितना बड़ा है?
3: और करीब 50-20 मिल है भैया, मतलब आधा एकड़।
1: अच्छा आधा एकड़ है।
3: हाँ भैया छोटे से रखे हूँ मैं।
1: जी इससे पहले आप कर रहे थे कि अभी पहली बार इसमें करना चाह रहे हैं?
3: नहीं और करत रहे भैया, लेकिन अब का है वो सूख गए तालाब है तो फिर से मैं मछली पालना चाहता हूँ।
1: अच्छा ठीक है ना। हाँ। पहले जो कर रहे थे कौन सी प्रजाति की मछली कर रहे थे?
3: वही डाले रहे भैया, रोहू कतला यही तो चलते भैया ज्यादा अक्सर करके हमारे मछली पालन में।
1: जी जी।
3: हाँ तो एक अतिरिक्त वो कोई अच्छा किस्म हुई तो वो बताते भैया, वो पाल के देखूं।
1: जी ठीक है ना, मैं उसको बताने की अपने तरफ से प्रयास करता हूँ। जैसे रोहू कतला मृगल आप बोल रहे हैं।
3: हाँ, हाँ।
1: तो पूर्व के जमाने में और अभी तक भी 15 जून से 15 अगस्त ये जो रोहू कतला मृगल आप बता रहे हैं मछली, इसका प्रजनन का समय हुआ करता था चरम पे।
3: हाँ,
1: है ना।
3: हाँ।
1: तो जिसमें क्या है कि अंडा से बच्चा निकाल करके उसको बड़ा करके किसानों को वितरण किया जाता था, तो ये एक सही समय माना जाता था मछली को तालाब में या जो भी आप उसको वातावरण दे रहे हैं। आजकल आधुनिक तकनीक आ गई, जैसे तालाब को छोड़ के बायोफ्लॉक पॉन्ड, बायोफ्लॉक टैंक, रास बोलते हैं उसमें कर सकते हैं, केज पिंजड़ा पालन में कर सकते हैं। तो इस पे यानी कि मछली छोड़ने का यही समय एक माना जाता था कि उत्पादन के बाद मछली को आप छोड़ सकते हैं। तो उससे पहले एक तैयारी बोलते हैं प्री स्टॉकिंग, मतलब छोड़ने से पहले की जो तैयारी है। जैसे आप बता रहे हैं कि कतला रोहू मृगल आप यानी कि मछली पालन कर रहे थे, तो उसमें यानी कि अभी की स्थिति में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपका तालाब है इसमें कहीं पर पौधे रूपी कुछ चीज़ है तो नहीं, अगर है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि सूखा हुआ तालाब है, तो आप उसमें अभी की स्थिति में थोड़ा सा चूना छिड़काव करके आप उसमें पानी भर के मछली पालन कर सकते हैं। अगर गोबर की सुविधा आपके पास है तो आप चूना के बाद गोबर को छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो उसका जो जीवित चारा है जिसको प्लैंकटन बोलते हैं उसको मछली खा करके मतलब बहुत अच्छा बढ़ती है। अगर वो प्लैंकटन अगर वहाँ बनाने की स्थिति नहीं है या तो गोबर नहीं है, तो आप उसको बाहर से सप्लीमेंट जो बोलते हैं बाहर से दाना दे करके या तो पाउडर के रूप में मछली को चारा दे करके आप मछली को बढ़ा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा भैया
1: जी।

0: डॉक्टर साहब बहुत सुंदर जानकारी दे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हेलो किसानवाड़ी, हाँ राम राम भैया, कौन बोला था?
2: जय राम भैया, मुखेतरा थाना रंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से नरेश साहू बोला था भैया।
1: जी जी साहू भैया, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत कर थन।
2: जी जी धन्यवाद सर।
1: आज हमारे विषय हवे त्रिस्तरीय मछली पालन में किस्म के चयन, एक जुड़े आप मन के का प्रश्न है बताते हो?
2: मछली पालन हम टर्नरी से हमारे छोटे से खेत है, वो मैं डबरी खुदवा के तो लिए कुछ सलाह बताऊ मैं।
1: जी जी आप मन ला हमारे विशेषज्ञ मन बतावा थे।
3: ये पूछ रहा था मैं कि मतलब जो आपका जो जमीन है उसमें तालाब खुद गया है कि खुदना है?
2: जी जी खुदा के उसमें मछली पालन करना चाह रहे हैं।
3: अच्छा कितना बड़ा जमीन है?
2: एक एकड़ करीब है।
3: अच्छा एक एकड़ है। इसमें ना आप दो प्रकार से विभागे मछली पालन विभाग की जो योजना है उसपे आप दो प्रकार का योजना का लाभ ले सकते हैं। एक तो है तालाब निर्माण, जिसमें आप अपने स्वयं की भूमि में तालाब बना करके उसमें अनुदान की पात्रता अनुसार आपको अनुदान दिया जाएगा। एक है कि जिसके पास जमीन कम है, या तो जो जमीन ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहा है, या जिसके खेत में बहुत मतलब जमीन है लेकिन पानी नहीं रुकता है, तो उनके लिए एक आधुनिक तकनीकी की मछली पालन योजना पद्धति से आप मछली पालन करने के लिए अनुदान देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत योजना यानी कि संचालन कर रही है, जिसका नाम है बायोफ्लॉक पॉन्ड। मतलब आपको क्या करना है, छोटे से जमीन में ज़्यादा गड्ढा करके जो आप एक एकड़ का या डेढ़ एकड़ का जितना मछली आप छोड़ते हैं तालाब में, उसको आपको 25 डिसमिल में नहीं कि छोड़ना है ना। तो भले जमीन छोटा है लेकिन उसकी गहराई के अनुसार यानी कि वहाँ पर ज़्यादा मछली का पालन आप कर सकते हैं। तो इसकी जो लागत राशि है बायोफ्लॉक पॉन्ड का मैं बोल रहा हूँ, वो सरकार ने 14 लाख निर्धारित किया है, ये लागत राशि है। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो 14 लाख लागत, इसका 40% जो कि 5,60,000 रुपये, इसको देने का सरकार ने प्रावधान रखा है। और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जो मत्स्य कृषक या जो आवेदन करता होंगे या कोई भी वर्ग के अगर महिलाएं हैं, इनके लिए भारत सरकार ने 14 लाख का लागत का 60% देने का बात किया, जो कि होता है 14 लाख में 60% 8,40,000 रुपये होता है। तो इसके माध्यम से आप यानी कि लिखित में आवेदन दे करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
2: कहाँ पर आवेदन देना पड़ता है सर?
3: इसके लिए क्षेत्र में जैसे आप बता रहे हैं कि मुख्यतः आता है अभनपुर विकास खंड में है, तो इसके लिए क्या है, जो विकास खंड में एक विकास खंड अधिकारी नियुक्त होता है जिसका पद नाम मत्स्य निरीक्षक होता है। जिले में तेलीबांधा ऑफिस में भी एक बार संपर्क कर सकते हैं, या तो जनपद पंचायत में जा करके जो क्षेत्रीय अधिकारी मैडम है इनसे आप संपर्क करके उनके पास लिखित में आवेदन कर सकते।
1: हेलो किसानवाड़ी,
4: जयराम जी।
1: राम राम जी, कौन बोला था?
4: हाँ
1: उमेन कुमार निषाद भैया, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत कर थन। बताओ त्रिस्तरीय मछली पालन में किस्म के चयन लेके आप मन का प्रश्न पूछना है?
4: त्रिस्तरीय मछली पालन में तालाब की गहराई कितना होना चाहिए और मछली ला कब डालना है बीज ला तालाब में?
1: जी जी हमारे विशेषज्ञ आप मन बतावा थे आप मन के प्रश्न का उत्तर ला।
3: जी आपके दो प्रश्न में से जो पहला प्रश्न है कि कितनी गहराई होनी चाहिए, इसमें मछली को जब छोड़ते हैं तो मछली को 3 अलग अलग जो साइज होता है, मतलब लंबाई या तो उसका वजन होता है, उसी हिसाब से छोड़ा जाता है। सबसे प्रथम जो छोड़ते हैं स्पॉन बोलते हैं, जो 3 दिन का बच्चा होता है, ठीक है। तो इसके लिए पानी की जो गहराई है 1.5 गहराई होना चाहिए तालाब का पानी का। और इसके बाद आता है कि रेयरिंग पॉन्ड, मतलब आप 20 दिन के बाद वो बच्चा को निकाल के आप उंगली जितना 3 इंच या 3 इंच से ऊपर बच्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए गहराई होता है, इसमें भी 1.5 मीटर 1.5 मीटर की गहराई तालाब की होनी चाहिए, ये वैज्ञानिकों का दावा है। और तीसरा जो होता है ग्रो आउट, मतलब आप 90 दिन के बाद बच्चा निकलने के 90 से 3.5 महीने के बाद जो बच्चा आप छोड़ेंगे जो तालाब में, उसको ग्रो आउट पॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आप सीधे नहीं कि जो मार्केट में जितना मछली आपको जो साइज करके बेचना है उतना तक आप पालन करेंगे वो तालाब में, उसकी गहराई 2 से 2.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि कौन सा समय उपयुक्त होता है आपका मछली छोड़ने का, तो पूर्व में जो पहले उत्पादन यानी कि 15 जून से 15 अगस्त के बीच में मछली

0: का हुआ करता था। उसी के बाद यानी कि जैसे जैसे मांग और जैसे जैसे मछली का साइज़ है उसी हिसाब से बच्चे को तालाब में छोड़ा जाता था। अभी ऐसा है कि आप साल भर भी आपको अपने क्षेत्र में या आजू बाजू क्षेत्र में मछली उपलब्ध होती है, तो जैसे आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार और जो आपका उपलब्धता है उसके अनुसार आप कभी भी मछली छोड़ सकते हैं अपने तालाबों में।
1: जी।
0: जी हेलो किसानवाड़ी,
1: हाँ रजनीकांत भैया नमस्कार।
0: राम राम जी।
1: हाँ मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, गर्रा पार बांधा बाजार।
0: जी जी मानवेंद्र जी, आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हैं। बताओ आज के हमारे विशाल जोड़े का प्रश्न है।
1: त्रिस्तरीय मछली पालन करना है तो आम मछली पालन से कतका अलग है, का तरीका है, एक बारे में जानकारी लेना रही भैया जी।
0: जी तो हमारे विशेषज्ञ हमारे तिर हम और आपमन के प्रश्न जवाब देवत हैं।
1: हाँ
0: जी त्रिस्तरीय में यानी कि जो शब्द छत्तीसगढ़ शासन ने लिया है वो तीन जो टायर होता है, तीन स्तंभ होता है पंचायत का, उसको लिया गया है। और त्रिस्तरीय से एक और चीज़ आप उसको ले सकते हैं कि अगर पानी की गहराई है तो पानी का सतह में, पानी के मध्य में और पानी के सबसे नीचे में अलग अलग प्रजाति की मछली पालन करके आप फायदा ले सकते हैं। ये तीन मछली है, ऊपर में सतह में जो आप ज़्यादातर पाएंगे और कतला मछली को, मध्य में रोहू मछली को, और जो ज़मीन के जो सबसे नीचे स्तर है पानी का वहाँ पर आप मृगल मछली को पाएंगे। ये पद्धति इसलिए नहीं कि ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा नहीं कि कहा गया है कि जो पानी का जितना स्तर होता है सभी में नहीं कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग यानी कि गहराई पे मछली का जो चारा है वो वहाँ पर उपलब्ध रहता है ना। तो अगर आप ये तीनों मछली की जो कॉम्बिनेशन है इसको लेकर के आप अगर मछली छोड़ते हैं तो आप पूरे तालाबों का जितना जो जीवित चारा है इसको आप यानी कि
1: जी
0: बराबर उपयोग कर सकते हैं। अगर व्यवसाय के रूप
1: अच्छा
0: में देखेंगे या तो फिर आप बाज़ार में पब्लिक की जो मांग है ना, लोग जो मांगते हैं उसके अनुसार अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग रोहू मछली को बहुत ज़्यादा मांगने की मांग करते हैं। उसका दो तीन कारण
1: हाँ
0: है। पहला चीज़ है कि उसमें जो मटन, जो शरीर का जो ज़्यादातर पोर्शन है मटन, वो आपको इजीली मिल जाएगा। कुछ लोग इसको टेस्ट के तौर पे भी लेना चाहते हैं। थोड़ा सा इसके
1: जी
0: बाद आता है कतला मछली को लेने के लिए, लेकिन कतला अगर थोड़ी सी बड़ी साइज़ 1.5 किलो या 2.5 किलो के ऊपर की मछली तो थोड़ा ज़्यादा पसंद करना करते हैं, क्योंकि शुरुआती में
1: हाँ
0: उसका क्या मुंडी बस बड़ा रहता है, शरीर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तीसरे में
1: अच्छा
0: आता है मृगल
1: जी
0: मछली। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप ऐसा कर सकते हैं 3, 5, 2 ऐसे करके मछली छोड़ सकते हैं। अगर 10 मछली आप छोड़ रहे हैं तो 3 मछली आप
1: हाँ
0: कतला डालिए, 5 मछली रोहू डालिए, है ना। तो इसके
1: जी
0: अनुपात में अगर आप मछली छोड़ेंगे तो आप फायदा पा सकते हैं। हेलो किसानवाड़ी।
1: नमस्ते सर जी।
0: हाँ राम राम भैया।
1: राजेंद्र कुमार दामले गुठिया सर सिरमुंडा ले।
0: जी जी दामले जी, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन। बताओ हमारे विषय जुड़े का प्रश्न है।
1: जी सर, आज के विषय के अनुसार सर, स्त्री मछली पालन करत हैं तो कर भोजन के व्यवस्था कैसे कैसे करना है तो बता देते सर थोड़ा से।
0: जी ठीक है। जैसे मछली पालन करते हैं तो एक मुख्य यानी कि जो भाग होता है वो मछली का भोजन ही होता है। अगर आप उसको बराबर समय पे और जो उसका मांग है या तो उसका जो शरीर है उसके अनुसार अगर आप देंगे तो एक निश्चित समय में आप उसको बाज़ार में बेचने योग्य कर सकते हैं। जैसे यानी कि शुरुआती समय में जैसे ही बच्चा यानी कि अंडा से निकलता है तो शुरुआती समय में आपको मछली का जो वज़न होता है उसके अनुसार 5% आपको भोजन देने की आवश्यकता है, और वो भी ये प्रतिदिन का मैं हिसाब बता रहा हूँ। वो आप उसको अपने सुविधा अनुसार 2 समय या 3 समय में आप इसको दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग 2 समय देते हैं, एक सुबह के 8 से 9, 10 बजे के बीच में, और एक शाम का समय होता है जो 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप इसको मछली यानी कि दे सकते हैं। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कितनी वजन की मात्रा यानी कि आपके तालाब में मछली है, उसके अनुसार आप 5% निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मछली बढ़ती जाएगी उसका जो शरीर अनुसार वजन के अनुसार आपका जो प्रतिशत है भोजन का वो कम होते चले जाएगा। जैसी मछली 100 ग्राम के ऊपर हो गई या उसके पहुंचते तक में आपका शरीर का 1% हिस्सा दिन भर में आपको मछली का देना है। जैसे अगर आपकी 100 ग्राम की मछली हो गई तो उसका 1% मतलब 1 ग्राम की भोजन होना चाहिए उसका प्रतिदिन के हिसाब से। और उसमें भी सेम समय है कि आप उसको दिन में 2 बार या 3 बार सुविधा अनुसार दे सकते हैं। हेलो किसानवाड़ी।
1: हेलो।
0: हाँ

0: राम राम भैया।
1: देव कुमार वर्मा, ये पलारी कुगदा से।
0: जी जी, आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करा था ना, हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं, बताओ आज के आप मन के क्या प्रश्न है।
1: ये जो है मोर प्रश्न है कि तालाब के जो ऊपरी सतह में रहने वाली जो मछली है वो अपन भोजन थे प्रमुख कौन कौन से किस्म है।
0: जी जी, आप मन के प्रश्न बड़ सुघर है और हमारे विशेषज्ञ आप मन बतावाते हैं।
2: जी, पानी के सतह में वैज्ञानिक अनुसार और उसके जो आंतड़ी है उसमें परीक्षण अनुसार कतला और सिल्वर कार्प जो मछली होती है जो सतह में जितना भोजन होता है उसको ज़्यादातर अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए ये बोलना सही होगा कि जो सतह में जो मछली है वो कतला और रोहू यानी कि ज़्यादातर रहती है। अब इसमें दो प्रकार का जो भोजन हो सकता है, एक है अभी आधुनिक जमाना में लोग अलग से बाहर से चारा दे करके मछली को बढ़ा रहे हैं और उसको व्यावसायिक रूप में सृजन कर रहे हैं, और पहले के ज़माने में जो जीवित चारा था जिसमें भोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मछली अपना खुद चारा यानी कि सतह में जो होता है उसको लेकर के भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसमें प्लैंकटन बोलते हैं। ज़्यादातर शुरुआती समय में जो काई होता है, काई का जो बहुत बड़ा गुच्छा होता है उसको मछली खाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है कतला मछली या और सिल्वर कार्प मछली, एक उसके बाद का जो जू प्लैंकटन बोलते हैं एक तकनीकी भाषा में, इसको लेकर के अपना भोजन बना करके बढ़ता है।
0: जी, तो साहब अपन हमार संगवारी मन के समस्या के बड़ सुघर समाधान करे हो। हमरो मन में कुछ जिज्ञासा हवे, आप मन ले जानना चाहत रहें कि जो तीन स्तर के हम मछली पालन ला बढ़ावा दे के गोट करथन, तो ये सामान्य जो मछली पालन रही से ओकर ले का लाभ है कर्म।
2: जो चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें नहीं कि जो पद्धति हम पढ़ते हैं या तो हम किसानों को जो बताते हैं उसमें ये है कि आप अकेली मछली मोनोकल्चर भी कर सकते हैं।
0: जी,
2: लेकिन त्रिस्तरीय करने से फ़ायदा ये है कि आप जो संसाधन वहाँ उपलब्ध है इसको एक समय में उपयोग करने के लिए यानी कि इस पद्धति में जाने के लिए ज़्यादातर सलाह दिया जाता है। क्योंकि अगर आप एक मछली करते हैं तो एक क्षेत्र की ही जो चारा है वो उसका ही उपयोग होगा।
0: जी,
2: अगर तीन स्तर का आप छोड़ेंगे मछली बच्चा तो वहाँ पर तीनों स्तर का जो भोजन उपलब्ध हो रहा है प्रतिदिन या प्रति माह में,
0: जी,
2: उसको यानी कि सही टाइम में उपयोग किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं इसमें।
0: जी, तो साहब आप मन आए हो हमारे किसान संगवारी मन के संग संग हमारो जिज्ञासा के बड़ सुघर ढंग ले समाधान करे हो। आप मन के आए ले हमारे कार्यक्रम सफल होते, आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी।

किसानवाणी क्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में विषय रही त्रिस्तरीय मत्स्य पालन खातिर किस्म के चयन। हमार विशेषज्ञ रहीन श्री राजन कुजूर मत्स्य निरीक्षक रहीन है विकास खंड आरंग जिला रायपुर ले और प्रस्तुत करता रहीन हमार शशि प्रकाश पांडे संचालन में माने आपमन के संगवारी लक्ष्मीकांत करत रहे संगवारी हो।

संगवारी हो, कृषक प्रश्न मंच में हमार आज के जोन प्रश्न है कर बेरा हो गए है, तो झटकुन लिख लाओ हमार आज के प्रश्न ल। हमार प्रश्न है, त्रिस्तरीय मछली पालन में कौन कौन से किस्म के मछली कौन कौन स्तर में डाले जाते हैं और एकर का लाभ है। प्रश्न एक बार फिर ले सुनो। प्रश्न है, त्रिस्तरीय मछली पालन में कौन कौन से किस्म के मछली कौन कौन स्तर में डाले जाते और एकर का लाभ है। संगवारी हो, एकर सही जवाब हमला एक हफ्ता के

0: भीतर लिख भेजू, आजे के दिन एक सही जवाब बताए जाही। और सही जवाब खातिर हमार ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। पाछू हफ्ता के प्रश्न बता देथन। पाछू हफ्ता प्रश्न रहीस, बरसात में पशु मन में प्रमुख रूप ले कौन कौन से बीमारी होते। एकर सही जवाब है गलघोटू और एकटंगिया। सही जवाब जिन संगवारी मन भेजे हैं ओकर नाम ला बता दे पूजा दीदी।
1: सही जवाब भेजे हमर संगवारी मन के नाम ये किमले है महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर, देहान बांधा बाजार ले हरिओम साहू, रेवाराम, रानू सरस्वती, प्यारी और परमानंद साहू, और हे डुमटोला मंगचुआ बालोद ले भगवानी राम काटे, कुमारी गोपिका भावेश और माधुरी देवी काटे, और मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, शरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू, अजय कुमार कुमारी साहू, और हे इंद्राणी माया, जय किशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू मन, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, नागर कोहरा राजनांदगांव ले झग्गर राम साहू, बबलू जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा बेवी, आराध्या साहू मन।
0: संगवारी हो आप मन चिट्ठी लिखाओ, सही जवाब लिखाओ। आप मन के चिट्ठी ले हमार जन कार्यक्रम शुरू रहते। आप मन ला सही जवाब खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई। और सुघर गीत सुन लेथन दीदी एक ठन गावत है मोती दास मानिकपुरी और संगवारी मन।

0: सुघर गीत ल सुनत रहे हन मोतीदास मानिकपुरी अउ संगवारी मन ले। संगवारी हो, बरसात के जोन मौसम हवय ओ आवत हे, अउ ऐसे में हमला गड्ढा खोद के पौधा अउ खाद के व्यवस्था करके रखना है। सुघर बारिश के संग धूप कम जाने के शुरू होही, त जोन हमर पौधा राखे हन हमला है ना, ओ लगा लेना है, सुघर ओला खाद पानी देना है। ओकर जोन बड़े होत ले देखभाल करना, ऐसे नहीं भाई कि आज हम लगा देथन और लगा के छोड़ देहन ओला भगवान भरोसे, नहीं त गरुआ मन ले हमर जोन गरुआ बैला होते ओ मन ले बांच जावे और थोड़ा कन बड़े हो जावे, तबे अवैया समय में हमर बर वह सुघर हो ही है ना, तो ओकर ध्यान रखना है। और ए रहिस किसानवाड़ी, प्रायोजक रहिन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और लक्ष्मीकांत, हमर जाए के बेरा तो हो गए, फिर भाई बरसात के मौसम आवत है, तो अपन घर के आसपास में जो गड्ढा है जिसमें पानी भर जाती, बहुला हमला थोड़ीक माटी तेल डाल करके या जले हुए तेल डाल करके, इसे काबर के मच्छर माखी मन पनपथे, तो वह कई ठन बीमारी के कारण बन जाते, तो भाई वहूला अपन ला थोड़ा ओमे काम करत चलना है, ओला पाटत चलना है। तो अब एक संग हो गए हमारे जाए के बिरत, जाए के पहले बता देथन काली कार्यक्रम, काली गोट बात संग क्रम आज की सलाह में सुनू बरसात में पशुधन की देखरेख, और ये विषय में जानकारी ही डॉक्टर आशुतोष दुबे, वैज्ञानिक पशुपालन यांत्रिकीकरण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। आओ एक संगे संग कृषक प्रश्न मंच और गीत संगीत तो होबे करी, तो अब एक संग देव विदा और स्वीकारो पूजा और
0: लक्ष्मीकांत के
1: राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए दम लगा के हाइशा, इस फिल्म का गीत पैपॉन की आवाज में। गीतकार हैं वरुण ग्रोवर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं। आकाशवाणी।

संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

शादी में ज़रूर आना लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं शकील आज़मी, संगीतकार हैं जैम एट।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए जुबीन नौटियाल और असीस कौर की आवाज़ों में। तनिष्क बागची का लिखा गीत है और संगीत है तनिष्क बागची का ही। फिल्म का नाम है शेर शाह।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मीडिया व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मनीराम साहू और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए अखिलेश साहू और मनीराम साहू के स्वरों में ये लोकगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे मनीराम साहू और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे पास है हर मैच का ताजा अपडेट और वो सब कुछ अधिक जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अंक, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से और इंग्लैंड का मुकाबला घाना से होगा। अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे नॉकआउट राउंड में पहुंचे। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने तीसरा क्वार्टर समाप्त होने तक 3-1 की बढ़त बनाई। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।

0: तो कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम से, यानी फीफा विश्व कप की खबरों से, जहां आज ग्रुप स्टेज में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें टीमें नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पे उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप एल में रात 1:30 बजे अमेरिका के बोस्टन में इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। कनाडा के टोरंटो में सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से, जबकि ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया और कांगो आमने सामने होंगे। इस बीच अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे ने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Could drop anywhere, and it's turned in from close range. It's a second goal for Algeria, and it's been scored by Amin Gouiri. Algeria coming from behind in the second half. Jordan 1, Algeria 2.
2: अल्जीरिया ने आज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप जे के मैच में जॉर्डन को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी

0: उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच में पहला गोल जॉर्डन के निजार अल राशदान ने मैच के 36वें मिनट में किया। इसके बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और दो गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है।
1: The Viking adventure will go on. Norway into the knockouts.
0: इससे पहले 28 साल बाद फीफा विश्व कप खेल रही नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। नॉर्वे के लिए एर्लिंग हॉलैंड एक बार फिर से मैच के हीरो बनकर उभरे। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 43वें मिनट में नॉर्वे के मार्कस होल्मग्रेन पेटरसन ने किया। इसके बाद दूसरे हाफ में 48वें मिनट में एर्लिंग हॉलैंड ने गोल कर नॉर्वे को 2-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद सेनेगल की तरफ से इस्माइला सार ने 53वें मिनट में गोल किया। एर्लिंग हॉलैंड ने 58वें मिनट में गोल कर नॉर्वे को 3-1 से आगे कर दिया। इस्माइला सार ने सेनेगल के लिए दूसरा गोल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरे किलियन एम्बाप्पे के दो शानदार गोल की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित किया। इस जीत ने फ्रांस को राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। इसके साथ ही एम्बाप्पे 4 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे खड़े हैं। फ्रांस के लिए पहला और दूसरा गोल एम्बाप्पे ने किया। इसके बाद माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया।
2: Because he works miracles, and he is Lionel Messi. And Argentina leave Austria behind by 2-0. They are through.
0: दिन का पहला मुकाबला स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम रहा, जो न सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के नायक बने बल्कि फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मेसी के दो गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली है। मेसी ने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी।
1: History in Dallas, 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
0: इस गोल के साथ ही मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये फीफा विश्व कप में इस महान खिलाड़ी का 17वां और इस वर्ष का 4th गोल था। अपने 39वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जॉर्जिन्हो के बाद लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: और फुटबॉल के इस महासंग्राम के बाद अब निशानेबाजी की बात की जाए, जहां जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत पदक जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी स्पर्धा की टीम इवेंट में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। कार्यक्रम में अब बात हॉकी के मैदान से हॉकी की खबरों की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने मुकाबले में 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारत के लिए अभिषेक ने मैच के 21वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 23वें मिनट में और सुखजीत सिंह ने 39वें मिनट में 1-1 गोल किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने पाकिस्तान का एकमात्र गोल दागा। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर हमारी रिपोर्ट।
4: मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को 2-0 से हरा दिया। 3 जुलाई तक चलने वाली इस हॉकी प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग सह नॉकआउट आधार पर ये मुकाबले एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एयरफोर्स

0: स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस दौरान टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच को 25,000 रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वे युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। इस प्रतियोगिता का छठा संस्करण पिछले वर्ष चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिनमें दो अन्य देशों की वायुसेना की हॉकी टीमें सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक शानदार प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और एक प्रतियोगिता का आगाज आज होने को है। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया के फुलर्टन में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे।
2: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान के चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91वें स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि कर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेस से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप।
1: और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
3: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस, श्री सविता पूनिया खेल हॉकी, रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: पद्मश्री से सम्मानित होने पर सविता पूनिया ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
4: खुशी तो बहुत है क्योंकि एक हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफी हार्ड वर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात थी, और आज मुझे राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के साथ जाना है तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
1: वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने पर विजय अमृतराज ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
5: I think I'm truly honored, I'm thrilled, I'm delighted, humbled by this incredible award by the government of India, the People's Award. The Padma Awards are very, very special. The Padma Bhushan is truly special for me at this stage in my career, and I'm honored. Thank the

0: Government of India. I thank the Honourable Prime Minister and of course the people of this great country who have helped me perform to the best of my ability, not just in India but around the world. And it has been a real honour to be able to represent India around the world.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत केरलम के तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
2: Cycling is a best exercise, as a solution of pollution, as a save the fuel, is also solution of traffic. Ek cycling mein itna fayda hota hai, toh why we are not doing cycling? Sabhi Kerala vasi ko agrah hai ki aapka kamkaj ka sthan dur na ho, toh aap cycling kariye, cycle leke aapke workplace par jaiye. Sabhi college aur school ke youth ko mera agrah hai ki aap school college cycle leke jaiye aur cycling ko promote karke healthy nation aur wealthy nation ke slogan को साकार करिए।
1: किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव पहली बार भारतीय टीम की जर्सी प्राप्त करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वैभव ने कहा कि इस पल को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
3: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया।
1: और श्रोताओं, आज 23 जून है। आज ही के दिन 2013 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बर्मिंघम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
4: A 6-1, he's got to clear it. Ashwin, 6 in the bank. Treadwell misses, Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have. He's got it now. And India now winners of the ICC Champions Trophy 2013.
1: तो इन्हीं स्मृतियों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय आप हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद

0: बुनियादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

0: किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation-building with a strong sense of

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: रजनीगंधा, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं योगेश और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, सुनिए घरौंदा फिल्म से। नक्श लैलपुरी का लिखा गीत है, संगीत है जयदेव का, स्वर है रूना लैला के।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम में लोकसुधा में लीजिए सुनिए कमार गीत। कलाकार हैं सुनाराम और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए सुनाराम और साथियों के स्वरों में ये कमार गीत।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: लोक सुधा के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुनाराम और साथियों के सरों में ये कमारगी।
1: रेगो माया तेरे पातर पतला नल च पानी के आया यल गली के गो माया यल गली के गो माया तेरे पातर नल च पानी के आया
2: तई गुदरिया ने यु पर गई।

लोक सुधा के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सरगुजिया गीत। कलाकार हैं इंद्रमणि दास और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए इंद्रमणि दास और साथियों के स्वरों में ये सरगुजिया कर्मा गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इंद्रमणि दास और साथियों के सरों में ये सरगुजिया गीत।

अभी आप सुन रहे थे आदिवासी जनजाति संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में कमार गीत और सरगुजिया गीत। कलाकार थे सुनाराम, इंद्रमणि दास और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सोम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहले सुनिए दिले नादान। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं नक्शलालपुरी, संगीतकार हैं खयाम। इस गीत के लिए पसंद है आप सभी की। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी। धरसीवा से हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी, रानू, खुशी, प्रवीणा और सीएल यादव। बेलरगांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। गातापारा से हैं श्रीमती धनेश्वरी, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू। श्री गातापार से ही हैं कुमारी लावण्या, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभुराम साहू। सिमगा से हैं सविता जैन, प्रदीप जैन, बीना, देवेंद्र और आदेश जैन। दरचूरा से हैं ददवा साहू, भूरी, रेखा, मोतीलाल साहू। यहीं से ही हैं फिरंता साहू, दुलौरीन, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, जयदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है दिले नादां फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए सन्नी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। पसंद है आप सभी की। बंगला मटिया बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। शीतलानगर दुर्ग से हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। पहारा अहिवारा से हैं भूषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। कोदवा लवन से हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन, शिवकुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा। रामनगर रायपुर से हैं राजेश अम्बादे, शशिकला और पूजा अम्बादे। हिंसा महासमुंद से हैं अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, रीचा, गायत्री।

इसे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। कोदवा लवन से हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन, शिव कुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा। रामनगर रायपुर से हैं राजेश अम्बादे, शशिकला और पूजा अम्बादे। हिंसा महासमुद से हैं अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, रीचा, गायत्री, भीषण दास, मानिकपुरी। आप सभी ने सुनना चाहा है सनी फिल्म का ये गीत।

बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना, सौरभ, सिया, शुभम और शौर्य जैन। पावर हाउस भिलाई जामुल से हैं विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ, संजय और पूजा प्रधान। हथनीपारा भाटापारा से हैं चोआराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। चुड़ी लाइन भाटापारा से हैं अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। रुद्री धमतरी से हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री साहू। शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से हैं रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झन्ना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा। लक्षणपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू। मोपका भाटापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है आपकी पसंद फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है RD बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी ने लिख भेजा है

इज्जत। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी का गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सभी की है। बाजार पारा बेमित्रा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की, मुरली मनोहर, भगवान सिंह राजपूत। भाटापारा से हैं श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा। सुभाषवाड़ भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश, करण, युआन, ढाबिश यादव। यहीं से ही हैं श्रीमती अमृता, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी कुमारी, प्रेरणा, डिम्पी यादव। भाटापारा से ही हैं पुष्पा और फाल्गुनी साहू। पटपर डूंगरगढ़ से हैं रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव। अरमरी खुर्द दुर्ग से हैं चुरामन लाल वार्डे, जैनी विवेक और मिराज वार्डे। बेमित्रा से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। नर्मदा धाम सुरसुली से हैं कैलाश यादव, सुरेश टिकेंद्र और योगेश यादव। शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा। बेमित्रा से हैं राज और सारिका वैष्णव। आप सभी ने सुनना चाहा है इज्जत फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए, खानदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं नक्श लैलपुरी, संगीतकार हैं खयाम। इस गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है आप सभी ने। भाटापारा से हैं नारायण यदु, पुनिया, राकेश और धरती यदु। भाटापारा से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, जावेंद्र कुमार वर्मा। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत। भाटापारा से हैं मगरलोड से हैं पुनुराम साहू, तेजस्वरी, राजश्री और राजवीर साहू। भाटापारा से हैं रमजान खान, सिकंदर, अशरफ खान, सादिया, अयाज, अल्फैज खान। बिल्हा से हैं शेख नासिर, महजबीन बानो। कोटा रायपुर से हैं योगिता वर्मा, रुचि, खुशी, ओजल वर्मा और अरुण वर्मा, अनिल, ईश्वर और दिनेश सेन। आप सभी ने सुनना चाहा है खानदान फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शंभु प्रसाद पवार का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल। विलंबित झुमरा ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं करम करो, और द्रुत तीन ताल में सुनिएगा एक तराना। आपके साथ सारंगी पर संगतकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खान, और तबले पर संगतकार हैं इस्माइल दद्दू खान। तो लीजिए सुनिए शंभू प्रसाद पवार का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री शंभु प्रसाद पवार का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल। आपके साथ सारंगी पर संगतकार थे उस्ताद अब्दुल लतीफ खान और तबले पर संगतकार थे इस्माइल दद्दू खान। मीडिया व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमरीका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: from Abhishek Nain, Neelkant Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh. With this win, India continues its unbeaten record against Pakistan in senior men's hockey, extending back to 2014. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall activity with winds speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारे इस सभा के प्रसारण अब यही संपन्न होते हैं। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।

सेट से समय मिला लीजिए, 5:28:43:44:45 सेकेंड। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक नंबर 2। हेलो हेलो हेलो।